0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे ऐसे प्रसंगों, कथाओं की बात करते हैं जो बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें देते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आशीष युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदान नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, हमने पिछले एपिसोड में शुरुआत कर दी थी एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, और वो है महर्षि व्यास जी द्वारा लिखी गई महाभारत, जिसे उन्होंने गणेश जी को लिखवाया था। और हम पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से बहुत सारी कथाएं प्रसंग जान रहे थे, और हमने जाना था पिछले एपिसोड में कि किस तरह से जो आरुणी की कथा थी, उपमन्यु, वेद, ये जो आचार्य जी के शिष्य थे, इनकी कथा जानी थी। और आस्तिक ऋषि जी की कथा पर हमने शुरुआत की थी, इसकी कथा को आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो रागलेखा दासी जी, इस कथा के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, सतयुग में दक्ष प्रजापति जी की दो कन्याएं थी, कद्रु और वनिता
0: जी।
1: उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ। कश्यप ऋषि अपनी धर्म पत्नियों से बड़े प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु ने कहा, 1000 समान तेजस्वी नाग मेरे पुत्र हूँ। विनीता बोली, तेज शरीर और बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से शेष केवल दो ही पुत्र मुझे प्राप्त हैं। कश्यप जी ने एवं अस्तु कहा, दोनों प्रसन्न हो गयी। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा लेकर कश्यप ऋषि वन में चले गए। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनीता ने 2 अंडे दिए। दासी ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनीता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनीता ने अपने हाथों 1 अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट था, परंतु उसका नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया, माता, तूने लोभवश मुझे अधूरे शरीर को ही निकाल दिया है, फिर तू अपनी उसी सौत की 500 वर्ष तक दासी रहेगी, उसे दाह करती है। यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग ना किया तो वही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो मेरा दूसरा बालक बलवान हो और धैर्य के साथ 500 वर्ष तक प्रतीक्षा कर। उस प्रकार श्राप देकर बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी, उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। ये घोड़ा अश्वरत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। समझ को अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य और सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वस्व देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेष नाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेष नाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह से उनकी और असर अपूछ की ओर देखता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंद्राचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मरते मरते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मरते मरते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंद्राचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दे। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च शवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्प वृक्ष कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च शवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। के बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों ने ये मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। शुकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। इसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसको। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देख कर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस सहस अस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंद्राचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया गया।
0: जी तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागले कदासी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागले खदासी जी से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं जी।
1: उस सवा घोड़े को देखकर कद्रू ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रू ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए, यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहने आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रू ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कद्रू अभिनेता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसी दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कि चलो हम लोग घोड़े की पूछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सभा की पूछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वे कद्रू और अनिता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है, परंतु पूछ काली है। ये देखकर अनिता उदास हो गई। कद्रू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उसमें से बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देख कर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत न हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और विनीता ने कद्रू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर वन आदि उधर देखकर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, उसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु है। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, जा तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। वरुण इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कृष्ण जी की आज्ञा प्राप्त कर कलयुग जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। वरुण को देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से रक्षी शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्य ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष शाखा छोड़ दिया, तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महाप्रमाद के लिए ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से साध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वह बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मूर से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोटों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटे उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहसों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। वरुण जी ने भूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चूचे और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिया। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। वरुण जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। वरुण जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। वरुण जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा। और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत की जाते देखकर क्रोध में भरकर बजरी चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकोगे, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण है। पक्षी राज मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उसे मुँह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पों ने प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्य से लौट कर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
0: जी श्रोता, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने ये भी हमने जाना और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, अब परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्त ऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीना जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षीद धम किम आकर्षित धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपाम प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री दिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए
0: जैसे लीना जी आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं, तो और वो जो सारा का सब पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिकाएं मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं। और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे।
0: हाँ।
1: और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए।
0: हाँ।
1: और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लगन पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधु ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का, हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया।

0: प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए, बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हो रहा था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ, सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा, ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृत दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुर द्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगलपुर सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो। मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए, अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है? लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा? जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति की गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
1: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि

0: हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि
1: यह अपूर्व दृश्य है, अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए, पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं? हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है, सतपुरा के घने जंगल,
0: देखा तो सबने एक दो कोई
1: है, आल्प्स है,
0: नाम है।
1: तो बहुत सारे पर्वत, अगर हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं, और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेदव्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हिष्टा स सुता स परीक्षदा तदेव श्रृणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामि समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़यो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हिमालय तो है ही, अब देवालय पर्वत है। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं? मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है, मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदा यत्नता। सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्व सौभाग्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए? तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त्य मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में। तो नदी क्यों बनी? क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त्य मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई।
0: आज भी ली नदी इनको माता की, गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
1: जी, जी।
0: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपनी माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं।
1: जी।
0: तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने रूप में सब पधारे होंगे।
1: पधारे
0: जी।
1: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है। देवालय, मंदराचल, अस्ताचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल, तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा, सुगंधित हवा बहती है, वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए। भली भांति सज धज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुन आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहु शोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम। क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरी श्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणिरत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्री भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र पुत्री स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट चित्रकूट वेंकट श्रीगिरी गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुँच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्ति करते हैं तो जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
0: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद
0: कि आपने इतना अमूल्य रत्नों से अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा है। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
0: बिन बुलाए मेहमान
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन

0: आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण है उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला, या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा भवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
0: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है, उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, व्यक्ति के, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो, तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता है, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
0: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि अर्जुन सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से मन आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है, उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं, तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर

0: अरे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो 2 मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए। अगर शायद हम वहां हों, प्रैक्टिकली सोच के देखें, तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे। हम फटाफट कि अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा, तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं। वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ, कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी, मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे निर्णय ले लिया। तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग, भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं, उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं। अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी, माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है, और अपनी स्थिति को भरपूर बनाने, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं, और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी, और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानव रेश 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
3: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है सैटरडे का दिन, हर शनिवार वाले दिन आपके लिए कमाल की रेसिपीज लेकर के आ जाती हूँ। और आज भी एक बड़ी टेस्टी कमाल की जुगलबंदी वाली हमारे पास आज रेसिपी है जो कि मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि जब ये जो मौसम है ना, मतलब हम बरसात का इंतज़ार करते हैं और बीच बीच में जब बरसात हो भी जाती है, यानी कि जब बारिश होती है, तब हमें इनकी सबसे ज़्यादा याद आती है, इस जुगलबंदी वाली डिश की ना बड़ी याद आती है, भी याद आती है। और ये क्या है ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। अच्छा, मैं ना बात कर रही हूँ रेसिपीज की, कमाल की टेस्टी लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार वाले दिन। अच्छा, अगर बारिश का मौसम हो या ठंडी हवा चल रही हो या अचानक से घर में कोई मेहमान आ जाता है या फिर मतलब शाम के वक्त ना किचन में जाने का मन नहीं कर रहा है या फिर अगर आप घर पर हैं और कुछ अलग से वीकेंड पर बनाने का मन कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, धीमे धीमे मक्खन और मसालों की खुशबू अपने आप ही आने लग जाती है, दिमाग की बत्ती जलने लग जाती है और अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें खुशबू आ जाती है अपने आप ही हर शाम को अगर कोई मेहमान आ जाए या फिर शाम को ऐसे ही बैठे हुए हैं, मौसम अलग है, अच्छा हो रखा है, मूड कमाल का है, अपने आप बिना किसी के आवाज लगाए, बिना किसी के कहे हमें सबसे पहले याद आती है समोसा और जलेबी की, और हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी बॉडी झूम उठती है। ये बात ना इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये ना मतलब वो वाली बात है कि अगर किसी के दिल तक पहुंचना है ना तो पेट से होकर के आप जाओ, लेकिन खाने की अगर डिश ऐसी हो रहा तो सीधा दिल पे असर तो होता है, पेट पर भी असर होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं खाना है। और आज मैं अपने प्रोग्राम में ना ये बात करने वाली हूँ आपसे, यानी कि आज समोसे और जलेबी के बारे में बात होने वाली है, तो इसकी आपको जर्नी भी बताऊँगी, यानी कि समोसे की और जलेबी की जो जर्नी है वो क्या है। लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ। मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें, मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कमाल की रेसिपी। आज है सैटरडे का दिन और देखिए मैं आपको बता दूँ समोसा, इसके बारे में बात करें। समोसा अगर हम इसकी जर्नी के बारे में बात करें तो असली जन्म हुआ मिडल ईस्ट में। जी हाँ, बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि इंडिया, नहीं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि इसका जन्म हुआ मिडल ईस्ट में, ईरान पर्शिया यहाँ इनका जन्म हुआ, जहां इसे सम्बोसा कहा जाता है। 13th और 14th सेंचुरी में बड़े बड़े ट्रेडर्स और मुगल किंग्स जो हैं इसे इंडिया लेकर के आए। पहले इसमें आलू नहीं बल्कि कीमा और ड्राई फ्रूट्स भरे जाते थे, पर जब ये हमारे इंडिया पहुंचा तो हमने इसके अंदर भाई वहां से निकाल दिया, मीट को निकाल दिया और भर दिया अपना प्यारा आलू। और उसके बाद सोचिए जरा, अगर हम इसमें आलू ना भरते तो क्या ये हमारी थाली की जान बन पाता? भाई हमारे देश ने इसे अपना बनाया और इसमें अपना देसी तड़का लगा दिया और इसके बाद बन गया ये हमारा अपना समोसा, सम्बोसा से समोसा बन गया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए एक बड़ा मज़ेदार एक फैक्ट और बताती हूँ समोसा का, जो जिक्र है बड़े बड़े इतिहासकारों ने किया है। अमीर खुसरो ने 1300 AD में लिखा था कि दिल्ली की रॉयल्स कोर्ट में जो किंग्स बड़े चाव में से मक्खन में तले हुए जो समोसा खाते हैं। और सोचिए ज़रा कि आज ये डिश और मतलब हर जगह नुक्कड़ पर, हर जगह एक कोने पर आपको जो है वो रह रह के मिलती है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने नए तरीके का फ्यूजन समोसा ज़रूर खाया होगा, कहीं पर बड़ा कमाल का बहुत ही बड़ा समोसा मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो शेप होती है ना वो होती है ट्रायंगुलर। और ये जो ट्रायंगुलर इसका जो शेप है ना, ये से बहुत कमाल बना था। आज के टाइम में इसमें देखिए समोसों में जो है वो छोले भी भरे जाते हैं, इसमें जो है चीज़ डाली जाती है, पास्ता डाला जाता है और बहुत ही अलग अलग अतरंगी चीज़ें डाली जाती हैं जो, लेकिन असली मज़ा है ना वो जो चटपटे आलू होते हैं ना उसके साथ। भाई मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, सुबह सुबह मन कर रहा है समोसे हो जाए और मज़ा आ जाए। और इसके साथ वो जो इमली की चटनी होती है ना और वो हरी वाली चटनी होती है, बड़ा मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। अब भाई अगर आपको भी ये पसंद है समोसा खाना तो भाई जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। और साथ ही देखिए आप कौन सा समोसा खाना पसंद करते हैं, यानी कि मेरी तरह आलू वाला समोसा या आपको भी पसंद कुछ अलग तकड़ी का अतरंगी समोसा, बताइएगा जरूर। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel live.

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: Dim tanana dir tanum tanana dere nadim tanana dir tanum tanana dere nadim tanana dir tanum tanana dere nadim tanana dir tanum tanana dere nadim tanana dir
1: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और अब मैं बात कर रही हूँ समोसे की। बहुत सारी हमारी बातें हो रही हैं। आप देखिए, हमारे भारत देश को ऐसे ही नहीं विविधता का देश कहा जाता है, और हमारे यहाँ हर फेस्टिवल और सीजन का एक अपना स्पेशल मेन्यू होता है। बारिश के मौसम में हलवाई की दुकान पर देखिए एक लंबी लाइन होती है, भीड़ होती है समोसों के लिए। गोलगप्पे वाले भैया से लेकर समोसे वाले अंकल तक स्ट्रीट फूड हमारी सिटीज की लाइफ लाइन है। सोचिए जरा, जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर गरम गरम समोसे और वही जो चटपटी चटनी खाता है ना, तो स्वाद डबल हो जाता है। खाना हमारे त्योहारों की रौनक बढ़ा देता है। वही मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपको कोई, अगर आपकी कोई समोसे के साथ कोई मेमोरी आपकी जुड़ी हुई है तो वो जरूर बताइएगा। नंबर है 8013781078। इसी के साथ साथ भाई मुझे तो याद है कि बचपन में ना हमें क्या होता था ना, जब कोई घर पे मेहमान आता और मम्मी बोलती थी कि जल्दी से जाके ना चुपके से वो जो बाहर हलवाई की दुकान है ना, वहाँ से जाके समोसे लेकर के आ जाओ और पता नहीं चलना चाहिए किसी को। और हम क्या करते थे कि हम समोसे तो सारे लेते थे, एक एक्स्ट्रा लेते थे और अपने हाथ में रख लेते थे, और फिर घर पर आके जल्दी से मम्मी को ना समोसे की पूरी जो थैली होती थी ना वो पकड़ा देते थे, और उसके बाद जो हाथ में समोसे जो छुपा के लेकर के आते थे जेब में रख लेते, बिना पॉलिथिन के हम जेब में रख लेते थे, और उसके बाद अपने कमरे में जाके फटाफट उसे खा लेते थे और गरम गरम समोसा अपने मुंह में भर लेते थे। कभी बार मुंह जल भी जाता था भाई, कभी बार बच भी जाते थे। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आलू नहीं पसंद है लेकिन बाहर की परत पसंद है। जरा वो भी मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा कुछ आपके साथ है, या भाई मुझे तो पूरा पूरा समोसा। और सबसे ज्यादा वेट अगर मैं किसी का करती थी ना, तो वो है कि समोसे के अंदर वो जो एक कोने में छोटा सा पनीर का पीस निकल के आता ना, उफ वो तो जान ले लेता है, बहुत ही कमाल लगता है। ऐसा लगता है बस पूरे समोसे में उसे ढूंढते रहो, और जैसे वो पनीर आया ना, आराम से पहले उसे रख दो और फिर आराम से बाद में खाओ। भाई मेरी तो ये मेमोरी भाई बनी हुई है। आप जरूर बताइएगा आपकी क्या मेमोरी है। नंबर है 8013781078। और फिलहाल कहीं मत जाइए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको बताने वाली हूँ रेसिपी समोसे की, घर पर कैसे बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपना नोट पैड तैयार रखना है। तो फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ देखिए, शाम की चाय या दोस्तों के साथ पार्टी, अगर प्लेट में बिल्कुल गर्मा गर्म कुरकुरा वाला समोसा नहीं होना तो पार्टी अधूरी है। तो मजा ही आ जाता है अगर ये पार्टी कंप्लीट हो जाती है समोसे से। अच्छा, आपको वो टाइम याद है बर्थडे जो जब होते थे बच्चों के, हम सबके बर्थडे, अगर आपको पहले का ना हो 90s वाला या वो अर्ली 20s का जो टाइम था ना, वो ऐसा था कि जब पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी ना, मतलब पार्टी होती थी, बर्थडे पार्टी है, सब बच्चों को बुलाया जाता था, तो एक ना बर्थडे प्लेट आती है जो होती है सिल्वर कलर की, बड़ी चमचमाती हुई प्लेट होती है, उसके अंदर थोड़ा नमकीन, नमकीन के साथ में 2 रसगुल्ले और 1 समोसा और उसके साथ 1 या 2 टॉफी होती थी और केक होता था। भाई ये मेरी मेमोरी है समोसे की, मुझे ऐसे बहुत पसंद है। और वो टाइम याद आता है। आज के टाइम में देखिए, हम बिल्कुल सारी चीज़ें चेंज हो गई। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, सबको प्लेट्स अलग देते हैं, सब कुछ, बहुत चीज़ें अलग हैं और मिक्सअप नहीं करते हैं। लेकिन पहले के टाइम मेरा ये होता था कि जहाँ रसगुल्ले रखे हैं उसी के साइड में नमकीन होता था, और नमकीन और समोसा और ये सारी चीज़ें जो है ना भाई, सब मिला जुला के खाया जाता था, बड़ा स्वाद लगता था, बड़ा मज़ा आता था। चलिए, अब इतने समोसे की बात हो ही गई है तो मैं समोसे के बारे में यानी कि इसकी रेसिपी आपको बता दूं। तो फटाफट से समोसे की रेसिपी लिख लीजिए। वैसे पर्शियन इसका जो ओरिजिन है वहीं से है जहां इसे संबोसा कहते थे। इंडिया में आकर ये आलू के साथ मिक्स होकर और घर की शान बन गया और ये बन गया समोसा। अब इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आपको चाहिए इसके लिए मैदा 2 कप, अजवाइन 1 टीस्पून, घी चाहिए आपको, फॉर इसके मान के लिए आपको घी चाहिए ताकि सॉफ्ट और थोड़ा सा खस्ता हो जाए, तो 4 टेबलस्पून, असली क्रंच का राज ये घी ही है। इसके साथ पानी लेना है आपको और गूंदने के लिए जितना पानी आप ले सके, लेकिन पानी जो है थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। उबले आलू लेने हैं, 4 उबले आलू लेने हैं और हाथ से अच्छे से मैश कर लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगी कि इसको बिल्कुल महीन कर दीजिए, आप बिल्कुल मैश मत कीजिएगा, थोड़ा सा इसको जो है रखिएगा, बस आपको हल्का सा इसे मैश करना है हल्का। इसके साथ काजू और किशमिश लेनी है आपको 1 टेबलस्पून, और ये ऑप्शनल है वैसे तो, अगर मन है रॉयल टच के लिए आप इसे रख सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है अवॉइड भी कर सकते हैं। मसाले में आपको लेने हैं धनिए के आपको जो बीज लेने हैं उसे क्रश कर लीजिएगा हल्का सा, 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, आमचूर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, कस्तूरी मेथी 1 टीस्पून, और ऑयल लेना है यानी कि तेल लेना है तलने के लिए। अब आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, जैसा ठीक लगे। सॉल्ट लेना है स्वाद अनुसार बस, और ये सारी चीज़ें चाहिए, और उसके बाद आपकी जो भाई टेस्टी सा जो ये समोसा है बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे वो बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती, भगवान जी ही ऐसा।

परेशान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

एक थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया, महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटा की महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: तेरी जय। अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और मैं ना आज बात कर रही हूँ समोसे की, और समोसा कैसे बनता है उसके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले डो की प्रिपरेशन हो जाए, सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में आपको मैदा लेना है, अजवाइन, नमक और 4 टेबलस्पून जो हमने घी लिया है वो डाल दीजिए। अब अपनी उंगलियों से अच्छी तरह से इसे आपको जो है मलना है, और उसके बाद मैदा जो है अच्छे से, उसमें जो घी है वो अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो आपको क्या करना है, ये मैदा जो है आपको ब्रेड क्रम्स जैसा दिखने लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें ठंडा पानी डालकर एक बिल्कुल टाइट यानी कि सख्त आटा गूंद लीजिए। अब उसे गीले कपड़े से ढककर 20 मिनट तक के लिए रेस्ट करने दीजिए। अब इसको क्या करना है आपको, इसके बाद एक कढ़ाई में आपको 1 टेबलस्पून तेल डालना है, गरम करना है। इसमें क्रश किया हुआ धनिया जो है, धनिये के जो बीज हैं वो डालने हैं, और उसके बाद जीरा, अदरक, हरी मिर्च आपको डाल देनी है, और हल्का सा इसको थोड़ा सा कलर इसका जैसे चेंज हो जाए तब तक इसे भूनना है। और इसके बाद इसमें काजू किशमिश, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं तो हल्दी, आमचूर पाउडर और गरम मसाला ऐड कर दीजिए। और फिर मैश किए हुए उबले आलू और नमक आपको ऐड कर देना है 3 से 4 मिनट तक के लिए।

है, या फिर आप मैदे और पानी का घोल बना के रख सकते हैं और उसको आपको रखना है और एक कोन की शेप देते हुए आपको जो है बंद कर देना है। अब इसके बीच में आपको आलू भरना है और उसके बाद चम्मच से जब आप आलू उसमें भर देंगे, जो स्टफिंग हमने तैयार किया वो भर देंगे और अच्छे से इसको प्लेट इसकी करके इसको किनारों को आपको पानी लगाकर या जो हमने ग्लू यानी कि हमने जो मैदे की जो बनाई है पानी डालकर वो आपको लगानी है और साइड से दबा देना है। अब एकदम इसने समोसे की शेप ले ली है, बस आपका जो ये समोसा है बिल्कुल रेडी हो गया, लेकिन ये तलने के लिए रेडी हुआ है, आप इसे साइड में रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है वो बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रही और रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी ये हफ्ते के सातों दिन। बहुत सारी होती हैं बातें, मैं आपको बता रही हूं समोसे कैसे बनाते हैं घर पर। अब देखिए हमने क्या कर रहा है कि जो मैदा है वो लेके हमने उसकी अच्छे से बेल के और उसके बाद उसमें हमने स्टफिंग भर ली है, इसको एक अपनी अच्छे से समोसे की शेप भी दे दी है। अब इसके बाद ये रख देना है आपको, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और सारे अपने समोसे ऐसे बना बना के तैयार कर लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करना है, ध्यान रहे तेल जो है बिल्कुल हल्का गरम और लो मीडियम पर होना चाहिए। समोसे जब आप डालेंगे तो धीमी आंच पे 10 से 12 मिनट तक के लिए सुनहरा होने तक आप इसे भून लीजिए, अच्छे से आप फ्राई कर लीजिए और कुरकुरा समोसा आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा जब आप अच्छे से उसे तलते रहेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आराम आराम से लेकिन तलिए, ताकि मैदा जो है वो कच्ची बिल्कुल भी ना रहे। याद रखें कि आपको जितना जल्दी करेंगे आप, जितना फ्लेम तेज करेंगे उतना जल्दी वो बाहर से तो पक जाएगा लेकिन मैदा अंदर से कच्ची रह जाएगी और वो बेस्वाद लगेगा, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद आपको कुछ कुकिंग टिप्स भी दूंगी समोसे से रिलेटेड। लेकिन फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ बातें हमारी चल रही हैं कुकिंग टिप्स के बारे में, मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हमने बनाए आज समोसे को। देखिए, कभी भी तेज आंच पर आपको नहीं आपको फ्राई करना है, पर देखिए आपको बिल्कुल मैं याद दिलाता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको तलना नहीं है तो आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है, थोड़ा सा आपको ऑयल ब्रश करके आप एयर फ्राई में रख दीजिए और उसके बाद वहाँ पर अगर ऑप्शन है समोसे का तो आई थिंक उसमें 15 से 20 मिनट का टाइम दिखाया जाता है। 4 समोसे रख के उसमें रख दीजिए और देखिए आपके समोसे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए एक और आपको बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि समोसा बिल्कुल मार्केट जैसा खस्ता बने तो उस देखिए जब आप आटा गूंथते टाइम नॉर्मल पानी की जगह बिल्कुल ठंडा यानी कि आइस चिल्ड पानी का इस्तेमाल कीजिए। इससे ग्लूटन डेवलप नहीं होता है और डो बिल्कुल फ्लेकी बनता है, तो ये एक राज की बात है। इसी के साथ साथ देखिए आलू जो है इसमें कार्ब्स अच्छे खासे मात्रा में होते हैं, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा समोसे खाते हैं ना तो वेट भी गेन करेंगे, तो जरा ध्यान से खाइएगा। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आपका हिम्मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।
1: तुम्हें अपनी माशुका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत कहानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से ना आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ आपको बता दूँ, देखिए समोसे आप जब बना रहे हैं तो एक और सजेशन आपको दूंगी, गर्मा गर्म समोसे को मीठी इमली की चटनी के और तीखी पुदीने की चटनी के साथ आप ले सकते हैं और साथ ही कड़क अदरक वाली चाय, मजा आ जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। बस ये याद रखिएगा कि जब भी आप समोसे के लिए जब आप उसे चिपकाने के लिए करेंगे, क्योंकि समोसा जो है अगर आप उसे नहीं चिपकाते हैं पानी की मदद से तो वो जो है वो फटने लगता है, तो उससे आलू बाहर आ जाता है जिससे समोसे के अंदर ढेर सारा तेल भर जाता है। और तेल जो है गर्म होना चाहिए, अगर तेल ठंडा हो गया तब भी समोसे जो है वो उनमें तेल जो है वो पी जाएंगे और वो अच्छे नहीं बनेंगे। इसी के साथ साथ याद रखिएगा कि आपको मैदे और पानी का एक ग्लू टाइप पेस्ट बना लेना है, जिसके बाद जब आप समोसों को बंद करेंगे, स्टफिंग को डाल के समोसों को बंद करेंगे, तो उसके बाद उसे कॉर्नर पे लगाने हैं ताकि वो अच्छे से चिपक जाएं और खुले नहीं, जिससे वो अच्छे से अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखते हैं। तो यही था हैक समोसे बनाने का। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समोसे की रेसिपी कैसी लगी। नंबर है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के साथ और दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ वक्त जो है ये आपको बताने का है, भैया अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मैंने रचना के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करने के लिए आप अपने एंड्रॉयड या आईएस मोबाइल फोन ले सकते हैं, उस पर प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाइए और सर्च बॉक्स में लिखिए रेडियो मानव रचना, जिसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी। तो बस चिंता किस बात की, डाउनलोड कीजिए ऐप और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, आप सुनिए कमाल के खूबसूरत गाने ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

है, घर पर बना सकते हैं और बड़ी टेस्टी कमाल की टर्की के बाद जो क्रिस्पी है और बहुत ही जो चाशनीदार हो गई और बहुत ही घुमावदार हो गई, कैसे आप घर पर बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वही हमारे साथ आपको जुड़े रहना है और कमाल के प्रोग्राम तो रेडियो मानव रचना लेकर के आ जाते हैं। और इस प्रोग्राम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे इंटरनेट ऐप पर जा सकते हैं और साक्षी के नाम के एक फोल्डर में, यानी कि आप पॉडकास्ट सेक्शन में जाके साक्षी के नाम पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारे आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला प्रोग्राम भी, जिसे आप दोबारा से सुनकर अपनी रेसिपी को पक्का कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात आपसे होती रहेंगी। अभी दोबारा से आ रही हूँ आपके पास अपना लेकर के प्रोग्राम सफरनामा, लेकिन 11 से 1, तो फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ, बाय, टेक केयर।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: रेडियो मानव रचना 107.8 मैं हूँ दीक्षा आपके साथ और अब मैं लेकर आ गई हूँ एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम, एक ऐसी सीरीज जो हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने की एक छोटी सी कोशिश है। इतना खूबसूरत हमारा एनवायरनमेंट, इतना खूबसूरत पर्यावरण, इतनी प्यारी धरती, लेकिन हमने इसकी कद्र नहीं की। इस कार्यक्रम से हम प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण को एक बेहतर स्वरूप दिया जाए। कार्यक्रम का नाम है ग्रीन ग्रह, जिसे सपोर्ट किया है इको क्लब और पीटीसी फाइनेंस ने और साथ ही एसोसिएट किया है डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन ने। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन और पर्यावरण से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर, जिसमें जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट। आज जिन शख्सियत को हम अपने एक्सपर्ट के फॉर्म में लाए हैं, वो इस फरीदाबाद शहर को बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं पंकज ग्रोवर जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जन कल्याण समिति के, एक अध्यापक भी हैं व साथ ही सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपने पर्यावरण से जुड़े कुछ मुद्दों को हाईलाइट करने की कोशिश हमेशा करते आए हैं। कभी पुस्तकों के माध्यम से, तो कभी आर्टिकल्स के माध्यम से, कभी आरटीआई के माध्यम से, तो कभी वैसे ही लोगों को जागरूक करके सभाओं के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका रेडियो मानव रचना में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, आपने जो खूबसूरत पहल की है ग्रीन ग्रह की, इसके लिए आपका दिल से स्वागत है। और आपने एक ऐसा टॉपिक चुना जिसे अक्सर लोग चुनने से डरते हैं, जिस पर बात नहीं करते।
1: जी पंकज जी, हम सबसे पहले तो, क्योंकि हम ग्रीन ग्रह कार्यक्रम में वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं और एक एपिसोड में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि घर का कूड़ा जो है वो किस तरीके से बायफकेट होना चाहिए, जो कलर कोडिंग होती है वो कलर कोडिंग कैसी होनी चाहिए, ग्रीन ब्लू रेड वाली जो कलर कोडिंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर में ये सेटअप करना बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, इजी प्रोसेस नहीं है। आप हर किसी को बोलें कि इसमें ये डालना है, इसमें ये डालना है, इसमें ये डालना है, तो वो कूड़ा जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर या कॉरपोरेट लेवल पर इसको करना ईजी है, जैसे हमने हॉस्पिटल्स में कलर कोडिंग देखी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी पहले तो कि ये वेस्ट सेग्रीगेशन, घरों की बात हम कर चुके हैं, तुरंत आप थोड़ा सा अगर रिपीट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दें, खासतौर पर से जो वेस्ट वाटर होता है उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसे हम अक्सर दूर से देखकर समझते हैं कि कोई बड़ी पहाड़ी आ गई है, बट एक्चुअली में वो कुछ और होता है। वो होता है नजरों का धोखा, जो हमें खूबसूरत पहाड़ लगता है बट होता कुछ और है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले घर के और इंडस्ट्री के वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं।
2: दीक्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंफर्टेबल नहीं है घर के लेवल पे कूड़े को सेग्रीगेट करना। पर एक ना सेक्टर 55 के पीछे एक गांव है मुसलमानों का, खंदावली गांव। आज से कुछ साल पहले मैंने वहां जाके खुद शूट किया था। आप यकीन कीजिएगा, वो पूरा गांव मिलके एक पॉली बैग भी वेस्ट जनरेट नहीं करता। उस गांव ने क्या किया हुआ है, उस गांव ने पंचायत ने, सरपंच ने 3 रेड़ियां और 3 लड़के हायर किए हुए हैं, एक में गीला कूड़ा, एक में सूखा कूड़ा और एक में अदर्स वेस्ट। और वहीं गांव के एंड में जहां उनका गांव खत्म होता है, वहां पर उन्होंने एक छोटा सा कमरा बना रखा है काइंड ऑफ, और उसमें छोटे छोटे पार्टीशंस कर रखे हैं। तो लड़के सुबह सुबह जाते हैं, तीनों में अपना कूड़ा भर के लाते हैं, जो गीला वेस्ट होता है उसे वो पशुओं को देने के लिए या खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर सूखे कूड़े को प्लास्टिक को अलग करते हैं, चप्पलों को अलग करते हैं, कपड़े को अलग करते हैं, लोहे को अलग करते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ या 2-3 महीने बाद उस सारे कूड़े को बेच देते हैं। और यकीन मानिएगा, कभी तो 3 महीने में उन्हें सरप्लस होता है और उन लड़कों की सैलरी के बाद भी 2-5 हज़ार रुपए पंचायत को बच जाते हैं। और कभी कभी थोड़ा बहुत डेफिसिट होता है तो 1,000-2,000 रुपए पंचायत को जेब से देने भी पड़ते हैं। पर आप देखिए क्या खूबसूरत पहल है।
1: और ये गांव में किया,
2: एक गांव सेक्टर 55 का पिछड़ा हुआ इलाका, जहां पर अभी बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, सड़क भी प्रॉपर पक्की नहीं है, वहां पर अगर ये काम हो सकता है तो शहरों में भी हो सकता है। दूसरा, मैं आपको एक जिक्र करूंगा INA सोसाइटी का। दिल्ली में एक सोसाइटी है INA, वहां पर एक सरदार जी है, उन्होंने सेम कंसेप्ट यूज किया हुआ है। वो भी इसी तरीके से 3 तरीके से कूड़ों को अलग अलग लेते हैं। मैं नहीं कह रहा आप 4 में 5 में आप उसे बांटिए, ठीक है सरकार की पहले आप वो 5 हिस्से करेंगे तो नथिंग लाइक दैट, पर वो सरदार जी भी यही करते हैं। उन्होंने अपना एक एरिया ले रखा है ऑलमोस्ट 500 गज का, उस 500 गज के एरिया में वो गीले कूड़े को लेके आते हैं, सूखे कूड़े को लेकर आते हैं, देन छोटे छोटे हिस्से में उसको सेग्रीगेट करते हैं। जो गीला कूड़ा होता है, चाय पत्ती होती है, उनसे मुर्गी वाले खरीद के ले जाते हैं, और जो गीला कूड़ा होता है उसको वो खाद बनाने वालों को बेच देते हैं। मतलब वो सरदार जी अपने एक प्लांट से ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक छोटी सी INA सोसाइटी से। एक तीसरी सोसाइटी की मैं आपसे बात करता हूँ, ये 3 जगह मैं आपको वो बता रहा हूँ जब मैं खुद जाके शूट करके आया हूँ। जब मैंने खुद लोगों के इंटरव्यूज किए हैं और चीजों को मैंने देखा है। तीसरा है टाटा परिमंती सोसाइटी गुड़गांव की, जहां पर कई सालों से 3 वेस्ट के डिब्बे आपको दिए जाते हैं, और अगर आपने 3 वेस्ट के डिब्बे में सेग्रीगेशन नहीं किया है तो आपका कूड़ा कोई उठाने ही नहीं आएगा, और अगर आपने मिक्स कर दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी अलग से लगेगी।
1: अच्छा।
2: देखिए, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। लोगों में जो आदत नहीं है, अगर आपको आदत डालनी है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ उन्हें भी देनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो उन्होंने अपने यहीं एक कूड़ा को खाद में कन्वर्ट करने वाली मशीन बना रखी है, जो खाद में उनके सारे किचन वेस्ट को कन्वर्ट करती है, और वही जो खाद बनती है उसी से वो अपने पूरे एरिया की ग्रीनरी मेंटेन करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो आप सोचिए कितनी खूबसूरत पहल है। और जो बाकी का वेस्ट है जो उन्होंने सूखा दिया, उसको एट द एंड ऑफ द मंथ फिर बेच देते हैं, रेवेन्यू जनरेशन। तो जो उनका वो खाद बनाने वाला प्लांट है उसकी कॉस्ट उसी कूड़े को बेच के निकल रही है।
1: बिल्कुल, मतलब आप सिर्फ कूड़ा सेग्रीगेट नहीं करें, आप अर्न भी कर रहे हैं इससे। आपका सिस्टम एकदम सेट हो रहा है। आपको अगर आप कुछ नहीं, अगर मैं कह रही हूँ अगर आप खरीद भी कोई आपसे नहीं रहा है, तो आप वो खाद अपने गार्डन में डाल रहे हैं, इसमें भी आपको ये बचत ये हो रही है कि आपको बाहर से मैन्योर नहीं लेना पड़ रहा है।
2: एग्जैक्टली।
1: तो एक बेसिक सी चीज़ है कि आप ये कर सकते हैं और ये इजीली हो सकता है।
2: इनफैक्ट जैसे इलेक्शन के टाइम पे होता है, पन्ना प्रमुख होता है, वार्ड प्रमुख होता है, वैसे ही कूड़े के लिए क्यों नहीं हो सकता? क्यों वार्ड लेवल पे सेग्रीगेशन नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता मोहल्ले के लेवल पे सेग्रीगेशन? क्यों गली के लेवल पे सेग्रीगेशन नहीं हो सकता? देखिए, जब छोटी से छोटी इकाई सेग्रीगेट करेगी तभी जाके पूरे शहर का कूड़ा अलग अलग बटेगा, तभी जाके उस कूड़े को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा मिक्स हो गया तो यकीन मानिए वो सूखा कूड़ा भी बेकार है और गीला कूड़ा भी बेकार तो है ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वो जमीन पर जाता है और फिर धीरे धीरे बन जाता है एक बड़ा पहाड़। और ये कूड़े का पहाड़ क्यों है? क्योंकि हमने अपने लेवल पर इसको सेग्रीगेट नहीं किया। पंकज जी, थोड़ी सी बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की, क्योंकि घरों का कूड़ा तो एक बड़ा मैटर है ही, और बहुत सारे लोग इसको सेग्रीगेट करने के बारे में जानते हैं, कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे आपने सोसाइटीज़ के बारे में बताया कि ये कोशिश करें। लेकिन अभी बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। अब इंडस्ट्री को लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है फाइन भी लगाता है, कोशिश करता है। कभी कभी ये कोशिशें कागजी तौर पर होती हैं, कभी कभी ये कोशिशें एक्चुअल जेन्युइन भी होती हैं। लेकिन जैसे ही AQI लेवल जाता है 250 के पार, सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल किया जाता है, रोक दिया जाता है, और उनसे कहा जाता है आप सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री का पोल्यूशन किस किस रूप में पर्यावरण को हानि पहुँचा रहा है। ये वेस्ट सिर्फ सॉलिड है, लिक्विड है या गैशियस फॉर्म में है, और ये वेस्ट कंट्रोल करने के नियम क्या होते हैं?
2: मैम, नियम क्या होते हैं ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और नियम जो है सरकारें वक्त और हालात के हिसाब से डिसाइड करती हैं। घरों से बाहर निकलना इल्लीगल हो जाएगा, ये हमने लॉकडाउन से पहले तक सोचा भी नहीं था, तो वो हालात डिसाइड करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके लिए एक मॉडल मैंने सुझाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो आप दूसरे देशों से कॉपी कर सकते हैं, दूसरे देश इस मॉडल को अपना रहे हैं, प्रपोजल फॉर कॉर्पोरेट लेट डिपॉजिट रिटर्न स्कीम। तो इसे लोग पेंट मॉडल बोलते हैं, PANT। इससे एनवायरमेंट में क्या शिफ्ट आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली
1: जी,
2: वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल 10 रुपए की भी बेचती है और 20 रुपए की भी बेचती है। अब 10 रुपए की बॉटल पे आप 1 रुपए का ग्रीन टैक्स लगा दीजिए और 20 रुपए की बॉटल पे आप 2 रुपए का ग्रीन टैक्स लगा दीजिए। द मोमेंट आपका कस्टमर आपको आपकी बॉटल रिटर्न करेगा, आप उस बॉटल को 11 में बेचिए, द मोमेंट आपको कस्टमर ने रिटर्न किया आप कस्टमर को 1 रुपया दे दीजिए। तो पहली बात तो ये हुई कि आपके पास प्लास्टिक वापस आ रहा है। नाउ मेक इट कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी जो जितना वेस्ट जनरेट कर रही है उसको मिनिमम उसका 95% रिसाइकल करना पड़ेगा। अगर वो अपने जनरेट किए वेस्ट का 95% लेके मार्केट से उसको रिसाइकल कर देते हैं तो आप उनका सारा ग्रीन टैक्स माफ कर दीजिए। और अगर वो 85% से कम करते हैं तो आप उनपे 100% पेनल्टी लगाइए, जितना टैक्स है उतनी ही पेनल्टी अलग से। क्योंकि भारत सरकार की अकेले पहल से नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसमें कॉर्पोरेट की इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट जरूरी है। जो लोग 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वो क्या सिर्फ प्लास्टिक से हमारी नदियों को भरने के लिए आए हैं? क्या हमारे जहन में सिर्फ उन्होंने माइक्रो प्लास्टिक भरना है? नहीं, इसका ऑल्टरनेट उन्हें सोचना होगा। या तो वो कोई ऐसी चीज लेके आए जो डिसॉल्व हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, एटमॉस्फेयर में हमें कुछ हार्म ना करे,
1: बायोडिग्रेडेबल हो,
2: और एल्स वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया जाए। और ग्रीन टैक्स लगाए बिना कोई ऑप्शन है नहीं। आपको ये पेंट मॉडल सीखना पड़ेगा, बहुत सारे विकसित देशों ने इस मॉडल को अपने यहाँ लगाया हुआ है। और उनके यहाँ आप कभी जाए, आप तो जरूर घूमे होंगे विदेशों में, तो आपने देखा होगा वहाँ की नदियाँ जिन्हें माँ नहीं मानते वो हमारे यहाँ की माओ से बहुत खूबसूरत।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नदियों सिविक सेंस मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक इंसान के लिए, कि आप अपना घर तो साफ रख लेते हैं पर आप बाहर जो साफ सफाई है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ी होंगी, गाड़ियाँ आजकल बहुत महंगी आती हैं, तो गाड़ियाँ तादाद भी बढ़ती जा रही है, यानी लोगों की अफोर्डेबिलिटी है उसको खरीदने की। पर मैं आज भी देखती हूँ कि इन चौड़ी चौड़ी सड़कों से बड़ी गाड़ियाँ लेकर गुजरते हुए जो लोग हैं वो अपने चिप्स का पैकेट, अपनी प्लास्टिक की बॉटल, सब कुछ खिड़की से बाहर फेंकते हुए एक बार भी नहीं सोचते। हालांकि कम हुआ है ये चीज़, पहले तो बस यूं ही सब फेंक देते थे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी गाड़ियों में ऐसे लोगों को कचरा फैलाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जाहिर सी बात है बहुत लोगों ने भी देखा होगा। बट ये सिविक सेंस भी मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है लोगों के दिमाग में आना, इस चीज़ को समझना कि हमको अपने पर्यावरण के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा ना।
2: आप सही कह रहे हैं दीक्षा जी।
1: पंकज जी, जब हम विदेशों में जाते हैं ना तो वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन अपने देश में आके हम भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई आपको बहुत स्ट्रिक्टली लाठी लेकर फाइन करे तब आप सुधरेंगे।
2: नहीं, आपने सही कहा, मैंने इसलिए आपको बोला। देखिए, दो तरीके हैं, प्यार से, डंडे से, लालच से, किसी तरीके से तो आपको सामने वाले को समझाना होगा या डर से समझाना होगा। तो पेंट पॉलिसी हम चिप्स के पैकेट पे क्यों नहीं लगा सकते? कि आपको चिप्स का पैकेट अगर वापस करना हो और आपको एक या दो रुपए मिलेंगे तो चिप्स का पैकेट आप किसी गरीब को दान दे देंगे कि बेटा जा दुकान वाले को दे के 2 रुपए ले आ, आप भी नहीं फेंकेंगे उसे और आप भी बचा लेंगे। और दूसरी बात जो आपने मुझे बोली कि विदेशी, छोड़िए मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। पता नहीं आपने कभी ईएमयू से ट्रेवल किया है या नहीं?
1: मैंने पंकज जी अपनी कॉलेज लाइफ में ईएमयू से ही ट्रेवल किया है।
2: मैंने भी कॉलेज तक जाने का एक ही मीडियम होता था अपने पास, ईएमयू, तो उस समय कुछ दूसरा था नहीं। तो ईएमयू में जब लोग चढ़ते थे, लोग दूध के डब्बे लेके भी चढ़ते थे, उसमें कीर्तन भी करते थे, छेड़ा छाड़ी भी करते थे, चोरी भी होती थी, पान की पीक भी फेंकते थे, बीड़ी भी पीते थे। वही इंसान जब मेट्रो में चढ़ता है तो अचानक से सुधर जाता है,
1: क्योंकि रूल्स हैं,
2: क्योंकि रूल्स हैं, क्योंकि सिस्टम है। जब कोई सरकार अचानक से आके बोल सकती है आज से भाई से वो बहनों ये 500,000 के नोट नहीं चलेंगे, तो ये भी बोल सकती है कि आज से नहीं चलेगा, आज से पेंट लागू होगा, आज से आपको कूड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होंगे तो जाके चीजें बनेंगी।
1: ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए। शुरुआती दौर में स्ट्रिक्टनेस चाहिए, फिर ये आदत बन जाती है।
2: और शुरुआत में आप उन्हें साथ ही साथ ये रेवेन्यू दीजिए ना, बेनिफिट दीजिए। 1 रुपया चिप्स के पैकेट पे अगर आपको मिल रहा है तो आप सोचिए आप चाहे कितने बढ़िया क्यों ना हो, रईस क्यों ना हो, आपके घर में अगर 100 पैकेट आ रहे हैं, 100 पैकेट वापस करने पे अगर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप उसे कूड़े में क्यों फेंकेंगे? आप उसे दुकानदार को जाके रिटर्न करेंगे और दुकानदार अगर उसको रिटर्न करेगा तो कहीं ना कहीं वो रिसाइकल होगा। तो चीजों को ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कीजिए। और ग्रीन टैक्स लगाने का हमारा पर्पस एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट करना नहीं है, कंपनीज को अकाउंटेबल बनाना है कि भैया आपने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, 95% रिसाइकल करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो मर्जी इंडस्ट्री से वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसका बेयर मिनिमम अगर आपने 95% रिसाइकल नहीं किया है तो आपके ऊपर ना सिर्फ 100% ग्रीन टैक्स बल्कि 100% पेनल्टी भी लगेगी।
1: बिल्कुल, ये कोशिश तभी पॉसिबल है जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़े से हार्श कदम तो उठाने पड़ते हैं। पंकज जी, ये तो बात हो गई वेस्ट की, जो प्लास्टिक है या वाटर वेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में से केमिकल इतना ज़्यादा निकलता है कि लोग आसपास के एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर ये न्यूज़ भी देखी है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। बिहार के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर पीने लायक पानी तो छोड़िए, वहां रहने लायक हवा भी नहीं बची आज की तारीख में। बहुत सारी जगहों पर ऐसे आपको मिल जाएगा, खबरें बहुत सारी देखेंगे हम, गूगल पे चेक करेंगे तो आपको ऐसी अनलिमिटेड खबरें मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको 4-5 खबरों में ख़त्म कर देंगे, अनलिमिटेड आपको न्यूज़ के पेजेस खोलते हुए नजर आएंगे। सो ये वाटर वेस्ट को लेकर क्यों नहीं कदम उठाया जाता, क्यों नहरों में, अब ये जो नहर हमारे यहाँ से आती है ये इतनी पोल्यूटेड क्यों है?
2: दो तीन अगर आप मुझे मिनट देंगे तो मैं इस पर थोड़ा गहराई से बात को आपकी डालूंगा। नहर में जो पानी जा रहा है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होते हुए जा रहा है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, फरीदाबाद में जो भी कोई इस रेडियो को सुन रहा है सभी को चुनौती है, आप खुद से RTI लगाएं और आप सरकार से पूछें किसी एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड वो आपको दे दें। बिना सीवेज ट्रीट किए पानी सीधा अगर आप नहर में छोड़ेंगे, वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ, तो नहर में जहर ही जाएगा और वो जहर जब खेतों में जाएगा तो आप वही जहरीली सब्जी ही खाएंगे, आप कोई उसमें अमृत नहीं पियेंगे। और आप बात कर रही थी बिहार के पानी की, आप छोड़िए सेक्टर 58 फरीदाबाद में वहां का इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी, क्योंकि

0: 30 फुट का पहाड़ तोड़ लीजिए, इन्होंने 30 फुट का ऊपर का तो पहाड़ तोड़ा ही तोड़ा, नीचे 150-200 फुट की तो कोई लिमिट नहीं थी, इन्होंने उसे भी तोड़ दिया। अब वो नीचे 150-200 फुट जब आप जमीन के नीचे जाएंगे तो एक्वीफर पंचर हो जाएंगे, तो एक्वीफर हो गए पंचर। अब कूड़ा ले जाके जब आपने उस पर डंप किया तो एक्वीफर में तो पानी ऊपर आ चुका है, आसपास आपके ऑलरेडी बहुत सारे एनकैचमेंट एरियाज हैं जिसकी वजह से वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, तो आपने यहां पर कूड़े का पहाड़ 200 फीट तो इसको भरा ही भरा, आपने 50-60 फुट और ऊपर ले गए, आप 100 फुट तो अब ऊपर जा चुका है शायद, उससे भी कहीं
1: ज्यादा होगा मुझे लगता है।
0: और उस पे जब बारिश आती है और लेचेट का पानी निकलता है तो वही वो एक्वीफर में जाके मिलता है और वही वो एक्वीफर का पानी आसपास के गांव वाले पीते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। आज से 3 साल पहले सूरजकुंड के अंदर मैं एंकरिंग कर रहा था गुजर महोत्सव में, लाखों गुजर आए थे दुनिया के कोने कोने से, पाकिस्तान से भी आए थे, हिंदुस्तान से भी आए थे, जहां कहीं अरावली के साथ साथ गुजर पनपे बड़े हुए समुदाय पूरा जो रहता है सब जगह से गुजर आए। तो वहां पर ना एंकरिंग कर रहा था मैं और एक अचानक से अधेड़ उम्र की एक बहन जी आई और आके ना अचानक से रोने लगी, तो मैंने माइक ऑफ किया और मेरे पास अपनी पानी की बॉटल थी मैंने उन्हें दी, मैंने कहा बहन जी बैठिए और पानी पीजिए। तो मेरे को समझ नहीं आई कि मैं एंकरिंग कर रहा हूं तो मेरे पास आके क्यों रोने लगी। मैंने उन्हें कुर्सी ऑफर की, बिठाया, पानी पिलाया, मैंने कहा बहन जी क्या हुआ, बोली मेरे ना 4 बच्चे हैं, उनकी ना शादी नहीं हो रही। तो मैं थोड़ा सा ना माइक पीछे करके मुस्कुराने लगा, मुझे लगा अब ये मुझे एंकर समझ के ये बोलने वाली है कि मुझे अनाउंसमेंट करनी है इनके 4 बच्चे और उनके लिए लड़की ढूंढनी है, तो बड़ी अजीब सी बात लगी। पर उनका कहना कुछ और था, उन्होंने कहा मैं बंदवाड़ी गाँव में रहती हूँ और हमारे यहाँ पिंक कलर का पानी आता है, और उन्होंने बोला आज हमारे गाँव में आप हमें एक घर दिखा दीजिए जिसमें 5 मेंबर रहते हो और कम से कम 2 को या तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ना हो या वो कैंसर के पेशेंट ना हो।
1: अच्छा, यानी इतनी गंभीर समस्या हो चुकी है।
0: ये समस्या उस समय इतनी गंभीर थी, अब कितनी गंभीर हो चुकी है आपको ये बताता हूँ। इस रिपोर्ट को मैंने कुछ एक यूनिवर्सिटीज के साथ और इधर उधर जहाँ कहीं हम जा सकते थे फैलाया, तो इस पर जेसी बोस यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्टडी की और उसी बंदवाड़ी के 5 किलोमीटर के रेडियस के 5 गाँव की सिर्फ स्टडी की, स्टडी 5 गांव की, इसलिए डेटा सिर्फ 5 गांव का अवेलेबल है। अगर स्टडी 25 गांव की होती तो डेटा 25 गांव का भी अवेलेबल हो जाता, और वो 5 गांव की स्टडी ये बोलती है कि उन 5 गांव का पानी पीने लायक छोड़िए जानवरों के नहाने लायक भी नहीं है। यही पानी की अगर हम बात करें, NIT की बात करें, कहीं की भी बात कर लें, तो आप समझिए जो पानी हम पी रहे हैं, जो हम गंजे हो रहे हैं, जो हम इंटरस्टाइनल प्रॉब्लम हो रही है, जो मल्टीपल इश्यूज हमारे साथ आ रहे हैं,
1: इंटरनल ऑर्गन्स कभी भी फेल हो जाते हैं लोगों की, इतना
0: कभी भी फेल हो जाते हैं, तो ये जो है ये सब पॉल्यूशन की वजह से है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, दीक्षा जी आपकी, मेरी, चलिए हम मान लेते हैं हमारी, कलेक्टिवली ले लेते हैं, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो सामने आना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप एक रूल सेट करते हैं तो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जब तक हम सिस्टम पे काम नहीं करेंगे काम नहीं होगा। तो इसका मेरे पास एक सुझाव है और सरकार को सुझाव है कि आप कंपल्सरी कर दीजिए हर सरकारी डिपार्टमेंट में, हर सरकारी ऑफिस में, हर सरकारी एम्प्लॉय के घर पे वहां ना तो आरओ का प्लांट लगेगा, ना वाटर सॉफ्टनर लगेगा, ना वहां बिस्लेरी या कोई और पानी की बॉटल आएगी। और मैं आपको चुनौती देके कहता हूं अगले 1 साल में फरीदाबाद के हर घर के अंदर सॉफ्टनर का आरओ वाला पानी आपको मिलेगा। और कभी अगर सीवेज और पानी मिक्स हो जाए तो आप चुनौती देके मुझे बताइएगा। पर कहीं ना कहीं आपको इस पे काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ये रूल लाना पड़ेगा। अब ये चीफ मिनिस्टर ला सकते हैं, मोदी जी ला सकते हैं, और मोदी है तो मुमकिन है।
1: पंकज जी अब बात करते हैं इस कूड़े के पहाड़ के बारे में जिसके बारे में हम बात करें इतनी देर से, कि ये जो बंदवाड़ी का है, हम बंदवाड़ी वाले की बात करें या ऐसी और
0: बात एक ही है।
1: दिल्ली में थोड़े टाइम पहले एक ऐसे ही, आप दिल्ली बॉर्डर अगर क्रॉस करके चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी आपको लेफ्ट राइट में ऐसा पहाड़ दिखता था, और हम ये सोचते थे कि ये पहाड़ भी वही सेम है बंदवाड़ी वाला या कुछ और है। तभी जाकर पता चला कि ये अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, ये कूड़े का पहाड़ है। ये बात मैं आज से 10-12 साल पहले की बता रही हूँ। फिर ये पहाड़ इतना बड़ा होता गया कि लोगों को डर लगने लग गया कि आखिर ये कितना खतरा पहुँचा सकता है, और साथ ही इनमें आग भी लग जाती थी। गर्मियाँ होती हैं, एक्सट्रीम गर्मी दिल्ली NCR में होती है, तो यहाँ पर जो कूड़ा होता है उसमें आग लग जाती है,
0: मीथेन रिलीज होती है,
1: तो आग लगना लाजमी है। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ सॉल्यूशन निकाले अधिकारियों ने और मंत्रियों ने, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक गार्डन बना दिया, मतलब ग्रास लगा दी, उसको हरा भरा कर दिया, तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, और टू सम एक्सटेंट वो एक कोशिश भी थी कि हाँ इस एटलीस्ट कुछ तो बेहतर हो, क्योंकि जब आप प्लांट लगा देते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक, एक पेड़ या पौधा ही है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो विष का प्याला शंकर जी ने पिया था वो पौधे भी पी लेते हैं, वो प्लांट्स भी पी लेते हैं, वो पेड़ भी पी लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये कोशिश जो है ये की गई, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या

0: ये कोशिश कारगर है? क्या ये जो आइडिया था ये ठीक है कि इस तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली जो मिट्टी है वो तो दूषित है ना इस पर भी।
1: आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा, मुझे लग रहा था पता नहीं सवाल निकल के आएगा या नहीं आएगा, पर थैंक यू दीक्षा जी आपने सवाल पूछा। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंदौर। इंदौर में ऐसे कूड़े के पहाड़ों के ऊपर ग्रीन बेल्ट बना दी गई। अभी इंदौर की ही स्टडी शो करती है कि वहां 93% पानी कंटेमिनेट हो चुका है। उसकी वजह क्या है?
0: और ये देश का सबसे साफ शहर,
1: सबसे साफ शहर, देश का सबसे साफ शहर जिसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं, वहां का 93% पानी प्रदूषित है। प्रदूषित ही नहीं है, कंटेमिनेटेड है, मतलब संक्रमित है। आपको बीमारियां हो सकती हैं वहां का पानी पीने से। अब है क्या जी, आप फरीदाबाद का भी जो हमारा पहाड़ है जिसके भी आप बात कर रहे थे, तो देखिए जिसको आइडिया नहीं मिल रहा इसको क्या करना है, उसको अपनी जान बचाने के लिए कूड़े को कहीं ना कहीं सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करें, किसानों को कूड़ा दे रहे हैं, उन लोगों को कूड़ा दे रहे हैं जिन्होंने अपने घर को ऊंचा करना है कि चलो आप इसे घर में मलबे के तौर पर दबा लो और अपना घर ऊंचा कर लो। पर आप सोचिए जब बारिश होगी तो क्या होगा, यहीं से पानी रिसके वापस
0: नीचे
1: कंटेमिनेट करेगा। अभी जो हाल बंदवाड़ी के 5 स्क्वायर किलोमीटर में हुआ, यही कूड़ा जब पाली में आएगा तो पाली के 3-5 स्क्वायर किलोमीटर में होगा, यही कूड़ा जब आपकी यूनिवर्सिटी के पड़ोस में आएगा तो यहाँ का पानी प्रदूषित करेगा। तो
0: जहां भी जाएगा अपने साथ वो प्रदूषण,
1: बीमारियां लेके जाएगा, संक्रमण लेके जाएगा। तो बीमारियां और संक्रमण जब साथ साथ चलेंगे तो पानी कैसे साफ होगा? तो वही दिल्ली में हालात हुए। देखिए कूड़े को निपटाने का एक ही तरीका है कि आप उसे सेग्रीगेट करें तो रिसाइकल होगा। अगर आपने सेग्रीगेट ही नहीं किया तो रिसाइकल नहीं हो सकता। इसके लिए पेंट लाना जरूरी है, इसके लिए कॉर्पोरेट को बाउंड करना जरूरी है। भैया अपना कूड़ा खुद निपटाओ,
0: अपना जिसने जनरेट किया वो इसका सोल्यूशन निकाले,
1: खुद निकाले, आप नहीं निकालोगे। आपने फ्लेक्स लगाई, फ्लेक्स किसने बेची आपको? जिसने बेची वो डिसाइड करेगा 95% फ्लेक्स कैसे डिस्पोज ऑफ होगी। और अगर उसके पास सोल्यूशन नहीं है तो उसको फ्लेक्स बेचने का लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए। जिसके पास प्लास्टिक की बॉटल को रिसाइकिल करने का प्लांट नहीं है उसको प्लास्टिक की बॉटल बेचने का, आप दूसरे देश में जाइए, किसी भी देश में जाइए, यूरोप में जाइए, जर्मनी में जाइए। मैं तो जर्मनी में अक्सर, मेरा एक फ्रेंड है वो मर्सिडीज में R&D हेड है, वो मुझे बताता है कि भाई हमारे यहाँ कोई चीज बनती है ना, अगर ये मोबाइल बन रहा है, पानी की बॉटल बन रही है, माइक बन रहा है, पेन बन रहा है, तो इसकी बनाने की परमिशन तब हमें मिलती है जब वो पहले पूछते हैं बताओ आज से 100 साल बाद इस पेन का क्या होगा, 100 साल बाद क्या ये संक्रमण फैला रहा होगा या ये कहीं अर्थ में जाके किसी बीज में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो अगर हम उसका सही से जवाब दे पाते हैं तो हमें परमिशन मिलती है उस चीज को बनाने की। यही फिलॉसफी, यही आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं हमें हिंदुस्तान में लाने की जरूरत है, ये बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। और मैं CSICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने सिलेबस में फॉर द फर्स्ट टाइम एनवायरमेंट के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है। वाद संवाद तो शुरू हुआ, आज अगर रेडियो मानव रचना इस बारे में डिस्कशन कर रहा है, आज अगर ICSI को अपना एक पूरा फुल फ्लेज्ड 25 पेज का चैप्टर देना पड़ा है इसके ऊपर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट पे बात करने वालों की जीत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और आप एनवायरमेंट पे काफ़ी काम कर रहे हैं ये हमने देखा है, और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि हम थोड़ी सी अपनी बातों के जरिए ही बदलाव ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं हमारे प्रोग्राम से, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कमर्शियल बहुत एक्टिविटीज़ अब होने लगे हैं, विच आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इलीगल। आप उनको ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर लाइसेंस से चल रही हैं या ये कमर्शियल बिल्डिंग है, लोगों ने अपने घर में दुकानें रेंट पे दे दी हैं। अब वो जो छोटे छोटे कैफेज खुल गए हैं वो कूड़ा करते हैं और कूड़ा उन्हीं के घर के बाहर छोड़ जाते हैं, रात को गाड़ी आती है ले जाती है, बट वो सेग्रीगेटेड नहीं होता। तो पंकज जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अब ये जो सेग्रीगेशन का सोल्यूशन है वो घर कैसे निकालें? मतलब 4 डस्टबिन हर घर में नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिकली हमें समझ लेना चाहिए, पर गीला सूखा में कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या चीजें आती हैं वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए, ताकि हम अपने लेवल पर कोशिश करें और ये बंदवाड़ी जैसे और नए पहाड़ ना आ पाए।
1: देखिए सिंपल है, गीला कूड़ा आपका जितना भी है आप कोशिश कीजिए, इंटरनेट पे जाइए, वीडियोस निकालिए, नहीं तो मानव रचना अपने एंड पे बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है जहां पर वो सिखाता है कि गीले कूड़े से आप खाद को कैसे बना सकते हैं। आप मानव रचना के उन प्रोग्राम्स को, RWS की उन मीटिंग्स को अटेंड कीजिए, आप सीख जाएंगे गीले कूड़े से खाद कैसे बनती है, तो आपका कूड़ा आप ही के काम आ जाएगा। और रही बात सूखे कूड़े की, तो मेरी मामी जी मुझे याद पड़ता है जब वो जिंदा थी 2018 तक, आई गेस 2018 में ही वो एक्सपायर हुए हैं आज से कुछ 7-8 साल पहले, जब तक वो अलाइव थे हमारे घर का सारा सूखा कूड़ा वो अपने पास इकट्ठा करके रखते थे 1-1.5 साल तक, और 1-1.5 साल बाद जब वो उसे बेचते थे तो 7-8 हज़ार रुपये उन्हें कमाई होती थी। पेंट स्कीम लाने का फायदा क्या होगा अगर किसी कॉर्पोरेट को लग रहा है भाई ये रैपर तो रिसाइकल नहीं हो सकता, आपको लगता है वो प्रोड्यूस करेगा?
0: बिल्कुल,
1: वो उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन लेके आएगा, वो चीज लाएगा ही नहीं जिसको खुद रिसाइकल नहीं कर सकता। आज उसे परवाह क्यों नहीं है, उसे अपना प्रॉफिट दिख रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी इंक्रीज होती जा रही है। एनवायरमेंट के ऊपर जितने भी लोग काम करने वाले हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर, मैंने एक आरटीए लगाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी।
0: पंकज जी मैं एक चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ, सिंगल यूज प्लास्टिक टेक्निकली बैन है इंडिया में?
1: टेक्निकली बैन इंडिया में है सिंगल यूज प्लास्टिक, एक पर्टिकुलर माइक्रोन से अगर आप कम का यूज करते हैं तो वो बैन
0: है। जैसे हाँ। हम बहुत बार देखते हैं कि हमें जो सब्जी मिल रही है या मार्केट से कुछ खरीद रहे हैं वो नीली नीली थैली,
1: जो कलरफुल नीली पीली हरी थैली होती है, वो रिसाइकल प्लास्टिक होता है और वो वर्जिन प्लास्टिक नहीं होता, तो वो थैलियां बैन है,
0: वो एब्सोल्युटली
1: बैन है।
0: और जो व्हाइट वाली थैली होती है वो भी बैन है, जो
1: उसमें जिस पे लिखा होता है मैं इतने माइक्रोन की हूँ और मैं प्लास्टिक नहीं हूँ, वो बैन नहीं है।
0: अच्छा, लेकिन जो प्लास्टिक की होती है सिंपल सफेद थैली जो आती है एक प्लास्टिक, हाँ, हाँ, वो बैन है,
1: वो माइक्रोन का हिसाब है, मुझे माइक्रोन याद नहीं आ रहे, शायद 100 माइक्रोन है, 100 माइक्रोन से ऊपर की पॉलिथीन आप रिसाइकल होती है तो आप बेच सकते हैं 100 माइक्रोन से।
0: बहुत सारे लोगों ने कपड़े की आजकल बना के बेचने शुरू कर दिए, कोई एक मटेरियल होता है जो बाद में फट जाता है और ऐसे ही जमीन में चला जाता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो पंकज जी अब बहुत सी बातें करने के बाद टाइम हमारा इजाजत लेने का हो गया, पर मैं आपसे सिर्फ 5 टिप्स एक आम इंसान के लिए, एक घर के लिए, कि वो किस तरीके से पॉल्यूशन को कम करने में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए पॉल्यूशन होता क्या है, कार्बन एमिशन क्या है। कार्बन इज नथिंग बट कंजम्पशन, आप चाहे सांस ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, पानी कंज्यूम कर रहे हैं, एनीथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग, आपके कपड़े, आपके हेयर कलर, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, जो भी कुछ आप दिन भर में कंज्यूम करते हैं वो कार्बन एमिट करता है। तो सबसे पहले जो टिप है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, घरों से प्लीज सिंगल यूज चीजें निकालिए, रखनी है तो वो चीजें रखिए जो रीयूजेबल हैं। बर्तन क्या आप घर में प्लास्टिक वाले इस्तेमाल करते हैं, क्या आप प्लास्टिक की चम्मच इस्तेमाल करते हैं, मेहमान आता है तो क्या आप उसे प्लास्टिक की चम्मच सर्व करते हैं? द आंसर इज नो, है ना, वो एटिकेट्स भी नहीं हम लोग। तो अगर हम किसी को अपना मान रहे कि हमारा मेहमान है या ये हमारे गुरु के दरबार में आया है या हमारे भगवान के दरबार में आया है, तो भगवान के दरबार में आए हुए का जो लेवल है वो भी तो भगवान के बराबर का हुआ ना, तो कहीं ना कहीं उसे भी हम बर्तन बैंक बना के उन चीजों में खाने को
0: रीयूजेबल
1: चीजों का इस्तेमाल करें। सबसे पहली जो घर वालों को मैं बोलूंगा कि आप घर से सिंगल यूज की चीजें हटा दें, रीयूजेबल चीजें ही इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ जितना कम हो सके टिश्यू पेपर का इस्तेमाल मत कीजिए। जितना पानी टिश्यू पेपर को बनाने में लगता है उससे कम पानी में आपका रुमाल धुल जाएगा, इस्तेमाल कीजिए, आदत डालिए, पानी की बॉटल अपने साथ खुद की अपनी कैरी कर लीजिए इंस्टेड प्लास्टिक की यूज करने के। और प्लीज किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वो अगर आपको आरओ पानी सर्व करने से मना कर दे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उठ के चले आइए,
0: मतलब बॉटल ना खरीदें, इंस्टेड आप आरओ वाटर का इस्तेमाल।
1: सिंपल सी बात है ना, देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में कोई भी आपके घर पे आता है आप उसे पानी पिलाते हैं, लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट वाला आपको पानी पिलाने से भी मना कर रहा है और बोल रहा है नहीं मेरे पैसे की कमाई करवाओ, तो इसका मतलब वो मेहमान नवाजी तो नहीं कर रहा, आप वहां से शांति से उठ
0: जाइए,
1: प्योर बिजनेस है और एनवायरमेंट को तो कहीं ना कहीं नुकसान हो ही रहा है। तीसरा, जो आपके घर का सूखा वेस्ट है आप उसे इकट्ठा कीजिए, आप उसे गीले वेस्ट के साथ डंप मत कीजिए। आपके घर
0: वेस्ट में मैं चाहूंगी आप एक बार बता दें,
1: गत्ते के डिब्बे जैसे अमेजन से आए, फ्लिपकार्ट से आए, आपने जो भी कुछ सामान मंगाया उसको आप अलग करते जाएं, कागज भी आते हैं, रैपिंग आती है, सब वो सब चीजें बिकती हैं, आप उन्हें इकट्ठा कर लें, एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप उन्हें बेचेंगे 2-3 महीने बाद थोड़ा सा घर में एक जगह बना लीजिए इनके लिए भी, चाहे गीले ना हो, क्योंकि गीले हो गए तो बिकेंगे नहीं, वेस्ट हो जाएंगे। आप प्लास्टिक इकट्ठा कर लीजिए, जूते भी पुराने बिकते हैं और नहीं बिकते तो किसी को दान कर दीजिए, आपके लिए जो वेस्ट है वो शायद किसी के लिए गोल्ड हो।
0: बिल्कुल, जरूरत होती है,
1: जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है, मतलब मुझे तो याद पड़ता है कि एक कोट पैंट था जो मेरे पिताजी ने डाला, फिर मेरे चाचा जी ने डाला, फिर मैंने डाला और मेरे भाई ने भी डाला, तो एक जमाना तो वो था कि हम घर में ही 4 जनरेशन उसी एक चीज को डाल रही हैं, और आज हम वो सब चीजें भूल ही चुके हैं कि यार ऐसा भी कुछ होता है, ये तो मैंने पिछली शादी में डाल लिया था अब मैं क्यों डालूं। अरे नहीं नहीं नहीं, जरूरतें कम से कम रखो और जमीर में दम रखो, जो मूवी का एक डायलॉग है, तो चीजें एनवायरमेंट को अपने आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और दो मैं आपको एप्लीकेशंस बताता हूं, एक तो है ई समाधान, आप डाउनलोड कीजिए, आपकी मैक्सिमम सिविक प्रॉब्लम्स इस पर सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपके अकेले के डालने से सिविक प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व नहीं हो रही, आपके यहाँ मलबे का ढेर पड़ा है
0: और ये सारे लोग,
1: तो 4-5-10 लोग मिलके कंप्लेन कर दीजिए, वेरी नेक्स्ट डे इस पे काम होगा। आप महारी
0: सड़क, भारत सरकार की है,
1: ये हरियाणा की है।
0: ओके, स्टेट गवर्नमेंट के।
1: ई समाधान।
0: ओके,
1: एक है महारी सड़क, MHARI महारी सड़क। आपको जहां सड़क टूटी हुई मिले पूरे हरियाणा में, आप सिर्फ उस लोकेशन पे जाएं, फोटो क्लिक करें और अपलोड कर दें, 15 दिन के अंदर आपको सड़क बनी हुई मिलेगी। पूरी प्राणायाम सोसाइटी में शिफ्ट होने से पहले वहां पर ए और डी ब्लॉक के बीच की सड़क टूटी हुई थी। डेट शायद मुझे याद है सही सही तो 23 तारीख थी जब मैंने कंप्लेंट डाली थी, या 17 तारीख थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। और मैंने लेटर भी मेल भी कर दिया साथ साथ फॉरवर्ड। यकीन मानिएगा दीक्षा जी, सेकेंड डे आके वहां पर सीमेंटेड सड़क बनना शुरू हो गई और नहर पार की पहली सीमेंटेड सड़क बनी। तो सरकार भी ऐसा नहीं है काम नहीं कर रही, सरकार ने आपको टूल्स दिए हैं, आपको टूल्स
0: हमें पता नहीं है,
1: यूज करने आने चाहिए,
0: अंदाजा नहीं है कि क्या।
1: ई समाधान आपकी कहाँ हेल्प करेगा, आपके आसपास जहाँ मलबा इकट्ठा है, जहाँ आपके आसपास कूड़े के ढेर लगे हैं, आप इन पे पिक्स क्लिक करके डालिए और सरकारों को लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि पड़ोसी मेरा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, लिखने में क्यों डर रहे हो, पहले तो आप पड़ोसी से बात करो, पड़ोसी नहीं मान रहा सरकार से बात करो। और इस सरकार में कभी भी लेटर आप किसी एक को मत लिखिए, आप नीचे से लेके ऊपर तक 6-7-8 मेल आईडी निकालिए और सबको एक साथ मार्क कीजिए सीसी करते हुए, ताकि अगर कोई एक बंदा उसे इग्नोर भी कर रहा है तो ऊपर से फाइल फिर से चलती हुई उनके पास आए, और जब 4-5 बार फाइल मार्क होते हैं उनके पास आती है तो अल्टीमेटली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड होता है, उसके ऊपर काम होता है। 1-2 की चौक से 2-3 की चौक तक जो सड़क पहले 22 फुट की थी अब 45 फुट की जा रही है, जन कल्याण समिति का योगदान है, उनके लेटर से काम हुआ है। अनगिनत काम जो हमारे लेटर से हो सकते हैं हम करते हैं। एक तीसरी ऐप है जी, फरीदाबाद 311, MCF 311 या फरीदाबाद 311 की ऐप है। आपको MCF से रिलेटेड जितनी दिक्कत है आप इस पे डालिए।
0: अच्छा,
1: MCF वाले इससे नहीं मान रहे तो MCF के साथ साथ ई समाधान पे भी डाल दीजिए।
0: अच्छा,
1: आपकी प्रॉब्लम
0: मतलब आपकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करानी जरूरी है।
1: आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप मम्मी को बताएंगे नहीं मम्मी दवाई कैसे देगी, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ को पता कैसे लेगा उसे भूख लगी है, खाना कैसे खिलाएगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जहां हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की थोड़ी सी जरूरत है। ये सब हम कर लें तो लगता है हम कलेक्टिवली मिलके एक अच्छा हिंदुस्तान
0: सॉल्यूशन तो ढूंढ ही पाएंगे,
1: कुछ तो कर ही लेंगे।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें पंकज जी आपने शेयर करी हमारे श्रोताओं के साथ, और उम्मीद है जो भी लोग सुन रहे हैं वो कुछ तो बदलाव अपने जीवन में लाएंगे और बंदवाड़ी जैसा एक बड़ा पहाड़ और बनने से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच दीक्षा जी।
0: तो प्रोग्राम ग्रीन ग्रह जिसे सपोर्ट किया है PTC फाइनेंस ने इन एसोसिएशन विद डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन एंड इको क्लब, हमने बहुत सी बातें करी कि वेस्ट सेग्रीगेशन किस तरीके से होना चाहिए और नहीं होता है तो क्या क्या रिपरकशंस होते हैं, इसके क्या क्या नेगेटिव प्रभाव होते हैं जो हमने देखे हैं। कहीं किसी गांव का पानी खराब हो रहा है, पीने लायक नहीं है, जानवर मर रहे हैं, तो कहीं पर पानी ऐसा आ रहा है आपके नलों में कि कोई भी वहां पर रहने को तैयार नहीं है। कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ जिनको आप अरावली के समझ रहे थे वो अरावली नहीं है, वो हमारे और आपके घर से निकलने वाला कूड़ा जो बरसों से निकलता आ रहा है लेकिन सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, ये उसका रिजल्ट है। इसलिए कोशिश अपने लेवल पर कीजिए ताकि आप इस तरीके की किसी भी खराब चीज़ या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ या इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को जड़ से ही खत्म कर दें। और बहुत सारी बातें आज हमने करी हैं इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट पंकज ग्रोवर जी के साथ, जो कि एक अध्यापक तो हैं ही साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जन कल्याण समिति के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उम्मीद है कुछ बेहतर कोशिश करके हम कुछ बेहतर समाज बना पाएंगे। फिलहाल आज बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बनके। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी कि ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उतक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें सही जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये सब बताते हैं। अगर आप में से किसी को भी अंग दान और देह दान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जा सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-120-3648 के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करके हमें बेहद खुशी होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो आप सभी को अंग दान जो है ऑर्गन डोनेशन, देह दान यानी बॉडी डोनेशन और उतक दान टिश्यू डोनेशन के बारे में जानकारी देना तथा समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टरों, अंगदान से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे और अंगदाताओं की कहानियां, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण की जानकारी और आपको इन विषयों को क्यों जानना चाहिए, ये सब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ है सुनैना सिंह, जो है ऑर्गन इंडिया की CEO। Over to you, Sunaina.
1: Thank you, Payal. आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर शीतल जोशी। डॉक्टर जोशी दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आज वो हमें देह दान यानी बॉडी डोनेशन के बारे में बताएंगी। डॉक्टर जोशी, हमारे सुनने वालों के लिए वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सुनैना, हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि हम ऑर्गन इंडिया के साथ जुड़ के आज के अभियान में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं।
1: सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि देहदान क्या होता है।
2: आपका ये सवाल बहुत ही अहम है क्योंकि जब हम किसी भी अभियान में जाते हैं, ज़्यादातर टाइम लोगों के बारे में जब लोग हमें सवाल पूछते हैं कि देहदान क्या है, लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि देहदान यानी किसी अंग का दान है। सबसे पहले ये धारणा आपको क्लियर करनी है कि देहदान मतलब पूरे बॉडी का दान करना। अंगदान इससे अलग है। अंगदान में एक अवयव का दान होता है, वो बिल्कुल इससे परे है। देहदान में जब आप पूरा देह किसी को डोनेट करते हैं यानी एक मेडिकल कॉलेज को डोनेट करते हैं, उसका उपयोग पूरी तरह से सिर्फ शैक्षणिक कार्यों के लिए और रिसर्च के लिए किया जाता है।
1: नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे देश में देहदान कितना होता है? क्या भारत में पढ़ाई या रिसर्च के लिए बॉडीज की कोई कमी है मेडिकल कॉलेजेस में, और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना क्यों जरूरी है?
2: जैसे कि आप जानती हैं कि भारत में पॉपुलेशन किसी बड़े शहरों में ज़्यादा है, गाँव में कम है, और मेडिकल कॉलेजेस की भी संख्या किन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में है ही नहीं। तो जब मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं तो इंडिया को सबसे बड़ा हब माना जाता है, जहाँ पे हम नए नए डॉक्टर्स रोज बना रहे हैं। इन डॉक्टर्स को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो देहदान का होता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग में हर 10 मेडिकल स्टूडेंट्स को जब ग्रेजुएट होते हैं तो उन्हें एक बॉडी पे काम करना पड़ता है। इसके वजह से देहदान की जागरूकता होना बहुत ही अहम है। अगर ये नहीं होती तो इनके ट्रेनिंग में भी उतनी ही रुकावटें आती हैं, चाहे फिर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग हो या उसके बाद जब सर्जन्स की भी ट्रेनिंग की बात आती है तो वो भी देह पे पहले काम करते हैं। इसलिए देहदान की ज़रूरत हमेशा ही भारत में ज़्यादा होने वाली है।
1: क्या भारत में देह की कोई बॉडीज़ की कोई कमी है मेडिकल कॉलेजेस में?
2: देहदान की कमी कहने से ज़्यादा हमें अभी हम सोचते हैं कि चलो मेडिकल कॉलेज है उन्हें लावारिस बॉडीज मिलती होंगे, लेकिन ये भी धारणा गलत है, क्योंकि लावारिस बॉडी को अगर हम लेते हैं काम के लिए तो वो उतने हिसाब से नहीं रखी जाती, जब क्योंकि उसका एक अलग प्रोसीजर है कि पुलिस से क्लियरेंस मिलने में टाइम जाता है। लावारिस बॉडी बहुत सारे ऐसे बीमारियों से भी लोग गए होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, तो जब हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं हम नहीं चाहते कि उनकी भी जीवन पे कोई आ जाए जब ऐसे बॉडीज पे वो काम करें। इसलिए देहदान जब एक एजुकेटेड फैमिली या फिर एक जो नेचुरल डेथ से जिनकी डेथ हुई है, ये लोग अगर जब आगे आते हैं तो इनकी बॉडीज की जो कंडीशन है और जो

0: जरूरत हमें सिखाते वक्त पड़ती है वो एकदम ऑप्टिमम होती है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि ज़रूरत इसकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे वॉलंटरी बॉडी डोनेशन को हम ज़्यादा बढ़ावा दें।
1: देहदान कौन कौन कर सकता है? हमको बहुत फ़ोन कॉल्स आते हैं पूरे भारत में से कि हमको देहदान करना है, कैसे करना है, क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने वेबसाइट पे ऑर्गन इंडिया पे एक बॉडी डोनेशन ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाई है जो आप जानती हैं कि 2 साल पहले लॉन्च हुई थी। तो वहाँ पे पूरी मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है भारत में जहाँ पे आप देहदान कर सकते हैं। तो लेकिन इस फिर भी लोग पूछते हैं कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन कर सकता है और यू नो किस सिचुएशन में लोग कर सकते हैं।
0: अभी जब देहदान के लिए आप अगर निश्चय कर चुके हैं तो सबसे पहली बात हमें जब पूछा जाता है कि हम क्या करें, तो हम यही कहते हैं कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप अपना प्रतिज्ञा पत्र भरिए। लेकिन प्रतिज्ञा पत्र भरना आपको यह आसान भी लगता होगा, लेकिन उसके साथ 2 विटनेसेस की हम ज़रूर पेशकश होती है, क्योंकि आपके फैमिली को उसको सपोर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और प्रतिज्ञा पत्र भर रहे हैं तो आपके फैमिली ने से 2 नियर रिलेटिव्स उसको साइन करेंगे, क्योंकि देहदान तभी हो पाता है जब आपका परिवार हाँ कहता है। आपके अकेले प्रतिज्ञा पत्र भरने से उससे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि अगर आपकी फैमिली को मालूम नहीं है तो आप जाने के बाद उनको अगर आपकी इच्छाएं मालूम नहीं है तो वो इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, प्रतिज्ञा पत्र भरिए और अपने फैमिली को इस आपके डिसीजन में शामिल कीजिए।
1: और ये प्रतिज्ञा पत्र उनको कहाँ मिलेगा?
0: प्रतिज्ञा पत्र भरने के लिए आपके नज़दीकी किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप अप्रोच कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी या फिर इसको शरीर रचना शास्त्र विभाग भी कहा जाता है, यहाँ आपको वो फॉर्म मिलेगा। आप इस फॉर्म को भर के, और अगर आपकी कोई कठिनाई ऐसी भी है कि आपने फॉर्म भर दिया और फिर आपने मन बदल लिया, तो इसके लिए भी आपको सिर्फ एक लेटर लिख के देना होता है उस मेडिकल कॉलेज को कि आपने अपना डिसीजन विड्रॉ कर लिया है। इसलिए प्रतिज्ञा पत्र भरना हम यही कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी फैमिली, आप अपने मुंह से भी कह दे कि मुझे देहदान करना है, ये अगर आपके आखिरी शब्द है और आपकी फैमिली उसमें एग्री करते हैं तो आपने प्रतिज्ञा पत्र भरना भी नहीं होगा, लेकिन आपकी फैमिली उसको ऑनर करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, आप देहदानी हो सकते हैं।
1: तो डॉक्टर जोशी, अगर मेरी इच्छा है कि मैं देहदान और अंगदान दोनों के फॉर्म भरूँ, प्लेज फॉर्म, तो क्या ये हम कर सकते हैं कि नहीं?
0: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न आता है कि जब मैं अंगदान करना चाहती हूँ या मैं देहदान करना चाहती हूँ, दोनों में ही फैमिली की इच्छा शक्ति तो होती ही है, लेकिन उसके साथ अगर आप सिर्फ अंगदान करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म भरिए, देहदान अगर सिर्फ करना चाहते हैं तो देहदान, लेकिन अगर आप दोनों की इच्छा रखती है तो आपको दोनों फॉर्म भरने की ज़रूर आज्ञा है। लेकिन आप ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देहदान आपकी जिस टाइप की डेथ होती है वही डिसाइड करता है कि आप किस टाइप की दाता बन सकती हैं। अगर आप देहदान, अगर आपका नेचुरल डेथ है तो ही फिर आपका देहदान हो पाएगा, और अगर आपकी ब्रेन स्टेम डेथ से मृत्यु हो जाती है तो आप अंगदान कर सकते हैं। तो मृत्यु ही डिसाइड करती है कि आप किस प्रकार का डोनेशन आगे जाके कर पाएंगे।
1: तो डॉक्टर जोशी, अभी हमने बात की थी कि अगर किसी को अपना शरीर डोनेट करना है अपने जाने के बाद, देहदान करना है, तो उनको एक पत्र भरना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और 2 विटनेसेस जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सिग्नेचर उस पे होने चाहिए, और उनको पता होना चाहिए फैमिली को कि आप देहदानी बनना चाहते हैं। तो अब मुझे ये पूछना है कि अगर जो भी कोई है जो 18 साल से ऊपर है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी फैमिली को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन या कागजात चाहिए होते हैं देहदान करने के लिए?
0: सबसे पहले, अगर 18 साल की आयु है और उनकी मृत्यु अगर अस्पताल में हुई है, तो उनकी मृत्यु के बाद जो ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे या अस्पताल की तरफ से ही उन्हें एक डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। इस डेथ सर्टिफिकेट को लेके उन्हें नज़दीकी शरीर रचना शास्त्र विभाग को अप्रोच करना होगा। जब वो वहाँ पे जाएंगे तो डेथ सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये तो लगेगा ही। इसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ जिनकी डेथ हुई है और जो नज़दीकी परिजन है जो उनके साथ अकंपनी कर रहे हैं वो बॉडी के साथ, उनका भी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, क्योंकि हर एक विभाग में जाते ही उन्हें एक पर्चा दिया जाएगा जहाँ पे इनकी पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी और फिर एक सक्सेसफुल डोनेशन हो पाता है। इसके बाद इसका एक प्रमाण पत्र भी परिजनों को दिया जाता है कि उन्होंने उस अस्पताल को देहदान किया है। इस प्रमाण पत्र को लेके वो मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में। लेकिन 18 साल की आयु का अगर ऊपर है आयु और मृत्यु घर पे हुई है जो कि नेचुरल डेथ है, तो फिर किसी भी नज़दीकी मेडिकल डॉक्टर को आप बुला सकते हैं और उससे डेथ डिक्लेरेशन करा के। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिको लीगल एंगल इस केस में ना रहे, इसमें पुलिस का NOC भी मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद ही आप वो डेथ सर्टिफिकेट को लेके अगर मेडिको लीगल एंगल नहीं है तो शरीर रचना शास्त्र विभाग को अप्रोच कर सकते हैं और बाकी की कार्रवाई वही रहेगी। लेकिन ध्यान यही रखना है कि मेडिको लीगल अगर केस है तो इसमें देहदान नहीं हो पाता।
1: और अगर किसी मरने वाले के उम्र 18 साल से कम है और फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि इसका देहदान हो जाए, तो फिर क्या कागजात या डॉक्यूमेंटेशन होती है?
0: ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जब हम कहते हैं कि देहदान हो पाता है, ये एक परिवार की इच्छा पहले हम मानते हैं, क्योंकि अगर 18 साल से कम भी है आयु, अगर 18 साल से कम भी है आयु तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिजन, नज़दीकी परिजनों का सबसे महत्वपूर्ण, उनके माता पिता जिनकी अगर लड़के की डेथ हो रही है तो उनके माता पिता, इनकी सम्मति बहुत ही अहम रहेगी। या कोई भी नज़दीकी रिलेटिव जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव माने जाते हैं, भाई बहन या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, इनका उधर होना बहुत ही ज़रूरी है।
1: अभी हमने 2-4 दिन पहले सुना कि एक नवजात बच्चे का देहदान हो गया है यूनाइटेड किंगडम में, और यहाँ भारत में भी हो चुका है मध्य प्रदेश में, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि
0: 18 साल से कम की आयु के लोगों का तो देहदान मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन उससे भी अगर नवजात बच्चा है, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है उनका भी देहदान हो, कि अगर उनका मृत्यु का कारण कोई जन्मता ही बीमारी है तो इसकी स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर उसके मृत्यु का कारण अच्छी तरीके से पता लगाना है या फिर उसके बारे में कोई रिसर्च करना है जो आगे जाके ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सके डॉक्टर्स, इसके लिए ऐसे नवजात शिशु का भी डोनेशन होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है।
1: थैंक यू शीतल। यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शीतल जोशी के साथ जो देहदान के बारे में बात कर रही हैं। डॉक्टर जोशी, आप हमें बताएंगे कि देहदान के बाद शरीर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है और वो किस काम में आता है?
0: देहदान जब हो जाता है हमारे विभाग में तो इसके बाद एक प्रक्रिया बॉडी के साथ की जाती है जिसे कहते हैं एम्बामिंग। इसमें ये किया जाता है कि एक इंजेक्शन के तौर पे फॉर्मेलिन करके एक सोल्यूशन आता है जो बॉडी को करीब करीब कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकता है। उसे आपके आर्टरीज में डाला जाता है, आर्टरी पूरे बॉडी में वो दवाई को फैला देती है और उसके बाद बॉडी को हम किसी भी टैंक में या कोल्ड स्टोरेज में सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्व करने के बाद, जैसे आपको मैंने अहम तरीके से बताया कि इसका यूज़ ज़्यादातर मेडिकल में एजुकेशन यानी डिसेक्शन, जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है, डिसेक्शन का लिटरल मीनिंग यही है कि बॉडी को खोल कर हम उसको पढ़ते हैं, नए डॉक्टर्स को उसके ऊपर सिखाया जाता है, ये इसका अहम यूज़ है। सेकंड चीज़ ये है कि उसमें से जो ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, अगर उसमें कोई यूनिक चीज़ है यानी कुछ अलग बनावट है तो डॉक्टर को उसकी जानकारी देने के लिए हम उसके स्पेसिमेंस बनाते हैं, यानी उनको डिस्प्ले में रखा जाता है ताकि नए जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको हम ये बता सकें कि इसकी बनावट क्यों अलग है और कैसी अलग है। थर्डली, जब हम बोलते हैं कि बॉडी का यूज़ रिसर्च में किया जाता है, चाहे फिर वो नवजात शिशु की बॉडी हो या 18 साल से ऊपर, कुछ लोगों में बनते वक्त कुछ नसें या बनने वाली जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से दिखाई देती हैं, तो हम उसका एक डाटा प्रोक्योर करते हैं और उस डाटा से सर्जन्स और बहुत सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको नई नई जानकारी मिल सकती है। तीसरी बहुत और एक अहम चीज़ ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जब हम बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर बनाना है तो उनको एक अच्छी ट्रेनिंग भी मिलना उतनी ही ज़रूरी है। तो इन बॉडीज़ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट जो सुपर स्पेशलिटीज़ है, जैसे कि सर्जरी है या फिर ENT के जो सर्जन्स होते हैं और आँखों के जो डॉक्टर्स होते हैं, इनको अगर सर्जरी का प्रयोग अगर किसी बॉडी पे करना है तो ये डिसेक्शन के तौर पे ये बॉडीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है। और सबसे अहम बात, आजकल हम ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग भी इन्हीं देहों पे की जाती है। इक्विपमेंट ट्रेनिंग भी हो सकती है, जैसे आपका नी ट्रांसप्लांट होना है, अगर नी ट्रांसप्लांट होना है तो एक आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस बनाया जाता है और फिर वो बॉडी में डाला जाता है। लेकिन ये प्रोस्थेसिस अगर बनाने हैं तो उसकी भी स्टडी पहले डॉट बॉडीज पे की जाती है, ताकि उसकी मेजरमेंट्स लेके फिर पढ़ाई हो सके कि प्रोस्थेसिस कौन से साइज के बनने हैं, ताकि आपके गुर्दे या फिर हड्डी में अगर कहीं लगने हैं। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से एक देहदान का यूज होता है।
1: ऐसी कौन सी बीमारी है या कारण है जिसके चलते देहदान नहीं हो सकता? कभी कभी हमने सुना है कि लोगों को अपना देहदान करना है, हमारा यहाँ पे भी एक केस था, लेकिन फिर एनाटॉमी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज ने उससे मना कर दिया।
0: इमोशंस लोगों के देहदान को लेके बहुत सी स्ट्रांग होते हैं, तो हम फैमिली को पहले ही बता देते हैं कि अगर बॉडी बहुत डीकम्पोज्ड है, यानी अगर घर पे बेड रिडन रहा है पेशेंट, तो उनको बेड सोर्स आते हैं। बेड सोर्स आते ही उनके जो नसें हैं वो दब जाती है और कुछ जगह पे ऑलरेडी थोड़ा सा डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी का, तो ये दवाई उस एरिया में पहुंच नहीं पाते। इसलिए इन कारणों की वजह से हम ये बॉडीज एक्सेप्ट नहीं किया कर पाते हैं। कैंसर है जो बहुत फैला हुआ है, तो फिर से दवाई उन जगहों पे नहीं जा पाती और बॉडी अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाती। थर्डली, जैसे मैंने आपको बोला, नेचुरल डेथ ही मैं सिर्फ सक्सेसफुल डोनेशन है। अगर अटॉप्सी हुई है बॉडी की तो एक बड़ा सा ना है। फिर से अगर अटॉप्सी में बॉडी को खोला जाता है मेडिको लीगल केसेस में, तो हम ये डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कोई भी ऐसी डिजीज़, जैसे बीच में एबोला आया था, जिसके बारे में बहुत नेचुरल ऐसे बहुत सारे डिजीजेस, बहुत इन्फेक्शस होते हैं जिनका हम ये नहीं जान पाते कि भाई दवाई छोड़ने के बाद ये डिजीज़ आगे जाके ना फैल पाए, तो हम यंग डॉक्टर्स को वो रिस्क नहीं देना चाहते। इसलिए ऐसी कुछ बीमारियां भी है या पॉइजनिंग भी है किसी बॉडी में जिसको हम स्टडी नहीं कर पाए, तो ऐसे हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
1: थैंक यू डॉक्टर जोशी। तो ये बात तो सामने आ गई है कि देहदान एक पूरे परिवार का फैसला होता है। आपके विभाग में ऐसा कोई देहदान हुआ है जो सबके लिए मिसाल बन सकता है?
0: हमारे विभाग में वैसे अलग अलग परिजन, उनकी फैमिलीज आती है और डोनर्स आते हैं। सब में एक अलग बात होती है कि उनमें जो मोटिवेशन होता है या फिर उनमें जो इच्छा शक्ति होती है वो उस लेवल की होती है कि वो बहुत सालों से इस डिसीजन के लिए यस होते हैं, उनकी फैमिली यस होती है। खास तौर से मैं इस फैमिली के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर लेट निरंजन मित्रा जी जो हमारे डोनर रह चुके हैं वो खुद भी एक डॉक्टर थे। इनकी जो इच्छा शक्ति या इनके परिजनों की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही सबको प्रेरणा दे सकती है, क्योंकि इनकी वाइफ जो थी शिबानी मित्रा जी वो एक खुद स्कूल टीचर भी रह चुकी थी। इन्होंने हमारे विभाग को पहले अपना देहदान दिया, उसके बाद उनके हस्बैंड दैट इज़ लेट निरंजन मित्रा जी, उनकी स्टोरी भी आर्मी में डॉक्टर होने के बावजूद उनमें जो देने की भावना थी वो बहुत ही तीव्र इच्छा शक्ति थी। और इसको ऑनर करते हुए उनका बेटा जब हमारे प्रियदर्शनी मित्रा जी जब हमारे पास आए, तो उनमें भी उसी लेवल का हमने इच्छा शक्ति या फिर मोटिवेशन देखा। इसलिए ये सारे एक ही फैमिली से होने वाले डोनेशंस हमारे लिए एक ट्रेडिशन जैसा हमें उनके फैमिली में लगा कि देहदान करना ये हमारे ट्रेडिशन में है। तो ऐसे लोग जब सोचते हैं तो हमें भी बहुत एक प्रेरणा मिलती है कि ये हमारे बीच है, ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही इच्छा शक्ति है कि कुछ हम दें, और चाहे फिर वो देह क्यों ना हो। तो ये ही मैं सबको बताना चाहूँगी कि देहदान एक देने का जो भाव है वो बहुत ही अलग है, और इसे हमने सब ने बहुत अच्छी तरीके से रिकग्नाइज भी करना है। और मैं उनका उस परिवार का खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगी।
1: थैंक यू डॉक्टर जोशी, आप अपनी इतनी सारी जानकारी दी हमें देहदान के बारे में। और अगर कोई देहदान करना चाहता है तो आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट पे जाके बॉडी डोनेशन डायरेक्टरी में देखें कि आपके आसपास के कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जहां पे आप देहदान कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना चाहिए सबको कि ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंग दान और देहदान के फॉर्म अलग अलग हैं, और अगर आप ऑर्गन डोनेशन करेंगे या आपके अंग दान हो जाते हैं तो उसके बाद आप देहदान नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू सुनैना। जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंगदान एक बेहद खूबसूरत विरासत है जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या आप हमें हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9650952810, या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो है 0114183-8382। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा जिसे आप सबको दिखाइए और दूसरों को प्रेरित भी करिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होने की आशा करती हूँ। हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। www.organindia.org पर जाकर अपना फॉर्म भरें और अपना ऑर्गन डोनर कार्ड प्राप्त करें। अंगदान, जीवन दान।

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna, 107.8 FM.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आप ही अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम लेकर आते हैं कुछ लोगों की ऐसी कहानियाँ जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करती हैं बल्कि अपनी कहानियों से आपको इंस्पायर करती है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं. ये कहानियाँ उन लोगों की होती है जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से और हौसले के दम पर दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है. इनकी जिंदगी के अनुभव और सीख हमें ये बताते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि लगातार मेहनत और सही सोच से मिलती है. हर इंसान अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है और कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है. लेकिन सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता. इस रास्ते में आपको मुश्किलें भी मिलेंगी, इस रास्ते में आपको असफलता भी मिलेंगी, और कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम इस लक्ष्य के लिए बने ही नहीं है, हम इस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे. ऐसे समय में हमें ज़रूरत होती है उन लोगों की कहानियों की, उनकी प्रेरणा लेने की जिन्होंने हर चुनौतियों का सामना करके अपनी मंजिल को हासिल किया है. और आज के एपिसोड में जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो भी एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने ना सिर्फ भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया बल्कि ये भी साबित किया कि अगर आपके इरादे मजबूत होना तो सपना पूरा किया जा सकता है. हम बात कर रहे हैं इंदिरा नोई की. जी हाँ, जो दुनिया की सबसे सफल बिजनेस लीडर में से एक मानी जाती है. एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक पेप्सिको की सीईओ बनना कोई आम बात नहीं होती. इस सफर में संघर्ष था, कठिन फैसले थे, नए देश में खुद को साबित करने की चुनौती थी और हर कदम पर कुछ नया सीखने का जज्बा था. लेकिन इंदिरा नोई ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बल पर एक मिसाल बन गई. आज के इस पूरे एपिसोड में हम उनकी बारे में जानने वाले हैं, उनके सक्सेस मंत्रा को जानेंगे, उनके लीडरशिप क्वालिटी को जानेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे. लेकिन ये स्टोरी से आप क्या सीख लेंगे ये बहुत जरूरी है. आपको ना मैं अगर ये स्टोरी लेकर आती हूँ आपके लिए तो इसका मतलब ये है कि आप इससे मोटिवेट होने चाहिए, आपके मन में ये जुनून आना चाहिए, ये सपना होना चाहिए कि अगर इस इंसान ने कुछ कर लिया तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ. तो बस इसीलिए हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं ताकि आप भी इससे मोटिवेट होते रहें. और अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.
2: हजारों हसीनों का महबूब हूँ,

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं सक्सेस मंत्रा में ऐसी दुनिया की, ऐसी कहानी की जो सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स में से एक है, यानी कि एक ऐसी महिला जिन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में बताया कि सिर्फ मेल्स के लिए ये बिजनेस नहीं होता बल्कि फीमेल्स भी किसी से कम नहीं है। और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है इंदिरा नोई की। जी हाँ, इंदिरा नोई की आज हम जर्नी के साथ चल रहे हैं। दोस्तों, किसी भी सफल इंसान की कहानी को समझने के लिए हमें उसके बचपन और शुरुआती जीवन को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही समय होता है जब हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारे अपने तैयार होते हैं। इंदिरा नोई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इंदिरा नोई का जन्म चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही सादगी और अनुशासन के माहौल में बीता। उनके घर में पढ़ाई को बहुत महत्वता दी गई थी। बचपन से ही उन्हें और उनकी बहन को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाता था, यानी कि कॉन्फिडेंस घर से ही मिल रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प बात तो ये है कि उनकी माँ अक्सर उन्हें कहती थी कि सोचो, तुम देश की प्रधानमंत्री हो या किसी बड़ी कंपनी की लीडर हो। फिर उनसे पूछा जाता था कि तुम क्या फैसले लोगी, कैसे देश या फिर कंपनी को आगे बढ़ाओगी। शायद उस वक्त ये सिर्फ एक खेल लगता होगा, लेकिन इसी ने इंदिरा नोई के अंदर लीडरशिप और बड़े सपने सोचने की आदत पैदा कर दी। स्कूल के दिनों में भी वो पढ़ाई के साथ साथ कई एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थी। उन्हें म्यूजिक पसंद था और वो क्रिकेट भी खेलती थी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नहीं आता है, बल्कि हर तरह के अनुभव से हमारी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाते हैं। और इंदिरा नोई का बचपन हमें ये बताता है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हम एक आम परिवार से आते हैं, इसलिए बड़े सपने देखना मुश्किल लगता है। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से ही होती है। और आज के इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा है, हमेशा बड़े सपने देखिए। सपने वही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज जिस जर्नी के साथ हम चल रहे हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने ये बताया कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, जिनके आज हम बात कर रहे हैं, उनका नाम है इंदिरा नोई। उनकी प्रेरणादायक कहानी आज हम सुन रहे हैं। पिछले सेगमेंट पे हमने उनके बचपन और उनके सपनों के बारे में बात की, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई और संघर्ष की, जिसने उन्हें सफलता के रास्ते पर मजबूत बनाया है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदिरा नोई ने चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती थी। उनका मानना था कि सिर्फ डिग्री लेना ही काफी नहीं होता है, बल्कि कि हर दिन खुद को बेहतर बनाना भी जरूरी है। कॉलेज के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता यानी कि IIM कलकत्ता में एडमिशन लिया। आज भी IIM को देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में से एक गिना जाता है। वहां तक पहुंचना और फिर अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन इंदिरा नोई ने मेहनत और लगन के साथ हर चुनौती का सामना किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उनका सीखने का सफर नहीं रुका। उन्होंने फैसला

किया कि वो अमेरिका जाकर हायर स्टडीज करेंगी। ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत से भरा हुआ कदम था। एक नए देश में जाना, नई संस्कृति को समझना और अपनी पहचान बनाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंदिरा नोई ने इस चैलेंज को एक मौके की तरह देखा। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि नया देश, नया भेष, वहाँ की तौर तरीकों को सीखना बहुत अलग होता है। कभी पैसों की दिक्कत तो कभी नए माहौल में खुद को एडजस्ट करने की चुनौती, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई, उनका ध्यान हमेशा अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर रहा। और बस यहीं से हमें एक और बहुत बड़ी सीख मिलती है। कई लोग पढ़ाई खत्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन जो लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दुनिया हर दिन बदल रही है और नए अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो खुद को नए ज्ञान के साथ अपडेट करता रहता है। आज के इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है, सीखना कभी मत छोड़िए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपको मौके अपने पास बुलाएंगे। तो वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक दोस्तों,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं इंदिरा नोई की इंस्पायरिंग जर्नी की। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे उन्होंने पढ़ाई के हर मौके का पूरा फायदा उठाया और लगातार सीखने की कोशिश को अपनी आदत बना लिया। अब बात करते हैं उनके करियर की शुरुआती दिनों की और उन चुनौतियों की जिन्होंने उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदिरा नोई ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने अलग अलग कंपनीज के साथ काम किया और बिजनेस की दुनिया को करीब से समझा। हर नई जॉब के साथ नए अनुभव मिले और हर अनुभव ने उन्हें कुछ नया सिखाया। जब वो अमेरिका पहुंची और वहां काम करना शुरू किया तब उनके सामने कई चैलेंजेस थे, जैसे कि नया देश, नए लोग, नया वर्क कल्चर और सबसे बड़ी बात खुद को साबित करने की जिम्मेदारी। लेकिन इंदिरा नोई ने कभी भी इन मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हर चैलेंज को एक नए लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखा है। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें इंटरव्यू के लिए तैयारी करते वक्त कई प्रैक्टिकल समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका फोकस हमेशा एक ही गोल पर रहा है। वो जानती थी कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन लगातार मेहनत करने वाले लोग अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। इंदिरा नोई की एक खास बात ये भी थी कि वो सिर्फ अपना काम करने पर ही ध्यान नहीं देती थी, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करती थी कि कंपनी और लोगों की जरूरत क्या है। और बस इसी सोच ने उन्हें एक बेहतर प्रोफेशनल और आगे चलकर एक बेहतरीन लीडर भी बनाया। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें सबके सामने आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन मुश्किलों को देखकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। इंदिरा नोई भी उसी दूसरी कैटेगरी में आती है। उन्होंने हर चैलेंज को एक नए मौके में बदल दिया। आज का इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा है कि हर चैलेंज को अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। मुश्किलें आपको रोकने नहीं बल्कि आपको और ज्यादा मजबूत बनाने आती हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज सक्सेस होने की। जी हां, बात तो हम हर हफ्ते ही करते हैं सक्सेस होने की। लेकर आ जाती हूं आपके लिए कुछ खास इंटरेस्टिंग जर्नी, जो आपको सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करती है अपनी जर्नी से, बल्कि आपको मोटिवेट भी करती है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, हर कोई कुछ भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि हमारे पास कुछ होगा तभी हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो लोगों को अगर कुछ करना होता है ना, तो वो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हासिल कर लेते हैं। और आज इस जर्नी में हम चल रहे हैं इंदिरा नोई के साथ, उनकी जर्नी को समझ रहे हैं जिसने उन्हें दुनिया की सबसे सफल बिजनेस लीडर में शामिल कर दिया। पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि कैसे उन्होंने हर चैलेंजेस का सामना किया हिम्मत के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ। अब बात करते हैं उनके करियर के सबसे महत्वपूर्ण पल की, यानी कि पेप्सिको तक का सफर, उसकी बात अब हम करेंगे। इंदिरा नोई ने अपने करियर में कई बड़ी कंपनीज के साथ काम किया और हर जगह अपनी सोच और लीडरशिप से लोगों को प्रभावित किया। साल था 1994 में उन्होंने पेप्सिको को ज्वाइन किया। ये वही कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स दुनिया के लगभग हर कोने में मिलते हैं। इतनी बड़ी कंपनी में अपनी पहचान बनाना आसान तो नहीं था, लेकिन इंदिरा नोई ने अपनी मेहनत और अपने विजन से सबका दिल जीत लिया। पेप्सिको में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी दूर की सोच। वो सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचती थी, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचती थी। उन्होंने कंपनी को ऐसे फैसले लेने में मदद की जो लंबे समय तक फायदेमंद साबित हो। उनका मानना था कि एक कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि लोगों और समाज के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। धीरे धीरे उनकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल की चर्चा पूरी कंपनी में होने लगी। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स और बिजनेस डिसीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि वो साल 2006 में पेप्सिको की CEO बनी। जी हाँ, ये उपलब्धि सिर्फ उनकी नहीं थी बल्कि उन सब लोगों के लिए एक प्रेरणा थी जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। CEO बनना किसी कुर्सी पर बैठ जाना नहीं होता, बल्कि इसके साथ आती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़े फैसले और लाखों लोगों की उम्मीदें। इंदिरा नोई ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने कंपनी को नए विचारों, नए लक्ष्यों और बेहतर दिशा की तरफ ले जाने का काम किया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि ये छोटे छोटे से कदमों, लगातार मेहनत करने से और फैसलों से परिणाम मिलता है इसका। और आज के इस खास सेगमेंट में हमने बात करी जब उनके पेप्सिको के सफर की, तो वो हमें ये सक्सेस मंत्रा देता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं सक्सेस मंत्रा में इंदिरा नोई की प्रेरणादायक जर्नी की। अब तक हमने उनके बचपन की बात करी, उनकी पढ़ाई की बात करी, उनके पेप्सिको के सफर तक की बात करी कि वो कैसे पेप्सिको के CEO बनने तक का उन्होंने सफर कैसे तय किया। लेकिन किसी भी सफल व्यक्ति की असली पहचान सिर्फ उसकी पोजीशन से ही नहीं होती है बल्कि उसकी सोच और लीडरशिप से भी होती है। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इंदिरा नोई की कुछ खास लाइफ लेसन और लीडरशिप प्रिंसिपल्स के बारे में। इंदिरा नोई का मानना था कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम की बात सुनता है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देता है। वो हमेशा कहती थी कि किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, इसलिए वो अपनी टीम के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनने पर विश्वास करती थी। उनकी लीडरशिप का एक और खास पहलू था, वो था विनम्रता, सॉफ्टनेस। इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो अक्सर अपने परिवार, टीचर और उन सभी लोगों का जिक्र करती थी जिन्होंने इस सफर में उनका साथ दिया था। ये हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंच जाएं, अपनी वैल्यूज और अपने लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही थे जिन्होंने हमारे कुछ ना होने पर भी हमारा साथ दिया था। इंदिरा नोई वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी खुलकर बात करती थी। उनका कहना था कि प्रोफेशनल सक्सेस जरूरी है, लेकिन परिवार और रिश्तों की अहमियत भी उतनी ही जरूरी है। जिंदगी तभी सुंदर बनती है जब हम करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में एक अच्छा संतुलन बना पाएंगे। एक और बात जो उन्हें खास बनाती है वो है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। मुश्किल समय में भी वो समस्या पर नहीं बल्कि उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देती हैं। उनका मानना था कि सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और बस इसी सोच ने उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखा। दोस्तों, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर सफलता के पीछे इतना भागते हैं कि अपनी वैल्यूज और रिश्तों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। इंदिरा नोई की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सफलता वही है जहां पर उपलब्धि के साथ इंसानियत भी हो। सफलता तभी मायने रखती है जब उसके साथ विनम्रता, ईमानदारी और अपनों का साथ भी हो। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हमने सक्सेस मंत्रा में जाना एक ऐसी दुनिया को, एक ऐसी लीडर को जिन्होंने बताया कि अपनी सॉफ्टनेस के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ लोगों को साथ लेकर कैसे चलते हैं। एक ऐसी जर्नी जिसके पास सिर्फ सपने थे पर उसको पूरा करने में जो मेहनत लगी वो इस जर्नी में हमने जाना। आज हमने बात की बिजनेस लीडर में से एक जानी पहचानी, दुनिया की सबसे प्रेरणादायक बिजनेस लीडर में से एक इंदिरा नोई की कहानी, बचपन के सपनों से लेकर उनके पेप्सिको के सीईओ बनने तक के सफर को। हमें ये सिखाता है कि मेहनत, लगन और सही सोच के साथ कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आज के इस आखिरी सेगमेंट में आइए एक बार फिर से उनकी कहानी से मिलने वाले कुछ सबसे बड़े सक्सेस मंत्रा को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सक्सेस मंत्रा, सपने बड़े देखिए। जी हाँ, इंदिरा नोई एक साधारण परिवार से ही थी लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। अगर हम सपने ही छोटे रखेंगे तो हमारी मंजिल भी छोटी ही रह जाएगी, इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। और दूसरा सक्सेस मंत्रा है, सीखना कभी मत छोड़िए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लगातार कुछ न कुछ नया सीखा है। दुनिया बदल रही है और जो लोग सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नॉलेज आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा सक्सेस मंत्रा है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे सालों की मेहनत और समर्पण छुपा होता है। इंदिरा नोई की जर्नी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चौथा सक्सेस मंत्रा है, चैलेंजेस से मत डरिए। नए देश, नया माहौल और बड़ी जिम्मेदारियां, उनके सामने कई मुश्किलें आई लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर चैलेंजेस को उन्होंने एक नए मौके में बदल दिया। पांचवा सक्सेस मंत्रा है, अपनी वैल्यूज को कभी मत छोड़िए। चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, विनम्रता, ईमानदारी और अपने रिश्तों की कदर हमेशा बनाए रखिए। यही चीजें आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा लीडर बनाती है। दोस्तों, इंदिरा नोई की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की दुनिया की कहानी नहीं है, ये हौसले, मेहनत और सपनों को सच करके दिखाने की एक कहानी है। उनका जीवन हमें बताता है कि सफलता किसी खास बैकग्राउंड या फिर परिस्थिति का मोहताज नहीं होता, बल्कि इरादे अगर आपके मजबूत हो और मेहनत अगर आपकी सच्ची हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। फिर से मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी के साथ एक और नए सक्सेस मंत्रा के एपिसोड में। तब तक के लिए याद रखिएगा, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और कभी रुकना मत सीखिए। और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें आपको हर शनिवार ना कहीं घूमने के लिए लेकर के जाती हूँ। और आज भी आपको बड़ी खूबसूरत जगह लेकर के जा रही हूँ, हवाओं में घुली देवदार की खुशबू और बर्फ की ठंडक। कुछ ऐसी ही हसीन जन्नत का नाम है जिस जगह हम जा रहे हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि है पत्नीटॉप। आज के इस प्रोग्राम में ना मैं आपको पत्नीटॉप के बारे में बताने वाली हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर हनीमून और साथ ही टूरिस्ट प्लेस है, बहुत कमाल की जगह है। अगर आप भी यहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ये प्रोग्राम में तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें इस जगह के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड Feel nice.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ और आज का हमारा जो सफर है मैं आपको लेकर के जा रही हूँ जम्मू और कश्मीर के ऊंचे और हसीन शिवालिक पहाड़ियों की तरफ। आज हम घूमेंगे पत्नीटॉप। इमेजिन कीजिए आप एक ऊंचे प्लेट्यू पर खड़े हैं और आपके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पुराने देवदार और पाइन के कुछ पेड़ हैं। हवा में एक अजीब सी एक बहुत ही कमाल एक सुकून दे ठंडक है, ठहराव है और बादल इतने पास हैं कि लगता है कि आप उन्हें हाथ से पकड़ सकते हैं। मैं देखिए जब पहली बार पत्नी टॉप गई वहाँ कदम रखा तो जम्मू श्रीनगर हाईवे से ऊपर आते ही धूप और जो धुंध का जो खेल है ना वो दिखा और उसने भाई मतलब माहौल जैसे ना खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। बहुत अच्छा लगा। जम्मू का शोर यहाँ आकर एकदम से शांत हो जाता है और आज के इस प्रोग्राम में ना मैं आपको पत्नी टॉप की उन ठंडी

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें इतिहास के पन्नों में, जहाँ राजकुमारियों के किस्से दफन हो वहाँ की मिट्टी में एक अलग ही नज़ाकत होती है। पत्नी टॉप का नाम बड़ा ही अलग है और इंटरेस्टिंग है। इसका नाम अगर देखिए, पत्नी टॉप जो है इसके पीछे एक सदियों पुरानी कहानी छुपी हुई है। कहते हैं कि इस जगह का असली नाम था पठान द तालाब, जिसका मतलब होता है द पॉन्ट ऑफ द प्रिंसेस। पुराने जमाने में यहाँ पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही सुंदर साफ पानी का तालाब हुआ करता था, और जहाँ राजकुमारियाँ यानी कि जो प्रिंसेस होती थी वो सुबह सुबह स्नान यानी कि नहाने के लिए जो है वो आया करती थी। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उनके एक्सेंट की वजह से ये जो पतंदर तालाब है वो धीरे धीरे इसका जो नाम है वो बदल गया और हो गया पत्नी टॉप। भले ही आज वो पुराना पॉन्ड वहाँ नहीं है, पर जब आप यहाँ के मेडोज में चलते हैं तो आपको एक रॉयल और शांत वाइब ज़रूर महसूस होती है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि जगह हमेशा से ही सुकून दे और खूबसूरत रही है, वो सेंटर है और बहुत ही कमाल है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और हर शनिवार आपको कहीं घूमने के लिए लेकर के जाती हूँ। आज जिस जगह आपको घूमने के लिए लेकर के आई हूँ वो जगह और कोई नहीं बल्कि है पत्नीटॉप। पत्नीटॉप का इतिहास और इसकी रूह यहाँ के एक बहुत ही पुराने और पवित्र मंदिर में बसती है, जिसे कहते हैं नाग टेम्पल। ये मंदिर लगभग 600 साल पुराना है और ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। नाग पंचमी के मौके पर यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं। जब आप इस मंदिर के पास पहुँचते हैं तो चारों तरफ घने देवदार के पेड़ आपको दिखाई दे जाएंगे और माहौल एकदम स्पिरिचुअल होता है। जब आप यहाँ जाएंगे तो मंदिर की पुरानी दीवारों को जब आप देखेंगे तो हैरानी इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि लकड़ी का ये जो ढांचा है सदियों से बर्फ और बारिश को झेल रहा है और तब भी वैसे ही खड़ा है। यहाँ बैठकर जब आप मंदिर की घंटियों की आवाज और हवा के शोर को एक साथ सुनते हैं तो आपका दिमाग एकदम शांत हो जाता है, और यही खास बात है इस जगह की। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी करती हूँ बातें। आज ये प्रोग्राम देखिए, इसमें एक बहुत ही खास जगह आपको लेकर के आई हूँ। ये जगह है जम्मू की बहुत ही खूबसूरत सी पत्नी टॉप। खाई के एज पर खड़े होकर जब हवा आपसे टकराती है तो लगता है कि आप बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। पत्नी टॉप से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर स्थित है नाथा टॉप। अगर आपको बर्फ देखनी है या पैराग्लाइडिंग करने का आप शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत है, क्योंकि जब आप नाथ टॉप पर खड़े होंगे तो आपके सामने हिमालय की बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं वो साफ दिखाई देती हैं वहां से, और उन पीक्स पर जमी हुई बर्फ, सफ़ेद बर्फ, जब उन पर धूप पड़ती है तो ऐसे वो चमकती है जैसे चांदी पिघल रही हो। जब आप वहाँ जाएंगे सुबह सुबह का वक्त, आप वहाँ पर जाइए और जब आप वहाँ पर चलते हुए टाइम बताते हैं तो जब हवा इतनी तेज़ आपको लगेगी वहाँ पर कि आपको मानो ऐसा लगेगा जैसे बादलों के साथ आप उड़ ही जाएंगे और वहाँ छोटे छोटे जो लोकल वेंडर्स हैं वहाँ आपको बैठे मिल जाएंगे जो आपको गरम गरम कश्मीरी कहवा बेचते नजर आएंगे। ठंडी हवा में उस ऊंचाई पर बैठकर गरम कहवा पीना, बस लगता है जैसे जिंदगी का असली सुकून वहीं मिल गया हो। तो ये खासियत है पत्नी टॉप की, ये खासियत है उस जगह की, ये खासियत है उन हवाओं की। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइफ।
1: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चले। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज इस प्रोग्राम में आपको लेकर के आई हूँ पत्नी टॉप। अब थोड़ा मॉडर्न एडवेंचर की तरफ चलते हैं और स्काई व्यू पत्नी टॉप का अगर बात करें तो ये इंडिया के सबसे ऊंचे रोपवेज में से एक है और यहाँ पर जो सैंग्रेट वैली है ये यहाँ से शुरू होकर जब ये केबल कार ऊपर पत्नी टॉप की तरफ बढ़ती है तो नीचे पूरी घाटी छोटे छोटे पहाड़ी घर और देखिए जो घने जंगल हैं वो आपको दिखाई देंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे टॉयलैंड है। जब आप यहाँ रोपवे में सफ़र आप करेंगे तो मतलब जैसे बादल हमारे बिल्कुल खिड़की के पास आ गए हैं, वहाँ से गुजरते हैं और इस रोपवे के अलावा ज़िगज़ैग ज़िपलाइन और यहाँ पर जो है जो स्लेज है टपिंग जो स्लेज है वो और भी बहुत सारी ऐसी कूल एक्टिविटीज़ भी आपको मिल जाएंगी। ये पत्नी टॉप का वो फेस है जहाँ आपको कुदरत के साथ साथ एक टॉप क्लास एंटरटेनमेंट और थ्रिल मिलता है जो कि बड़ा मज़ेदार रहता है। आप अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो भाई वहीं पर मतलब अगर पत्नी टॉप की हम बात करें तो अब खान पीन की बात करेंगे तो यहाँ पर ना दो बहुत ही टेस्टी चीज़ें हैं जो मिलती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगी कि खाने में क्या है। आप कहीं घूमने आए हैं तो भाई खाना तो खाएंगे ही ना, तो चलिए अभी उसके बारे में बताऊंगी लेकिन फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। आज देखिए बातें हमारी चल रही हैं, और आपको बड़ी खूबसूरत जगह लेकर के आई हूँ। जगह का नाम है पत्नीटॉप। अब आए हैं तो कुछ खाएंगे भी। देखिए स्वाद वही है जो पेट भरे, पर मिठास वही जो हर बाइट में जम्मू के लोगों का प्यार दिखाते। तो थोड़ी पेट पूजा की बात कर ली जाए तो पटनी टॉप का जो देखिए फूड सेंस है ना, मतलब एकदम लाजवाब है, क्योंकि इसमें जम्मू का ऑथेंटिक लोकल स्वाद छुपा है। यहाँ की फेमस और यूनिक चीज़ें, यानी कि जो कलाड़ी कुलचा है, और कलाड़ी कुलचा ये एक तरीके का लोकल डेंस चीज होता है जो सिर्फ जम्मू रीजन में ही बनता है। इसे तवा पर, देखिए तवे पर हल्का सा मक्खन लगाकर इसको जो है वो सॉटे किया जाता है, और फिर कुलचे के बीच में इसे रखा जाता है और तीखी चटनी के साथ परोसा जाता है। जब आप इसे पहली बार खाएंगे, गरम गरम कलाड़ी कुलचा जब आप खाएंगे, तो उसका जो मोज़रेला जैसा, मतलब वो जो चीज़ है ना, वो जब स्ट्रेच होता है टैंगी टेस्ट के साथ, आपको दीवाना बना देगा। और जब दोपहर के खाने में आप पीरा के राजमा चावल के साथ, देखिए इसको जब आप खाएंगे, जब आप राजमा चावल खाएंगे यहाँ के, तो बहुत ही टेस्टी होता है। और उधमपुर के पास आपको पीरा के राजमा चावल जो है, राजमा जो पूरे जम्मू कश्मीर में फेमस है, वो आपको मिल जाएंगे। ये खाना बहुत ही सिंपल है, पर इसमें जो गर्माहट है वो आपको हमेशा याद रहेगी। यहाँ पर एक और दाल मिलती है और इसका नाम है राजमाइश चावल। मतलब ये जैसे राजमा चावल होते हैं, ऐसे राजमाइश, तो मतलब दाल और जो राजमा है उसका मिक्स होता है। जब आप यहाँ जाएंगे तो ये भी मिलेगा। यहाँ पर कढ़ी चावल भी बहुत अच्छे मिलते हैं, थोड़ी सी थिक कढ़ी होती है तो वो भी आपको मिलती है यहाँ पर। और इसके साथ बहुत सारा, मतलब खाना, अलग अलग जो डिशेज हैं आपको मिलती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो आपको थाई फूड है वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। आजकल कैफेज हो गए तो उस वजह से आपको मिल सकता है, लेकिन जो ऑथेंटिक अगर लोकल फूड की बात करें तो उसमें आपको ये ऑथेंटिक खाना मिलेगा, जो लोकल फूड है वहाँ पर राजमा, आइश, दाल, ये सब चीज़ें मिलती हैं। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेस्ट्रॉन 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती है बातें, और अब ना मैं आपके लिए भाई खाने की हमने बात करी, और खाना खाने के बाद अगर मीठा ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, मीठे के बिना ना हर दावत अधूरी है, और पत्नी टॉप का सफर तो वैसे ही अधूरा है। तो पत्नी टॉप से लगभग 10 किलोमीटर पहले एक छोटा सा टाउन पड़ता है, एक छोटा सा गांव है जिसे कहते हैं कुद। और कुड के ये जो जगह है पूरे जम्मू रीजन में अपनी मिठास के लिए ये जाना जाता है। यहाँ का प्रेम पतीसा इतना फेमस है कि लोग जब भी इस हाईवे से गुजरते हैं तो गाड़ी रोककर पतीसा ज़रूर खरीदते हैं। ये हमारे सोन पापड़ी जैसा होता है, पर एकदम शुद्ध देसी घी से बनता है, और मुंह में जैसे आप इसे डालेंगे तो ये घुल जाएगा, पिघल जाएगा। जब आप वहाँ पर जाएंगे, गरम गरम पतीसा अगर आपने खाया, और इसके साथ मतलब ना लोग वहाँ पर चाय पीते हैं। तो कुड़ का जो मार्केट है वो छोटा है, पर हवा में हमेशा मीठी खुशबू घुली रहती है। तो ये तो हो गए भाई यहाँ के प्रेम पतीसे की बात। हम आगे और भी बहुत सारी करेंगे बातें, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको ना एक और हिडन और हिस्टोरिक स्पॉट पर लेके चलती हूँ। पत्नीटॉप आज हम आए हैं। अब बात करेंगे बिल्लू की पौड़ी की। जो यहाँ पौड़ी का मतलब होता है यहाँ के सीढ़ियाँ, और ये लगभग 400 जो पत्थर हैं, स्टेप्स हैं, जिनको पहाड़ को उनको काट कर बनाया गया है। और कहते हैं कि यहाँ पर चनानी के राजा ने इस रास्ते को बनवाया था ताकि शहर तक एक छोटे शॉर्टकट रास्ता जो है वहाँ तक बन सके। और इस रास्ते में घने जंगल हैं और चलते वक्त जो शांति मिलती है वो लाजवाब है। जब आप यहाँ जाएंगे तो पुरानी सीढ़ियों पर चलना शुरू कीजिए तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सीढ़ियाँ पहले भी लोगों ने इसी रास्ते का इस्तेमाल, जो पहले के लोग हैं उन्होंने किया होगा। और ये जो जगह है ना, मतलब एक परफेक्ट स्पॉट है ट्रैकिंग जिनको पसंद है उनके लिए, जिनको हिस्ट्री से जुड़ना पसंद है, छोटे देखिए आपको पसंद है कि यार छोटी छोटी जगह को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो ये जगह उनके लिए बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है। और इनफैक्ट पत्नी टॉप से लगभग 20 किलोमीटर दूर एकदम शांत और हसीन जगह एक और है जिसे कहते हैं सनासर लेक। और सनासर लेक इसका नाम दो छोटे गांव साना और सर के से मिलकर जो है वो बना है। ये एक छोटे से लेक है जिसे चारों तरफ बहुत बड़ा हरा भरा मैदान है और इसे मिनी गुलमर्ग भी कहा जाता है। यहाँ भीड़ बहुत कम होती है और जब आप यहाँ जाएंगे घास पर बैठे घंटों बादलों को जब आप देखेंगे तो टाइम कहाँ निकल जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। जोर बैंक का जो है इसे आप कर सकते हैं और हॉर्स राइडिंग हो गई, और साथ ही साथ यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, रात में आप तारे देख सकते हैं, बस अलग ही सुकून आपको मिलेगा। तो पटनी टॉप से लगभग जो है 20 किलोमीटर दूरी पे ये मिल जाएगा आपको और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेके आती हूँ हर शनिवार। बहुत सारी होती हैं बातें। देखिए, पत्नी टॉप के पास एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल सर्कल भी है। थोड़ा दूर निकलते ही यहाँ पड़ता है शुद्ध महादेव मंदिर। जी हाँ, ये जो मंदिर है, कहते हैं ये मंदिर लगभग 2800 साल पुराना है और यहाँ शिव जी का एक पुराना त्रिशूल रखा हुआ है जो तीन हिस्सों में टूट चुका है। और इससे थोड़ा सा और आगे है यहाँ पर मंतलाई, जिसे माता पार्वती का जन्म स्थान स्थल भी जो है ये माना जाता है। और कहते हैं शिव जी और माता पार्वती की शादी इसी जगह पर हुई थी। और यहाँ एक बड़ा सा तालाब है और चारों तरफ पाइन के जंगल हैं। और ये जो जगह है ये आपको एहसास कराती है कि जम्मू और कश्मीर की मिट्टी में कितनी गहराई है, इतना आस्था है, इतिहास छुपा हुआ है। इसी के साथ साथ पत्नी टॉप आए और कुछ घर पे ना लेके जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए, यादें सिर्फ दिमाग में ही नहीं, कभी कभी वो एक मीठी किशमिश या गरम शॉल में भी बसी होती है। पत्नी टॉप से जाने से पहले शॉपिंग तो बनती है। यहाँ के लोकल मार्केट्स छोटे हैं पर बड़ा ही यहाँ पर कलरफुल सामान आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको सबसे फेमस चीज मिलेगी और वो है कश्मीरी पश्मीना शॉल। हैंड वुमन कारपेट्स आपको मिल जाएंगे और बेहतरीन क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट और किशमिश मिल जाएंगी। जब आप यहाँ जाएंगे, अखरोट की आपको जो है छोटे छोटे वुडन बॉक्सेस भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। इसको ज़रूर खरीदिएगा। बारीक कश्मीरी जो है कढ़ाई की हुई शॉल्स आप ले सकते हैं। और यहाँ का जो केसर है वो ज़रूर से ज़रूर खरीदिएगा। ये मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी क्योंकि मैं भी लेके आई थी यहाँ की शॉल। यहाँ के केसर बहुत कमाल है। और जब आप भाई खीर बनाएंगे ना या कहवा बनाएंगे तो उसमें ज़रूर डालिएगा, तो आपको बस याद आ जाएंगे वो पल जब आप कश्मीर या जब आप जम्मू गए, जब आप पत्नी टॉप गए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मारा रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे इजाज़त लेने का या आपको बताने का कि देखिए आज हमने बहुत ही कमाल बहुत ही सुकून दही जगह जो है वो घूमी है। हम गए हैं पत्नीटॉप। ये जगह जो है भाई ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, मतलब जब नई नई शादी होती है ना तो वो क्या कहते हैं पहले हम वैष्णो देवी चलेंगे और उसके बाद सीधा यहाँ से चलेंगे पत्नीटॉप और पूरा ये जो है सर्कल बनाते हुए फिर वो वापस अपने घर चले जाएंगे। ज़्यादातर लोग इस तरह से जो कपल्स हैं वो आते हैं कि पहले दर्शन करेंगे माँ वैष्णो देवी के और उसके पास थोड़ी ही दूर यानी कि 100-150 किलोमीटर दूर है पत्नीटॉप और वहाँ पर घूम फिर के उसके बाद अब जाएंगे। तो एक बहुत ही सुकूनदेह एहसास रहता है और साथ ही स्पिरिचुअल जगह भी है, यहाँ पर मंदिर भी हैं काफ़ी सारे, आप घूम सकते हैं। अगर आप इस देखिए हम बात करें उस रोड की, अगर हम बात करें जो कि आपको पत्नीटॉप तक पहुंचाता है तो उसमें नौ देवी मंदिर, बाबा धनसर और कई सारी ऐसे वाटरफॉल्स भी हैं छोटे छोटे जो कि आपको इस रास्ते पर मिल जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और आप देखिए आप उस ट्रेन से भी जा सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वैसे आप ट्रेन से जाएंगे तो उसके बाद आपको कैब या बस आपको करनी पड़ेगी। काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं, अगर आपको जो है थोड़ा सा रहता है थोड़ा से आपको चक्कर आते हैं तो आप अपने साथ कुछ ऐसी जो माउंटेन सिकनेस की दवाइयां हैं वो ले सकते हैं, थोड़ा सा आप चक्कर की दवाइयां रख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि रास्ते को धीरे धीरे करके इन्जॉय करते हुए जाएंगे ना तो रास्ता कैसे कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और जब आप अपने फेवरेट के साथ हैं, जब आप अपने कुछ ऐसे खास दोस्तों के साथ हैं या अपने फैमिली के साथ हैं तो रास्ता कैसे कट जाता है ना पता ही नहीं चलता है। चलिए इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। मुलाकात आपसे होती रहेगी तो आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ जो है इसको खुल के जी और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

रेडियो मानव रचना 107.8 ऑफ एम्पर, मैं हूँ प्रांका और लेकर के आ चुकी हूँ प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में, जहाँ मैं आप लोगों के पास में होती हूँ, आपसे ढेर सारी बातें के साथ साथ सुनाती हूँ प्यारे प्यारे से गाने और आपके मैसेज जो मेरे पास में आने शुरू हो गए हैं। बस ऐसे ही मैसेज आप भेजते रहें, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई गाना आपको इंजॉय करना है, आप मुझे 8010781078 पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं तो बात करूँ ही, लेकिन साथ में आप भी बातें करें, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले आपको नंबर देती हूँ ताकि आप अपनी बातें हम तक पहुँचा दें। और आप मुझे कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार बिजी होने के चलते हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो उसके लिए आप हमें दिल से माफ़ कर दीजिएगा और समझ जाइएगा कि अभी हम बड़ा बिजी हैं, आप तुरंत मैसेज कर दीजिए। और आप जब मैसेज करेंगे तो ना केवल हम आपकी बातों का जवाब देंगे बल्कि आप के फरमाइश के गाने भी आपको सुनाएंगे, तो बस आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अब प्रोग्राम शुरू हो गया है तो चलिए गाना आपको सुनाती हूँ, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम में आपको बताने वाली हूँ कि आज के इस खास प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए इंजॉय करते हैं पहले गाना। रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं प्रागा आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज के प्रोग्राम में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ढेर सारे हैक्स एंड फैक्ट्स के बारे में। जी हाँ, ये क्योंकि बहुत ही खास और हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे

लोगों को ध्यान में रखते हुए मैं ये हैक्स लेकर के आती हूँ, तो आप एंजॉय कीजिए और बताऊंगी थोड़ी सी देर में, और साथ ही सुना रही हूँ आपको गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव वैष्णव 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं कुछ स्मार्ट हैक्स आपको बताऊंगी। भाई आज है सैटरडे और आज के इस प्रोग्राम में ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं और किचन के बारे में मैं ज़्यादा आज के प्रोग्राम में आपसे बात करती हूँ, क्योंकि किचन का काम ना अपने आप में इतना सारा होता है कि अगर आप एक बार किचन में गए और आपने ब्रेकफास्ट के टाइम पर जो भी काम किया, करते करते आपको इतना टाइम हो जाएगा कि आपको सिर्फ इतना ही वक्त मिलेगा कि आपने नाश्ता करना है और उसके बाद फिर से लंच की तैयारी हो जाती है, क्योंकि काम बहुत सारा हो जाता है। अब ऐसे में हमें चाहिए होती है हेल्प, तो देखिए अगर घर में बाकी सदस्य हैं तो ज़रूर हेल्प करते होंगे, है ना। और अगर हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई और नहीं है हेल्प कराने वाला, तो यहाँ पर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि देखिए घर में जो भी किचन में उस वक्त काम कर रहा है तो सब मिलके उनका हाथ बटाएं, ताकि वो व्यक्ति जो किचन में खाना बना रहा है वो भी फ्री हो जाए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि करने वाला सिर्फ एक ही होता है किचन में काम, ना तो अब क्या करें। तो ऐसे में हैक्स काम आते हैं और इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस सैटरडे, हर सैटरडे आप लोगों के लिए हैक्स लेकर के आती हूँ। चलिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे ना बड़ी तकलीफ होती है, और वो है मिक्सी। अच्छा, मिक्सी से तकलीफ तब हो जाती है जब मिक्सी ख़राब हो जाती है, जार के ब्लेड घिस जाते हैं, किसी भी यूज में नहीं आ पाते हैं। तब ऐसे में क्या होता है, अब यही दिमाग में रहता है कि अब हमें नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, है ना। और मशीन बाहर खरीदना मतलब अपना खर्चा करवाना, राइट। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो वेट करते हैं कि छुट्टी आए तो हम मिक्सी वाले के पास लेकर के जाए इसे ठीक कराने के लिए, इसके जो ब्लेड है उसको चेंज करवाए, अब उसमें भी खर्चा है ना। तो एक बार जो मैं कहने वाली हूँ उसको आप ट्राई कीजिए। आपको क्या करना है, आपको मिक्सी लेनी है, उसमें जार लगाना है, जार में कुछ डालना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ डालनी है और वो है सॉल्ट। जी हाँ, जो वाइट सॉल्ट होता है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, आपको ढेर सारा जो जार है मिक्सी का जिसमें ब्लेड है, राइट, उसमें आप डाल दीजिए और फिर आप खूब सारा नमक डाल करके इसको चला दीजिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको नमक को पीसना है। अब इससे क्या होगा, आप देखेंगे जैसे ही आपने नमक पीसा उसके बाद ब्लेड जो है वो काफ़ी हद तक काम करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो ब्लेड होते हैं उसकी धार को एकदम शार्प करने का ये तरीका, आप ये से नुस्खा कह सकते हैं, ये एक बेहतरीन सा नुस्खा है। तो आप इसे करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कितना वर्क किया। बट मैंने अपने घर में किया था तो मुझे तो बड़ा सही लगा। अगर आप हफ्ते में एक बार ऐसे ही नमक को मिक्सी में डाल करके पीस देते हैं तो उससे आपके ब्लेड शार्प रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी और मिक्सी में पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इस तरह से आप मनी सेविंग कर सकते हैं और साथ के साथ ये हैक्स आप अपने किचन में इस्तेमाल करके आप किचन को और भी ज़्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। अब मैंने आपको ये वाला हैक बताया, एक और बहुत ही गजब का हैक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस प्रोग्राम में, और इसके साथ ही सुनाने वाली हूँ गाने जो कि बेहद खूबसूरत। तो चलिए दो गाने एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

मैं हूं प्रांगा आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है एवरग्रीन लम्हे। और इस प्रोग्राम में आज मैं आपको बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स। और किचन की बात हम कर रहे हैं क्योंकि किचन का काम ज़्यादा होता है, किचन में वो सारी चीज़ें जो अपने आप में काफ़ी टाइम टेकिंग है उसको हम कैसे कम टाइम में कर सकते हैं या उससे काम हल्का कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और आपको हैक्स बताती हूँ। साथ ही बाहर जो खाने का अब ट्रेंड है वो काफ़ी हद तक घर में हो गया है, यानी कि पहले हम बाहर जाकर एंजॉय करते थे लेकिन अब वही चीज़ें घर में भी हम बनाकर एंजॉय कर पाते हैं। फिर चाहे कुछ भी फास्ट फूड हो या कोई भी ऐसा खाना जो आप बाहर पहले एंजॉय करते थे, लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे हमें पता चलता जाता है कि अच्छा इसको ऐसे बनाना है या इस तरह से इसको बनाकर तैयार करना है, वो फिर हम घर पर ट्राई करते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो एक काफ़ी अच्छी है क्योंकि जब कोई चीज़ हम घर पे बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हम घर में क्या डाल रहे हैं, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ऐसे ही हम जब भी छुट्टी पर होते हैं यानी कि वीकेंड होता है तो या तो राजमा या कढ़ी खाने का मन करता है या फिर दाल मखनी और उसके साथ में तंदूरी नान हो जाए तो ओहो क्या कहने, है ना। नान जो है घर में आजकल काफ़ी बनाने लगे हैं लोग। पहले का वक्त होता था कि लोगों को पता नहीं होता था कि कैसे बनाना है, सिर्फ कुछ एक लोग ही जानते थे बनाना, लेकिन आज के टाइम पर अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो भी नान बना सकते हैं। और ये तरीका तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। तंदूरी नान के लिए तंदूर का इस्तेमाल पहले किया जाता था लेकिन अब घर में भी आप बना सकते हैं, आप उल्टे तवे पर सेक कर तंदूरी नान बना सकते हैं जी हाँ। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको तंदूरी नान कैसे बनानी, बल्कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप नान बनाने जा रहे हैं और आपके पास टाइम कम है, जैसे होता है कि रिलेटिव कोई आ गए हैं या फिर एकदम से इंस्टेंट कुछ खाने का मन हुआ, दाल मखनी तंदूरी नान या कुछ तंदूरी नान के साथ कुछ खाने का मन हुआ और टाइम उतना है नहीं, प्लान एकदम से बना है ना, तो इंस्टेंट नान बनाने के लिए आपको क्या करना है, आटा जब आप उसका गूंथे उसमें बेकिंग पाउडर की जगह इनो जो है आप वो डाल दीजिए, इनो सॉल्ट जो होता है, इससे नान का आटा जल्दी तैयार हो जाएगा और नान बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना वही वाला टेस्ट आपको आने वाला है, जो कि बहुत ही यम्मी ऑसम टेस्ट होगा। तो ये आप करके देखिएगा, अभी तक आप जैसे भी नान बनाते थे आप इस तरीके से बना करके देखिएगा, आटा वाकई में बड़ा सॉफ्ट गूंथेगा और उसकी नान भी काफ़ी अच्छी बनेगी। ऐसे ही स्मार्ट हैक्स आपके लिए अभी और हैं, साथ के साथ चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में आज के प्रोग्राम में आपको मैं बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स और किचन से जुड़े ये जो हैक्स हैं जो वाकई में काम को काफ़ी आसान कर देते हैं। ऐसे ही आपका एक और काम आसान कराई देती हूं। अच्छा, कुकर में खाना बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है, थोड़ा कम वक्त लगता है, और ये भी एक तरह से हमारे ही लिए सही है ना कि कम समय में खाना बन रहा है। लेकिन क्या होता है, दिक्कत तब बहुत ज़्यादा हो जाती है जब अचानक से हमें पता लगता है समय हमारे पास कम है खाना बनाने के लिए, और एकदम से हम किचन में गए हैं और कुकर जैसी देखा, और कुकर पहले तो ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद जब नोटिस किया तो कुकर की रबड़ ढीली हो चुकी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। अब आपने ऐसे तैसे एडजस्टमेंट किया और आपने रबड़ लगा करके खाना चढ़ा दिया, कोई दाल या जो भी आपको बनाना है वो आपने चढ़ा दिया। अब क्या हो रहा है, दाल के अंदर का जो कुकर के अंदर जो दाल है उसमें पानी है, वो पानी सारा बाहर झलक रहा है क्योंकि रबड़ ढीली है। अब क्या करें, अब एकदम से भागना पड़ेगा मार्केट की तरफ। तो कई बार होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता या दुकान काफ़ी दूर होती है, अब क्या करें उसके लिए। तो यहीं पर अगर कुछ ऐसा मिल जाए जो काम आ जाए, यही तो स्मार्ट हैक है, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। अगर कुकर की रबड़ ढीली हो चुकी है तो आप उसको लीजिए और फ्रीजर में डाल दीजिए, जहाँ बर्फ़ रखी हो बस वहीं कोने में आप रख दीजिए और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में आप एकदम तैयार रहिए, बिल्कुल रेडी रखिए, यहाँ तक कि आप जो खाना है उसको इतना, जो आपने खाना चढ़ाने के लिए कुकर में डाला हुआ है सामान, उसको आप इतना गर्म कर लें कि वो उबालने वाली स्टेज पर आ जाए। अब तुरंत आप रबड़ निकालिए फ्रीजर से और उसको लगा दीजिए कुकर के ढक्कन पे, और तुरंत तुरंत आप उसको बंद कर दीजिए, सीटी तुरंत लग जाएगी और आपका खाना आसानी से पक जाएगा और कुकर के जो रबड़ है वो आपको परेशान भी नहीं करेगी। लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि आपका खाना तो बन जाएगा बट ये सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए रबड़ तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका वो खाना उस टाइम समय पर कम्प्लीट ज़रूर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होता है ना कि आप कोई काम होगा तो वो वीकेंड में होगा क्योंकि छुट्टी मिलती है भाई, और छुट्टी में ही फिर सारे काम जो बचे होते हैं वो निपटाने पड़ते हैं ना। तो अब अगर बीच में ही यानी कि वीकडेज में ही अगर ऐसा हो गया है और वीकेंड का आप इस्तेमाल करें, तो इस तरह से भी आप चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं, है ना। कितना स्मार्ट तरीका चीज़ों को ठीक करने का। ऐसे ही आपको एक चीज़ और बताती हूँ। सुबह के वक्त में हम सभी चाहते हैं कि कुछ हल्का हेल्दी टेस्टी हो, है ना। अब इसमें देखो, अगर मैं रेसिपी डिश की बात करूं कि सुबह सुबह क्या होना चाहिए जो हेल्दी है, कुछ खाने में जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होना चाहिए, तो कई लोगों के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होती है। लेकिन पोहा जो है वो सबको पसंद आता है ना। पोहा क्योंकि जल्दी बन जाता है और ये काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। और उसी वक्त आपको कुछ ऐसा करना है जिससे इसे बनाने में बहुत कम वक्त लगेगा और काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। देखिए, जब भी आप पोहा बनाने जा रहे हैं ना, तो उसमें भिगोने के बाद स्टीम करके आप इसे बनाएं। स्टीम करने से पोहा नरम और मुलायम रहता है और अपनी शेप में रहता है, और बनाने में भी काफ़ी कम समय लगता है। तो अब आप स्टीम करके पोहा बनाइए, मज़ा ही आ जाएगा। तो ये आप करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा 8010781078 रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानवृक्ष 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आपको स्मार्ट हैक्स और टिप्स दे रही हूं. तो हैक्स पर तो बहुत सारी बातें कर ली, अब बात कर लेते हैं अपनी यानी कि हमारी सेहत की. दादी नानी के नुस्खे बड़े ही कमाल के होते हैं. दादी जी नानी जी हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें बता जाती हैं जो कि पूरी ज़िंदगी काम आने वाली होती हैं. ऐसे ही कुछ नुस्खे आप लोगों के लिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि हैं बेहद कमाल के. अच्छा, पानी में नींबू निचोड़कर पीने से हमारा फैट लॉस होता है ना, और शरीर में फुर्ती आती है. तो हम सभी जानते हैं कितने लोग वेट लॉस के लिए गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके पीते हैं ताकि बॉडी डिटॉक्स हो और उनका पेट सही रहे और साथ के साथ स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है. वेट लॉस तो होता ही उससे, है ना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी जो नहाने वाला पानी है जिससे आप थोड़ी देर में नहाने वाले हैं, आप अगर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें और उससे आप नहाएं तो स्किन सॉफ्ट रहती है, काफ़ी ज़्यादा चिकनी हो जाती है. जी हाँ, क्या ये आपको पता था? ये भी दादी नानी का नुस्खा है जो कि मुझे लगता है ये तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए. भाई स्किन सॉफ्ट तो हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन मुलायम रहे और टेक्सचर बड़ा स्मूथ रहे. तो बस यही वाली चीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों को अप्लाई कर ही लेनी चाहिए और इससे कोई नुकसान भी नहीं है. दादी नानी का नुस्खा है, आराम से इस्तेमाल कीजिए. और नींबू पानी तो हम पीते ही हैं, तो अब नहाने के पानी में भी हल्का सा नींबू निचोड़ करके क्यों ना इस नुस्खे को आजमाया जाए, है ना. तो ये नुस्खा जब आप आजमाएं तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा. कुछ दिन पहले आप इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. और साथ के साथ नंबर आप ले लीजिए 8010781078, ये हमारा नंबर है. चलिए अब आपको अगला नुस्खा बताती हूँ. और अगला नुस्खा भी हमारी दादी नानी का ही है. काले खजूर जो होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, है ना. क्या आप जानते हैं काले खजूर जो हैं वो खाने से कमर मजबूत होती है और इससे कमर दर्द जो कि बहुत जल्दी आज के टाइम पे लोगों को होने लगा है. कमर में दर्द रहता है और ठीक से चला भी नहीं जाता. कई बार तो मैंने देखा है कि एक एज के बाद कमर दर्द इतना रहता है कि बहुत परेशान रहते हैं और कई लोग तो झुक कर चलते हैं क्योंकि वो ठीक से कमर सपोर्ट ही नहीं कर पाती उनको, है ना. तो काले खजूर खाने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया होते हैं और कमर को और हड्डी को मजबूत करते हैं. तो मुझे तो लगता है, अब देखो दादी नानी का नुस्खा है और खजूर खानी भी चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं खजूर कितनी हेल्दी होते हैं हमारे लिए. तो काले खजूर आप अपने घर पे ला के रख लीजिए और जब भी मन करे, हाँ लेकिन ज़्यादा नहीं खाइएगा. और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे है तो आप एक या दो से ज़्यादा मत लीजिएगा. लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हेल्दी है तो इसको छोड़िएगा नहीं, ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर दादी नानी के नुस्खे अभी और बहुत सारे हैं जो मुझे आपको बताने हैं. लेकिन उससे पहले चलिए एंजॉय करते हैं अगला गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

प्रेम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। और मैंने आपको किचन हैक्स के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई और अब मैं आपको बता रही हूँ दादी नानी के बेहतरीन नुस्खे, जो कि इसमें से कितने सारे नुस्खे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इन नुस्खों को आप कितना अप्लाई करते हो अपनी ज़िंदगी में। तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ अप्लाई तो हम नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, लेकिन मैं यही तो चाहती हूँ कि ये जो नुस्खे हैं जो हम सब जानते हैं इसको हम अप्लाई भी करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो जो फ़ायदा जो पहले के लोग उठाया करते थे वो हम भी उठा पाएँ। इतनी नायाब चीज़ हमारे बुज़ुर्ग बता कर गए हैं लेकिन हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम के ज़रिए से अगर कुछ लोग भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आते हैं और अपनी ज़िंदगी बदल देते हैं तो देखो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। तो अगला नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, और ये भी हम सभी जानते हैं कि जो कच्चा प्याज है वो खाना चाहिए। कच्चा प्याज या सब्जी में डाल करके इसको हमें खाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है और गर्मी से बचाता है, लू से बचाता है। और आपने घर में अगर बड़े हैं आपके तो आपने उनको देखा होगा कि जब भी वो लू में बाहर निकलते हैं तो अपने साथ में प्याज की एक गांठ यानी कि छोटी प्याज अपने साथ ज़रूर रखते हैं या फिर बैग में रखते हैं, और प्याज का सेवन ज़्यादा कर देते हैं लू के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर। वो क्यों होता है? क्योंकि ये लू से बचाता है। प्याज लू से बचाने में बहुत ही कारगर साबित होती है, इसलिए ऐसा आपने अपने बड़ों को भी डेफिनेटली करते देखा ही होगा, है ना। क्या आप जानते हैं कि ये बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बचाता है? जी हाँ, इसलिए प्याज का इस्तेमाल जो है हमें करना ही चाहिए अपनी डाइट में, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और बस यही मैं चाहती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, दादी नानी के नुस्खों को एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर के आएँ। वही मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि नींद नहीं आ पाती है आजकल, काफ़ी दिक्कत होती है, और हम अगर मोबाइल ना भी चलाएं तो भी एक प्रॉब्लम रहती है, जरी सी आँख लगती है तो फिर से आँख खुल जाती है और उसके बाद हम कई कई घंटों तक जागते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात पता है कब होती है? जब अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमें ऑफिस के लिए निकलना है। छुट्टी के टाइम पर तो फिर भी एक दिमाग में ये रहता है कि अगले दिन कोई बात नहीं, हम सो जाएंगे समय निकाल के, लेकिन अगर अगला दिन वर्किंग है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये भी दादी नानी का घरेलू नुस्खा है, अगर नींद नहीं आ रही है तो हल्का सा नींबू चाट लीजिए, कहते हैं कि नींद अच्छी आ जाती है। तो मैंने तो ये अभी तक नहीं आजमाया क्योंकि मैं तो जल्दी सो जाती हूँ बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप उनमें से हैं जिनको नींद आने में थोड़ी दिक्कत होती है आप ये कीजिए। और ये जो नुस्खा है आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताना। नंबर हमारा 8010781078। तो देखा, हमारे जो समाधान हैं वो घर में ही हैं, लेकिन घर में समाधान होने के बावजूद हमें नहीं पता, क्योंकि हम दादी नानी के नुस्खों से अब काफ़ी दूर हो चुके हैं और जो पास है भी वो सिर्फ अपने तक ही सीमित है, क्योंकि आज के बच्चे ना उनको पता है और ना वो इन सब चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं, है ना। समय के की कमी है या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिस वजह से वो ध्यान ही नहीं रख पाते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समाधान घर में ही मौजूद है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में बता रही हूँ आपको दादी माँ नानी माँ के नुस्खे। ऐसा ही एक नुस्खा आपको बताती हूँ और ये उनके लिए है जिनको खट्टी डकारी बहुत आती है। आज के टाइम पर हमारा खान पान इस तरह से हो गया है कि अगर हम अपनी भूख से ज़रा सा भी ऊपर खा लें तो हमें खट्टी डकारी आने लगती है, या कुछ तेल मसाले वाला ज़्यादा खा लें तो हमें ये दिक्कत होती है, है ना। या कई बार ऐसा होता है कि सब चीज़ ठीक है, खाना भी हमारा हल्का है, लेकिन उसके बाद भी खट्टी डकारों की जो समस्या है कई लोगों के साथ में ये रहती है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनको इन सारी चीज़ों को करते हुए, यानी कि खाना खाते वक्त या तेल मसाला थोड़ा ज़्यादा खा लिया तब ऐसे हो जाता है, या फिर आपको प्रॉब्लम है इस चीज़ की कि आपको खट्टी डकारे सिंपल खाने से भी हो जाती है, तो दादी नानी जी कहती थी कि अगर आप एक चुटकी भर जीरा खा लें तो खट्टी डकारे आना बंद हो जाएगी। तो ये आप करके देखिए। वैसे सौंफ के लिए भी कहते हैं कि सौंफ जो है वो खट्टी डकारों को ख़त्म करता है, पेट को ठंडा करता है, लेकिन ज़ीरा वाला जो है ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। ज़ीरा अगर आप एक चुटकी थोड़ा सा, मतलब आप ज़ीरा अगर आप खा लेते हैं और आपको ये दिक्कत हो रही है तो दिक्कत कहते हैं ठीक हो जाएगी। तो आपके साथ अब ये प्रॉब्लम हो तो आप ज़ीरा को बिल्कुल मत भूलना, याद रखना और इसको खाना, और फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी खट्टी डकारे थोड़ी देर में जा चुकी है। तो है ना कितना कमाल का ये नुस्खा। ऐसे ही सेंधा नमक खाने की हिदायत हमेशा दी जाती है, क्योंकि सेंधा नमक जो है वो अच्छा होता है खाने में डालने के लिए। वही क्या आप जानते हैं कि सेंधा नमक शरीर के दर्द को कम करता है? जी हाँ, आपने सिकाई करते हुए तो सुना ही होगा और आप करते भी होंगे, देखा भी होगा आपने सिकाई करते हुए कि गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके खूब सारा अगर आप अपने पैर डाल देते हैं तो ये काफ़ी अच्छी सिकाई हो जाती है पैरों की, आपके जो पेन होते हैं वो चले जाते हैं, आपके पैर में है, जॉइंट्स में है, तो वो गर्म पानी में सेंधा नमक डालने से दर्द गायब हो जाता है। ऐसे ही आप अगर इसको खाने में से इसका सेवन करते हैं तो ये कमाल का फ़ायदा जो है देता है बाकी नमक के मुकाबले। तो कैसा लगा ये नुस्खा, है ना कमाल का। ऐसे ही आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ, और ये उनके लिए है जिनको पेट में गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जी हाँ, अगर आपको भी दिक्कत थोड़ी ज़्यादा रहती है तो आप पहली चीज़ तो कम खाएं, और सबसे बड़ी चीज़ खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। खाना जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको जो गैस की प्रॉब्लम है या और जो प्रॉब्लम खाने के बाद होती है वो धीरे धीरे चली जाएगी, क्योंकि खाना खा के कई बार क्या होता है कि हम बैठे रह जाते हैं और बैठने से ही काम ख़राब हो जाता है। इसलिए खाना खाने के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद वॉक करनी चाहिए, वॉक करने के लिए कहा जाता है। तो आप धीरे धीरे धीरे वॉक कीजिए, या खाना खाने के आधे घंटे बाद आप वॉक शुरू करें। और वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद होता है, तो वज्रासन में आप ज़रूर बैठें। इससे खाना ना केवल डाइजेस्ट होगा बल्कि आपको जो ये प्रॉब्लम है जो आपके खाने के बाद शुरू होती है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। कुछ और चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूं प्रा

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें मैं आपसे कर रही हूं, जहां आपको न केवल मैंने किचन हैक्स बताए बल्कि दादी नानी के ढेर सारे नुस्खे भी बताए। जी हाँ, तो चलिए अगला नुस्खा आपको बताती हूँ। और हमेशा आपने सुना होगा कि हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि रात के समय दही नहीं खाना चाहिए, है ना। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जोड़ों में दर्द होने की शिकायत हो जाती है, इससे खांसी जुकाम की समस्या हो जाती है, इसलिए रात में हमें दही नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप किसी खाने में डाल रहे हो ना तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी नुकसान होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप दही को रात में अवॉइड करें। और अगर आपका बहुत दही खाने का मन कर ही रहा है तो आप अपने मन को समझा लें कि अगर आप खाएंगे तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनके साथ ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो अगर आप सेंसिटिव हैं और दही आपको बहुत अच्छी लगती है तो पूरे दिन खाइए, लेकिन रात में पूरी तरह से दही को अवॉइड कीजिए। जी हाँ, ये सबसे बढ़िया चीज़ मानी जाती है, लेकिन रात में आप अवॉइड कर दीजिए। वहीं खाना खाने के तुरंत बाद कहते हैं कि कई बार हम सभी को ही क्रेविंग हो जाती है चाय पीने की, और कई बार तो रात में भी बड़ी क्रेविंग होती है चाय पीने की, लेकिन चाय नहीं पीनी चाहिए। इससे खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता और पेट में सड़ने लगता है, और ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। इसीलिए रात में चाय पीने की हिदायत नहीं दी जाती है। कोई नहीं कहता कि रात में चाय पीनी चाहिए, लेकिन चाय जो चाय लवर है ना, उनकी क्रेविंग रात में ही सबसे ज़्यादा होती है। जब ऐसे कुछ थॉट चल रहे हैं दिमाग में, या कोई बात चल रही है, या कुछ भी ऐसा जो कि हमारे मन का हो रहा है, तो उस टाइम पर बातें करते करते चाय का प्याला मिल जाए, आहा क्या कहना। अच्छा, मैं भी उनमें से एक हूँ जिनको चाय जो है बहुत अच्छी लगती है। मेरे को भी बहुत पसंद है चाय पीना, लेकिन रात में तो मैं भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरी दादी जी कहती है रात में चाय नहीं पीनी चाहिए बेटा, इससे एसिडिटी हो जाती है और बहुत शरीर को नुकसान होता है। तो मैंने तो ये सालों पहले समझ लिया था, तो आप भी समझ जाइए और चाय पीना रात में बंद कर दीजिए। तो है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही हैं। और एक चीज़ और बताऊँ जो मुझे लगता है कि बहुत ही औसम बात हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए। वो हमेशा कहते हैं कम बोलने वाले इंसान का दिमाग बहुत तेज होता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। कम बोलने वाला व्यक्ति, उसका मान भी होता है और आपका दिमाग तेज होता है, क्योंकि ज़्यादा बात करने वाले जो लोग हैं ना, उनको लोग सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। जी हाँ, और अगर आप कम बोलते हैं तो लोग आपको सीरियसली सुनते भी हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने शरीर पर काम कर रहे हैं। तो भाई, मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है। हमेशा कम बोलना चाहिए, और जब भी बोले अच्छा बोले, प्यार से बोले, सम्मान के साथ बोले, शब्दों को ध्यान में रख कर बोले, है ना। कितनी बढ़िया बात जो हमारे बुजुर्ग कह गए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ढेर सारी बातें मैंने आपसे की, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। नंबर हमारा है 8010781078। तो चलिए इंजॉय करते हैं अगला गाना। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया।
1: सच?
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही। यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में ये गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों, देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों, कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए इन अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है, तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम, सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

वेलकम बैक रेडियो मानो रचना 107.8 एफएम पे दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम चल रहा कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। दोस्तों अब मैं आपको एक बात खास बता दूं कि मजरूह सुल्तानपुरी ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। जी हाँ, इनका नाम था असरार उल हसन खान। तो मजरूह इन्होंने अपना नाम रखा और सुल्तानपुरी क्योंकि ये सुल्तानपुर के जन्मे थे इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे अपना प्रदेश का नाम लगाया और नाम बन गया मजरूह सुल्तानपुरी। दोस्तों हिंदी भारतीय जगत के ये उर्दू कवि और हिंदी भाषा फिल्म उद्योग के ये गीतकार रहे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रमुख संगीत शक्तियों में से इनका नाम आता है और बहुत सारे गाने इन्होंने जो हैं लिखे, जिसमें जो दोस्ती फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें गाना आया चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी पुरस्कार मिला। 1980 और 1990 के दशक में इन्होंने अधिकांश काम आनंद मिलन के साथ किया और उल्लेखनीय जिसमें सहयोग है कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी ही थे कयामत से कयामत तक के गानों के पीछे। और जतिन ललित के लिए जो जीता वही सिकंदर के गाने और पहली फिल्म यारा दिलदारा, इन मूवीज़ के गाने भी मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिखे। तो बहुत ही इनका सुंदर लिखाई इन द सेंस जो ये लिखते थे बहुत ही सुंदर गीत थे। हम सभी जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर के जो गाने हैं वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। हालाँकि मूवी का प्लॉट खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था, लेकिन एक मूवी में जान डालने का जो काम होता है ना वो गाने करते हैं और गानों के अगर लिरिक्स अच्छे हों फिर तो सोने पे सुहागा। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी को। तो दोस्तों बात हो गई बहुत सारी इनकी बॉलीवुड के काम की, आइए अब चलेंगे इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में इनके चाइल्डहुड और एजुकेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आई एम हेयर ओनली, आप भी ट्यून रहिए रेडियो मानो रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?

ही हूँ।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1919 और 1920 के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी किया और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों में जो एक गीतकार के रूप में है हम उससे इनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो दोस्तों, बातें हो गई हैं ढेर सारी और मुझे पता है कि हम सब इनके लिखे हुए गाने सुनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी। तो आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और थोड़ा सा इनके राजनीतिक झुकाव और इनकी फिल्मों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो उनका राइटिंग सुनी कि ये तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम करना या फिल्म से जुड़ना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि ये एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होगा और इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी, तो ये सोचकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और कारदार साहब इनको संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए और एक युवा लेखक के रूप में इनका वहाँ परिचय कराया और उन्होंने उनको एक धुन दी, यानी कि धुन पहले बन चुकी है, लिखा गाना नहीं गया, अभी पहले धुन बनी और धुन इनको दे दी गई कि इस धुन पर आप जो है अपना एक गाना लिखो। और फिर उस धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा और उसके बाद 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन साहब, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। इन सब के लिए गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, तो क्यों ना हम इनके कुछ गाने और सुने और फिर इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कुछ और भी। आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में। तब तक के लिए एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स। और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारी देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तानपुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील Live.

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है।

0: अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुंचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
1: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
2: हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर, आया हूँ लेकर के शो सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। दिस शो इज रियली स्पेशल बिकॉज यहाँ पर हम लोग लीगल फ्रेमवर्क को कवर करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको यहाँ पर हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बात करने वाले हैं एआई की, लेकिन हम जेनरल एआई की बात नहीं करेंगे, हम जेमिनी चैट जीपीटी काम कैसे करता है वो नहीं समझेंगे यहाँ पर। लीगली क्या है, कानून क्या बोलता है, कि कानून के पास कुछ है अगर आपकी फोटो कोई उठा करके बिना आपके कंसेंट के ऑल्टर करके अपलोड करता है तो कानून उसको लेकर के क्या बोलेगा, या सच में क्या कोई एआई मॉडल कुछ भी बना सकता है, कोई रेगुलेशन है उसके ऊपर। इस तरह के कुछ सवाल होंगे जो आज के शो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं। आई एम डैम श्योर आप लोग जरूर वाकिफ होंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस एक प्रॉब्लम को फेस किया है, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से, स्कैम्स के माध्यम से, एंड सो ऑन। सो आज हमारे साथ है मिस तन्वी। तन्वी से हम लोग बात करने वाले हैं। तन्वी इज द असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव रत्न यूनिवर्सिटी। और तन्वी सेकंड टाइम हमारे साथ सेशन कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर डूइंग दिस तन्वी।
3: Thank you
2: and welcome to our show. We're going to start with this very basic question. Artificial intelligence har jagah par aa chuka hai, koi science fiction nahi, hamare beech mein aa chuka hai, hamare workplace pe hai, hospitals mein hai, courts mein hai, but kanoon ki definition kya hai AI ki, what is AI?
3: So ideally no law has defined AI, lekin what our understanding of AI is that any task that the computer system is performing which would traditionally require human intelligence, but now it is being done by that computer system, that is what we call as artificial intelligence. So let me give you a very small example. Aap kabhi bhi kuch shopping karne jate hain to aap dekhte hain FAQs, frequently asked questions, they are fixed questions, you can just look at them. But let's say you want to ask a more tailor-made question, that you would require a person replying to your question, right? But now you don't have it, you have chatbots in every website that you go to. Let's say you're shopping on Nykaa, you have the chatbot who can answer your basic question. So that is the smallest example of artificial intelligence. So something ideally a human would have done is now being taken up by computer systems. So that is artificial intelligence.
2: All right. And there are global conversations about regulating the artificial intelligence. I want to know why.
3: So basically, artificial intelligence reach has really magnified over the last couple of years. So now it's not a vague concept that might be coming in the future. It's something that's already here. Now, what happens is that AI is increasingly making decisions that are also having its impact on the people's rights and interests. So for example, let's say someone wants to get a loan. So now they have AI applications that would filter out. They have AI based applications that would filter out what person should be given the loan, what amount, what interest rate. We also have AI systems in recruitment now. So let's say something like Amazon, they get what, roughly 1 lakh applications a year, and it's not possible for them to sort through everything. So they have their own AI system, which is very interesting. Maybe we can talk about it later in the session. So they have their own AI system to sift through those applications. So since AI is being increasingly used in the day-to-day life and it's increasingly impacting people, it is very important that we regulate that particular application. We regulate the, or we define the boundaries to which it would be allowed to function. Because if, let's say, today we are getting benefits out of its use, but let's say tomorrow there is some harm. If that harm occurs, who is going to be held responsible is the main question that comes in, which is very difficult to answer in terms of AI.
2: All right. बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको बताया है. Next question would be, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ब्राजील का आर्टिकल था. There was a lady of 32 years old. ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम थी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, उन्होंने AI के ऊपर अपलोड करी, चैटबॉट के ऊपर, और वहाँ से कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछे कि व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी. डॉक्टर ने बोला था आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा, बट एआई सेड आपके पास 5-6 दिन का टाइम है. सो शी लिसन टू एआई एंड नॉट टू डॉक्टर एंड शी डाइड, क्योंकि उनको लगा कि अर्जेंसी नहीं है, अभी एआई बोल रहा है टाइम है. इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, मैं जानना चाहूंगा अगर इस तरह के केसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को वहां पे अपलोड करते हैं एंड समटाइम्स एआई उसको गलत प्रिडिक्ट करता है, हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट पार्ट? क्या हमारे पास कुछ लीगली ऐसा है या हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसको?
3: सो दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इन द पार्ट वेयर एआई गवर्नेंस रियली एंड्स अप बीइंग स्टक. Firstly, let's start with your news article. So, in that case, it was the lady's decision alone to not go to the hospital. So, in that case, it is still possible to attribute the particular harm that she has suffered or like she has passed away to her own consent. So, if for example, if a doctor is asking you to do something and if you don't end up doing it and you it ends up costing you your life, you can't really hold the doctor accountable. Similarly, chatbots cannot be held accountable for that. But a situation where AI liability would come into question is, so there was this case recently, like a few years back in the US. So Tesla has autonomous driving vehicles. So it works on artificial intelligence, right? So what happened was this car was going and the car system read it as the horizon. Like the horizon is there, but it was actually a white truck that was going, but the system, the artificial intelligence, because they are autonomous self-driving vehicles, it thought it's the horizon and it's just the sky that's appearing, and it crashed into that white truck, and now because of which a lady died. So then what? Let's say artificial intelligence is also being used in healthcare now. Let's say a robotic surgery is being performed. Robotic is not AI actually. Let's say with the help of AI a surgery is being performed and something goes wrong. Then who is responsible? So these are, especially in case of autonomous driving vehicles, that is where AI liability really comes into picture. So because the main issue in AI liability is, who will you attribute the harm to? Who will you hold responsible? Will you hold the person who has developed that software responsible? Or will you hold someone who has deployed or who has deployed that software? So for example, OpenAI or ChatGPT, it is invented by XYZ person. That person has written the code. But it is deployed by OpenAI. ChatGPT is deployed by that particular company. So will you hold that company responsible? Or will you hold their local distributors responsible for it? So that's the main problem in AI liability, that it's very hard to pinpoint who will be responsible. So if someone murders someone, तो आपको पता होता है कि एक इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा, दो यू कैन आइडेंटिफाई. बट विद एआई, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व इन इट, इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन दीज केसेस. सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम. सो फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुड पोटेंशियली फॉल ईदर ऑन द डेवलपर हु हैज डिजाइन द एआई और ऑन द कंपनी दैट हैज डिप्लॉयड इट और द पर्सन हु मिसयूज्ड इट ऑल्सो. That is also one possibility. Or it could also fall on multiple parties together. It's not important that it has to be only one of these parties. It could fall on multiple parties together.
2: So amazing. All right, दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत यहाँ पर चल रही है. फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा हॉल्ट यहाँ पर, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक की हमें जरूरत है, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे. तन्वी हमारे साथ हैं और एआई के लीगल फ्रेमवर्क को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डीकोड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स एंड किसको आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हो. मेरे पास इसका एक और फर्दर केस स्टडी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ. फील गुड, फील लाइफ.

0: वेलकम बैक। आई एम होपिंग यू आर लविंग द शो, यू आर लविंग द वाइब, यू आर लविंग द म्यूजिकल ब्रेक। एंड अगर आपको अपना कोई फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है मेरे लिए, तन्वी के लिए, या इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ ऐड ऑन आपको करना है, जस्ट डू मेक श्योर 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात आप पहुंचा चुके हो। फिलहाल शो को आगे लेकर चलते हैं और अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तन्वी, यहाँ पर हमने बात करी अभी ब्राजील का एक केस बताया, जहाँ पर आपने बताया कि इट्स हार्ड टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट पार्ट, मे बी दैट लेडी जो उसने अपना कंसेंट के साथ काम किया। सेकंड केस यूएस में हुआ, रियल केस है जो वहां भी कोर्ट में चल रहा है। देयर वाज अ गाय, ही वाज अ टीनेजर, ही वाज फीलिंग समथिंग एब्सर्ड, ओके, तो उसने चैट जीपीटी से बात करना शुरू किया कि आई एम फीलिंग दिस वे, आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माय लाइफ। चैट जीपीटी मोटिवेटेड दैट गाय इन दैट वे कि डू यू वांट मी टू राइट अ सुसाइड नोट फॉर यू, एंड दैट गाय जस्ट एंड अप giving up his life, okay, that is the whole case। अब जब ये सारा मामला वहाँ पर कोर्ट में जाता है, उसके पेरेंट्स वहाँ पर अपील करते हैं, इस केस में क्या होगा अगर सिमिलर कोई केस इंडिया में आता है। ये चलो यूएस की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का है जो ऑलरेडी एक ऐसे पीक मोमेंट में आ चुका है, जिसके थॉट्स उसको वहाँ ले जा चुके हैं कि उसको लग रहा है लाइफ यहाँ दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, ओके। उस मोमेंट में एक AI मॉडल के पास ये ऑप्शन भी है कि वो उसको वहाँ से वापस लेके आ सके। ह्यूमन इमोशंस आर सो कॉम्प्लेक्स, बट दैट AI मॉडल चोज द अदर वे। What is the framework for that part?
1: So ideally, let's say if it happened in real life, and if instead of ChatGPT there was a person, so abetment to suicide ka case lagta. Abetment means inciting someone to do something. So uspe

0: ये क्या?
1: तोहफा।
0: तोहफा? तोहफा तो मुझे देना चाहिए था।
1: तुमसे तोहफा मैंने ले लिया है।
0: जी मुझसे?
1: तुमसे, तुम्हारी टीचर।
0: जोकर, इसका क्या करूं?
1: इसे अपने पास रखो, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्ही को लौटा रहा हूं।
0: जी मेरे लिए?
1: देखो एक दिन राजू बड़ा होगा, लेकिन जोकर राजू ऐसा ही रहेगा, भोला मासूम। इसे जिसके हवाले करना सोच समझ कर करना। दुनिया में जोकर के साथ जो करता है मजाक करता है।

0: पूछो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। सशक्त महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी से हम बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी सीख डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, आप सभी को पता है कि ऐसा कार्यक्रम है, ना सिर्फ ये मेरे दिल के करीब है लेकिन साथ के साथ ये हमारे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम का सबसे लंबा चलता हुआ कार्यक्रम है। सो एक लंबे समय से मैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर आती हूँ और इस कार्यक्रम में मैं आपको अलग अलग महिलाओं से मिलवाने की कोशिश करती हूँ। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो जिंदगी में ढेर सारी शिक्षा दे चुकी हैं, यानी एक एजुकेशनिस्ट हैं। आज हम आशा गाबा जी के साथ हैं और ये एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर रही हैं और आजकल ये मध्यस्थ दर्शन के साथ जुड़ी हुई हैं एज अ मेंबर। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: आशा जी, कार्यक्रम का नाम है वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण। सबसे पहला सवाल हर महिला से इस कार्यक्रम में इस लंबे समय से मैं ये पूछती आ रही हूँ कि उनके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण की परिभाषा हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप किसे सशक्तिकरण मानती हैं तो क्या कहेंगे आप?
1: जी, वास्तव में महिला सशक्तिकरण का जो अर्थ है वो है महिलाओं को शिक्षा, अधिकार, अवसर, संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना
0: जी,
1: ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में पुरुषों के समान सम्मान और अवसर प्राप्त कर सकें और विशेषकर स्वयं को एक मानव के रूप में पहचान सकें, क्योंकि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जिस दिन वे स्वयं को मानव होने के रूप में, अपने अस्तित्व को एक मानव के रूप में पहचान जाएंगी, वे जागरूक हो पाएंगी और सशक्तिकरण के लिए वो स्वयं को परिवार में ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान कर पाएंगी, मेरा ऐसा मानना है।
0: भाई देखिए, मैं ना हमेशा से कहती आई हूँ कि महिलाओं को अगर सशक्तिकरण चाहिए तो वो पहला कदम आपके अपने परिवार से होता है, वो पहला कदम आप ही के अपने आप का होना चाहिए। सशक्तिकरण कोई और दे नहीं सकता है आपको, सशक्तिकरण आपको खुद महसूस करना है। और आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि वो महिला सशक्त है जो ना सिर्फ अपने डिसीजंस ले पा रही है, अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी पा रही है, लेकिन इसमें गुड बैड अगली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपने जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या आपने कोई निर्णय लिया, क्या आपने अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन खुद लिया, और अगर लिया तो क्या आप उस पर अडिग रह सकी, क्या आपने वो डिसीजन एड्रेस किया, या आप सिर्फ दूसरों की दी हुई एक बनाई हुई लकीर पर चलती आ रही हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो मैं उस महिला को सशक्त मानती हूँ जो अपनी ज़िंदगी की लकीरें खुद खींचती हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये बहुत ही प्यारा सा एपिसोड। और इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलाती हूँ। आज तो एक एजुकेशनिस्ट से मिलवा रही हूँ भाई, ज्ञान का भंडार होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला अगर एजुकेशनिस्ट है ना, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ना सिर्फ वो अपने परिवार को शिक्षित करती हैं, लेकिन समाज को शिक्षित करने में एक बड़ा अहम हिस्सा निभाती हैं। आशा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एक सीनियर एजुकेशनिस्ट रही हैं, लेक्चरर ये रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आजकल मध्यस्थ दर्शन से ये स्पिरिचुअलिटी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हैं, और साथ के साथ उसे लोगों को महसूस कराने की भी कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं इनके सशक्तिकरण की जर्नी से। सो आशा जी, आप जब एक टीचर लेक्चरर थी, सो आप बहुत सारे ऐसे बच्चियों से मिली होंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिली होंगी जिनकी जिंदगी में बहुत सारी उलझने होंगी, बहुत सारी बार वो आपके पास भी आए होंगे। मैं अगर आप ही की अपनी जर्नी के बारे में पूछूं, सो क्या कभी जिंदगी में कोई एक ऐसा कदम उठाया, कोई ऐसा डिसीशन लिया जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि हाँ, आप सशक्त हैं और आपने अपने लिए कोई अपने जीवन का डिसीशन लिया है?
1: मैंने 36 इयर्स की जॉब की है एज ए प्राइमरी टीचर। मैंने जॉब को स्टार्ट किया और जॉब के साथ साथ मैंने मास्टर्स किया हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री में, और बीएड एमएड भी किया। तो क्वालिफिकेशन से मुझे प्रमोशन तो मिला, लेकिन मैं उस स्कूल में जब बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे आते थे, उनके साथ भी काम किया, फिर मिडिल क्लास के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए काम किया, फिर एज ए लेक्चरर मैंने 11th और 12th क्लास के बच्चों के साथ भी काम किया। तो जहाँ तक आपने समस्या की बात कही है, तो बच्चियों की बहुत समस्याएं होती हैं। आप ये देखिए कि छोटे बच्चे जब उनको पीरियड्स होते हैं, तब उनकी जो हालत होती है बहुत खराब होती है, वो घर में कई बार बता भी नहीं पाती
0: जी।
1: और स्कूल में उनको दिक्कत होती है, फिर छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह कर देना, 8th 9th में पढ़ती हैं और उनके पेरेंट्स उन पर दबाव बनाते हैं कि तुम मैरिज कर लो, आगे उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिन जो बच्चे जो है मेरे फ्री पीरियड में आकर मुझसे डिस्कस करते थे
0: जी।
1: तो मैं उन बच्चों को, जिनकी भी समस्याएं होती थी, तो मैं उनको अलग से एड्रेस करती थी। जैसा कि एक बच्ची ने एक बार कहा मुझे कि वो 8th क्लास में पढ़ती थी कि मैडम मेरा पढ़ने का बड़ा मन है, पर मेरे फादर मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह की समस्याओं को जब मैंने देखा, तो मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, समझाया कि उनकी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है, गेम्स में बहुत अच्छी है, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, तो आप इस बच्ची को मेरे कहने पर, मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप उसे पढ़ने दें। तो ये बात उनको, पेरेंट्स को समझ आई और मैंने कहा देखना, भविष्य में ये एक बहुत अच्छी शिक्षिका बनेगी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो 15-20 साल पहले कही गई मेरी बात मुझे आज भी याद आती है, और मैं गदगद हो जाती हूँ कि उन पेरेंट्स ने मेरी बात मानी और वो आज एक टीचर के रूप में मेरे सामने और आज तक भी जुड़ी हुई है।
0: वाओ
1: जी।
0: सो देखिए, एज एन एजुकेशनिस्ट अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास एक मौका होता है कि आप स्टूडेंट्स को, उनके जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और मजेदार चीज ये है कि आप उनके जीवन को एक बड़ी अच्छी राह दे सकते हैं अपनी छोटी सी सलाह से, एक छोटी सी सीख से। और ये इख्तियार अदरवाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ परिवार के सदस्यों के पास होता है, और आप आज के जमाने में किसी से सलाह लेते नहीं है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद एजुकेशनिस्ट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। और सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं बच्चियों की, तो आई थिंक इससे अच्छा खूबसूरत सा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुना रही आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना, और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं आशा गाबा जी से। आशा जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले सशक्तिकरण की बात की थी, सो आप अगर अपनी पर्सनल जर्नी से कुछ बताना चाहती हैं तो क्या कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में जब जब मैंने कोशिश किया तो मैंने कुछ नए मुकाम हासिल किए। जैसे मैंने हैप्पीनेस करिकुलम में अपना कंट्रीब्यूशन किया, मैं हैप्पीनेस टीम की कोर मेंबर भी थी, एज ए मेंटरशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर मेरी मुझे समझ बढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि हैप्पीनेस करिकुलम मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। वहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई, स्टोरीज़ बनाई, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई और इसके साथ साथ टीचर्स को भी कराई। प्रिंसिपल्स के साथ भी हमारा जो है एज ए फैसिलिटेटर मैंने काम किया है, प्रिंसिपल्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, सबके साथ। तो मेरा एक लंबी जर्नी जो रही है सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रही है, टीचर्स के साथ एज ए फैसिलिटेटर, प्रिंसिपल और एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ भी हमें डिस्कशन करने का मौका मिला है। तो उसमें हमने इस जर्नी में जो मैंने गहराई से मुझे समझने का मौका मिला, तो मैं जो है मैं ये सोचती हूँ कि वो जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो हमें जो है थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की भी ज़रूरत है, और एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव करने हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अगर लाया जाए तो बच्चे और जो बड़े नागरिक हैं वो एक देश के लिए बहुत बड़ा यूथ जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है, तो मेरा इसमें विश्वास है। और एज ए डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर जब मैंने काम किया तो बहुत ही अच्छे अनुभव हुए मुझे टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और वो मेरे साथ, मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैंने वीआरएस ले लिया है और उसके बाद भी मेरे साथ बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल, ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं और इस मेरी यात्रा में मेरे मतलब साथ हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
0: आशा जी, अब एक अहम सवाल। हाँ, आपने खुशियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस फैलाने की आपने कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा से मानती हूँ कि महिलाओं का जो सरनेम है वो है चैलेंज। सो बच्ची से लेकर और एक बुजुर्ग महिला तक हमें बड़े सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।

0: जिंदगी पुरुषों के लिए कम चैलेंजिंग होती है, महिलाओं के लिए ज्यादा होती है। लेकिन हर एरा में ना हमारे चैलेंजेस बदलते रहते हैं। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस प्रकार के चैलेंजेस आजकल की महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी एक्चुअली क्या है कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए जो चैलेंजेस हैं हमारे ज़िंदगी में हमें जो है अवसर लेके आते हैं, तो वो अवसर के रूप में अगर चुनौतियों को स्वीकार किया जाए तो महिलाएं उनसे अपनी यात्रा को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, बौद्धिकता के लेवल पे आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम काजी महिलाएं हैं, जैसे उनका सुरक्षा और उत्पीड़न की समस्या रहती है ऑफिसेज में और सार्वजनिक स्थानों पर, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक रूढ़ियों का, तो जो समाज परिवार उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, तो उनको लेके महिलाएं कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं, वो उनके अपेक्षाओं के नीचे दबकर रह जाती हैं और वास्तव में जो एक स्वतंत्रता जो है उनकी प्रभावित होती है। तो एक नेतृत्व और अवसर उनको अगर मिल जाए तो उच्च पद पर भी वो जा सकती हैं, जो कि कुछ महिलाएं जा भी रही हैं। तो घर का एनवायरनमेंट बहुत जो है मैटर करता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ पाए। तो ऐसा है कि इस तरह की समस्याओं से क्या करते हैं कि गिव अप भी कर देती हैं लेडीज। तो गिव अप करने से क्या होता है, तो प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ही, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगी तो जरूर ही वो जो है विजय हासिल करेंगी, मेरा ये मानना है।
0: बिल्कुल भाई, तो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के साथ साथ आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं। सो फोकस करिए कि आपका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो समाज का माइंडसेट, और अगर हम उसे बदल पाएं, क्योंकि हम उसका आधा हिस्सा तो हैं ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ एक और गाना, और आप अपने प्यारे रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, आज की हमारी गेस्ट हैं आशा गाबा जी, जो एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर रही हैं और मध्यस्थ दर्शन के साथ ये लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। अब मैं बात करती हूँ आजकल के जमाने की फास्ट पेस्ड लाइफ की, रिश्तों की। आप भी मानती हैं आशा जी कि जिंदगी भागदौड़ भरी है और ऐसे में कुछ पीछे छूट रहा है, और सबसे ज्यादा जो पीछे छूट रहा है वो है हमारे रिश्ते। इन्हें कैसे बैलेंस किया जा सकता है?
1: अगर आप कहें तो मैं एक लाइन में यही कहूंगी कि सुविधा संग्रह की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उस सुविधा संग्रह को अगर थोड़ा सा माइन्यूटली देखा जाए तो नीड और डिजायर्स, इनके डिफरेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है। बेसिकली देखा जाए तो नीड्स हमारी 6 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड हैं। तो हम अनलिमिटेड डिजायर्स की तरफ जब भागते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है। बेसिकली हम मुड़ के देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है, क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, फिर होता तो कुछ और ही है।
0: वाकई
1: है ना। तो ये है कि तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स भी उठा सकते हैं, जैसा कि पर्पस क्या है। हमें पर्पसफुल लाइफ अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी कहीं नहीं डगमगाती है, तो ये देखने की जरूरत है। और संवाद की स्थिति बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायलॉग जो है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ फोन, जो गैजेट्स हैं इसमें हम इतने डूबे भीगे घिरे हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। हमारा टाइम रील देखने में ही कितना निकल जाता है। तो ये जो आजकल के मुद्दे हैं उसमें हमें जांचने की जरूरत है कि 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और उस वक्त हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, क्या हमने जो सुबह प्लान बनाया वो सक्सेसफुल करने के लिए हम वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये बहुत बारीकी वाले मुद्दे हैं और इन पर जो है देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि परिवार में मतभेद तो होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो उन मतभेदों को आपसी डिस्कशन से सुलझाया जा सकता है, उसकी तरफ भी बात की जा सकती है। और दूसरा ये है कि सेल्फ केयर, तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं। तो हमारा अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति जो जो हमारे ड्यूटीज हैं, हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, तो हमें ये देखने की जरूरत है क्या हम वो पूरा कर पा रहे हैं। तो हमारे व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जहां तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है, खुद को जांचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच समझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
0: सो दोस्तों, ये जानने की बहुत जरूरत है कि सबसे पहले तो आजकल के जमाने में हम रिश्तों को बैलेंस कर कैसे रहे हैं। मानते तो हैं कि बैलेंस बिगड़ रहा है, पर उस बैलेंस को क्या हम बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी टिप्स दी हैं आशा जी ने, एंड डेफिनेटली अगर इन्हें फॉलो किया जाए और इन्हें असेस किया जाए तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। आज हम आशा जी से ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आशा गाबा जी आज की हमारी गेस्ट हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर हैं। और अब आशा जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में। देखिए भाई, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, सो जेंडर इक्वालिटी की बात तो करनी बहुत जरूरी है। हम ये बात करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है कि दोनों जेंडर बिल्कुल समान होते हैं और उन्हें समानता मिलनी चाहिए, लेकिन समाज में, घर में और सोच में अगर हम देखें तो तीनों जगह ये इक्वालिटी कहीं नहीं मिल रही है। सो ये इक्वालिटी पाई कैसे जा सकती है?
1: खुद पर काम करके।
0: जी,
1: तो मैं तो यही बात कहूंगी कि खुद को जांचने की जरूरत है। एज ए ह्यूमन, एज ए मानव, हमें ये समझने की जरूरत है, खुद की खोज में अगर हम जाएंगे
0: जी,
1: तो हम खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और दूसरों को समझने में भी हम समर्थ हो पाएंगे
0: जी।
1: तो जहां तक इन इक्वलिटी की बात है, वो समाज में है। हमारे भीतर जो एक वातावरण बना हुआ है उसको तो हम समझ ही नहीं पाते। हम बाहरी घटनाओं, बाहरी वातावरण को ठीक करने में लग जाते हैं। चुनौतियां हैं, नो डाउट, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं यहां पर खुद को जांचने की जो बात कह रही हूँ वो आमतौर पर हम नहीं कर पाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम उस उत्पीड़न से, उन घटनाओं से खुद पीड़ित हो रहे हैं, या फिर हम उस उत्पीड़न समस्या से दूर होकर अपने जो पर्पसफुल लाइफ है उस पर फोकस कर रहे हैं। घटनाएं तो आती जाती रहेंगी, घटनाओं के बारे में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बाहर हैं। जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमें सभी समझदार तो मिलेंगे नहीं।
0: वाकई,
1: तो जहां पर हमें अगर ऐसे व्यक्तित्व से टकराव होता है जहां पर कि मन खराब हो, है ना, लैंगिक असमानता तो है ही, जेंडर इक्वालिटी तो है ही। अब लेबर का ही काम कर रहे हैं अगर मेल और फीमेल, तो सैलरी भी डिफरेंट
0: जी,
1: है ना। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है कि हम समाज सुधार के लिए बाद में देखें, पहले खुद को देखें, अपने परिवार को देखें, क्योंकि परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार से ही हम मन से जब खुश होते हैं अपने परिवार में, हम खुद खुश रहते हैं, खुश होके हम काम करते हैं, तो वो खुशी हमारे परिवार तक जाती है और कई घटनाएं जिनको हम एड्रेस ना भी करना चाहें वो अपने आप सुलझ जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम समस्या पर फोकस करें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके हम अगर उन घटनाओं को ठीक करने के लिए कोशिश ना करें पहले, तो सबसे पहले अपने घर परिवार में खुद खुश रहें, परिवार में सब खुशियां बटोरें और खुशियां दें, क्योंकि जितनी हम खुशियां बांटेंगे उतने ही हमारे परिवार वाले खुश रहेंगे।
0: वाकई,
1: है ना।
0: सो भाई, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है एंड आई थिंक आई टोटली अग्री कि जहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम पूरे समाज को बदलें, अगर शुरुआत हम अपने घरों से करते हैं तो डेफिनेटली ये चेंज हम महसूस कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आशा गाबा जी आज हमारे साथ हैं। आशा जी एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट रही हैं, बहुत सारे जीवन को इन्होंने बदलने की कोशिश की है और अब जीवन के इस पड़ाव पर ये मध्यस्थ दर्शन का ना सिर्फ अध्ययन कर रही हैं लेकिन इस पर बेस्ड लोगों की जिंदगियों को बदलने की भी कोशिश कर रही हैं। आशा जी, आज के जमाने में जहां पर हमारे पास इतनी सारी एडवाइस है, ऐसे जीवन में आप मुझे बताइए, आप मध्यस्थ दर्शन के बेसिस पर सभी को क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी?
1: जी, तो सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगी, स्वयं को एक मानव के रूप में पहचाने
0: जी।
1: मन स्वस्थता पर ध्यान दें, शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान दें। 99.9% हमारी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है उसी से हमारी बॉडी और दूसरी चीजें गवर्न होती हैं।
0: yes.
1: तो मेरा ये मानना है कि भ्रम और अंधविश्वास में ना जिए, फैक्ट्स और फिक्शन में अंतर को समझें, बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। 24/7 हम कैसे खुश रह सकते हैं इस पर ध्यान दें। भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता अगर होगी तो वर्तमान से विरोध बना ही रहेगा, इसलिए खुद में उस विरोध को पनपने ना दें और खुद की योग्यता बढ़ाएं, पात्रता बढ़ाएं। सोचना, बोलना और करना तीनों में हार्मनी होनी जरूरी है। इसी हार्मनी से ही हम जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। मन में आवेश, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अगर होंगे, विचारों में हट धर्मिता होगी, अभिमान और अहंकार होगा बुद्धि में, तो हम इन पूर्व स्मृतियों, पूर्व मान्यताओं को देखकर हम जी नहीं पाएंगे। तो समझना क्या है हमें, हमें जागृति पथ पर अग्रसर होना है, भ्रमित मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा और समझदार होने पर ही, समझदार मानव होने पर ही महिलाएं परिवार और समाज में अपनी भागीदारी अच्छे से निभा पाएंगी। कंपटीशन और कंपैरिजन की बजाय कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ें, अपनेपन का विस्तार पर ध्यान दें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वाकई मतलब देखिए ना कि हम जब कभी भी बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं लाइफ अनहैप्पी होती तब है ना जब हम कम्पीट करने लग जाते हैं, जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन ही खत्म कर दें सो ऑटोमेटिकली आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल है और ज्यादा खुश है। तहे दिल से धन्यवाद आशा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, आपका तहे दिल से, और सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, थैंक यू।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: ज्वाला समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला ये मेरा वादा है।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपकी जिंदगी से, और उसी मुद्दे पर हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए तलाशें नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM का हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को जितना बेहतर बना सकें, उसको और ज़्यादा खुशनुमा बना सकें। जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम रेडियो मानव रचना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा उन प्रयासों पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आज हम अपने कार्यक्रम में एक चर्चा करेंगे एक विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारी धन संपत्ति को लेकर के। दोस्तों, आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं पैसे की, तो वो अपने आप में एक कला है, यानी एक आर्ट है पैसा कमाना। लेकिन उसी पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है या उसमें वृद्धि करने के तरीके कौन से होते हैं, वो अपने आप में एक साइंस है, एक टेक्निक है। और उसी टेक्निक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे बेहतर आय तो चाहते हैं, लेकिन उस धन को कैसी समझदारी से, कितनी समझदारी से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज एक खास मेहमान सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग हेड हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सोनम जी के साथ। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं में, वेलकम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।
1: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपने अभी बताया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं, तो वो क्या है कंपनी?
2: तो हमारी कंपनी है मेवेंस कैपिटल, वो बेसिकली नोएडा में बेस्ड आउट है। ये एक बुटीक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, तो हम यहाँ पे HNIs, अल्ट्रा HNIs, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के वेल्थ मैनेज करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरीके से उनको उनका पूरा एक एसेट एलोकेशन होता है, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इस हिसाब से ये हमारा जॉब प्रोफाइल होता है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। मेरा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, क्या मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, तो वो मेरा जॉब प्रोफाइल है यहाँ।
1: तो हम अगर हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएं, यदि हम आज के विषय की बात करें, तो एक आम चर्चा में रहता है कि जब कभी भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं या व्यापार को लेकर के या पैसे को लेकर के बात करते हैं, तो हम केवल बात करते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो आपका वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके बारे में एक चर्चा दिमाग में आती है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। मतलब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए या कोई नया स्टार्टअप कीजिए, तो हर किसी में एक बात आती है कि हमने पैसा कमाया। लेकिन जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? और दूसरी बात ये कि जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम आमतौर पर समझते हैं कि वेल्थ का सीधा सीधा संबंध होता है उन लोगों से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या हम जिनको आमतौर पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति के जो मालिक हैं, उन्हीं को केवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
2: नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में वेल्थ प्लानिंग हर एक बंदे के लिए उतनी ही ज़रूरी है। लोगों को ये लगता होगा, बट आई थिंक वो प्योरली गलत फहमी है। अगर वेल्थ प्लानिंग की बात करें तो सरल भाषा में ये है, आपका आज सुरक्षित करना और आपका आने वाले कल का लक्ष्य को प्राप्त करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप वेल्थ प्लानिंग में आपका, जैसे आज अगर कोई नया बंदा अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे SIPs करें, अपने इंश्योरेंस करें। कंपनीज होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सक्सेशन प्लानिंग करें, एस्टेट प्लानिंग करें। तो ये सब काम जो करना होता है, इसको टोटली वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। एक टाइम पे शायद वेल्थ मैनेजमेंट चॉइस होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरे नज़रे में तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
1: अच्छा, एक बात आप बताइए सोनम, आमतौर पर देखा है हमने बहुत सारा लोग कमाई भी करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस रहता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस अगर आर्थिक तनाव की बात करें तो उसके पीछे का क्या कारण है?
2: ये देखो, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूंगी संदीप जी, तो वो है डिसिप्लिन। आज आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पे भी करिए, एक कॉमन चीज जो हर प्लेटफॉर्म पे रहेगी वो है डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स, जबकि सबसे गलत है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर ये लोग सॉर्ट कर लें कि हम पहले बचाएं और उस बचत में डिसिप्लिन फॉलो करते रहें, तो मुझे लगता है ओवर द टाइम ना, ये जो इनको भी तनाव हो रहा है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके या अपने अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके, वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्विक मनी वाला अगर आपका बिहेवियर होगा तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। आप पैसे शायद बचा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, लेकिन जब हम वेल्थ प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उस चीज में सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा।
1: तो कुल मिलाकर के बात यदि हम करें तो आर्थिक तनाव का जो मुख्य कारण है वो है केवल आपका नजरिया। जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आमतौर पर हम जब सेविंग्स की बात करते हैं तो होती है कि हमारी इनकम और उसमें से जो खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वो हमारी सेविंग है, लेकिन जो नजरिया है वो हमें बदलने की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी में से पहले सेविंग्स को अलग करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और बाकी बचे हुए पैसे को ही खर्च करें, अपनी जो खर्चों की जो भी फहरिस्त है उसको हम इतना मैनेज करके चलें कि हम उसमें उसको पूरा कर पाएं। तो बहुत खूबसूरत बात सोनम जी ने अभी हमें बताई है कि एक डिसिप्लिन जो होता है अपनी आय को लेकर के, वो रखना बहुत जरूरी है यदि आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी संपत्ति के मैनेजमेंट के बारे में, यानी वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जो पसीना बहाकर आप मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं, उसको वृद्धि करने के, उसको बढ़ाने के कौन से उपाय आप अपना सकते हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट सोनम पारिक, जो एक बड़ी कंपनी में रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं। आज हमने सोनम जी से चर्चा की है आपकी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ और सवालों के बारे में उनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे। तो सोनम, आप एक बात बताइए, यदि कोई युवा, यानी हम जेन जी की बात करते हैं, यंगस्टर्स जॉब करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको शायद बचत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रहता है अपनी करंट की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकता है, उनको पूरा करने का। तो क्या नज़रिया उस समय पे युवाओं को अपनाना चाहिए, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई युवा यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करता है अपने करियर की, तो बेसिकली उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए?
1: देखिए, आज पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके कोई जॉब शुरू करता है तो उसका पहला नज़रिया तो यही होता है कि यार थोड़ा अपने पे खर्च कर लें, नई घड़ी ले लें, बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, कहीं घूम आएं। और जो मुझे लगता है ऑनेस्टली कहीं गलत नहीं है, आपने अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन जितना जल्दी शुरू हो जाता है ना, उतना ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि थोड़ा सा ही सही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो SIP होती है, बेस्ट तरीका। तो आपने जो भी आप इनकम कमाते हो, हम टेक्निकली कहते हैं कि उसका 33-35% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो नया नया किसी ने अगर जॉब शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फॉर्मेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 20% से वो एक SIP शुरू कर दे, वो डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे वो अपने इस डिसिप्लिन को, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे।
0: तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप कहीं से भी इनकम की शुरुआत करते हैं किसी भी एक नए वेतन के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपको उसी समय से डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रह सके। और साथ ही साथ एक बात जो समझने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास इतनी बिखरी हुई होती हैं कि वो हमेशा आकर्षित करती हैं, और ख़ासकर हमारे युवाओं को, जो कहीं ना कहीं एक जो EMI का एक फंडा चल पड़ा है कि आप सेविंग्स में रेगुलर पेमेंट देने की बजाय आप कोशिश करते हैं कि आप भविष्य की आवश्यकता की चीज़ें भी करंट में खरीद लें और उसके ऊपर खर्चा करें। तो हमें बचने की ज़रूरत है उन सब बातों से। यदि मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, जैसे मैंने पिछले भाग में आपसे बात की कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा पैसा होता है? तो मैं उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि कोई युवा है, उसने अभी जॉब ज्वाइन की और वो अपना, जैसे कि आपने कहा कि 20% मिनिमम एक सेविंग करना चाहिए, तो मैं अगर इसको फिगर आउट करूँ कि यदि कोई व्यक्ति मात्र 5,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और उसको निवेश करना चाहता है, तो क्या उसको निवेश शुरू करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है SEBI और AMFI, उनका ना पूरा कॉन्सेप्ट यही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके। आज SEBI ने एक मिनिमम 250 रुपये की भी SIP शुरू करवा दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई, आपको अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट महीने दर महीने करना है तो भी आप कर सकते हो।
0: तो ये तो बात हुई SIP और म्यूचुअल फंड की। साथ ही साथ अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीधा सीधा अगर हम लिंक करें इन्वेस्टमेंट से, हमने सेविंग की बात की कि ठीक है पहले हमें सेविंग करना चाहिए, बचे हुए पैसे को खर्च करें,

0: अगर किसी ने एक कंपनी से या एक स्कीम से पैसा कमाया है तो वो भी उसी में डाल देते हैं। इनफैक्ट इसका मैं संदीप जी आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूँगी। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर से हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत रैली देखी है कि प्राइस बहुत ही शॉर्ट अप हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ETF। तो अगर आपको बाय करना है तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF बाय करते हैं। ये कैटेगरी अपने आप में महीने दर महीने 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाती थी। जनवरी में गोल्ड सबसे पीक पे था, ठीक है। उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24,000 करोड़ की हुई है। आज डेट पे जनवरी से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी करेक्ट हो गए। गोल्ड तकरीबन 20 से 24% फॉल ले चुका है और सिल्वर भी लगभग उतना ही फॉल ले चुका है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले महीने मई में उसी फंड में से 3,000 करोड़ निकल गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि किसी ने देखा कि यार गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ था, जनवरी में बहुत रिटर्न मिल गए तो बंदों ने जान में इन्वेस्ट कर दिया।
1: तो यानी लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बजाय लोगों में, जिसको हम आमतौर पर आम भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं, उस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं कि कोई क्या कर रहा है,
0: पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, जबकि वो इकलौता तरीका नहीं होता आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए संदीप जी, तीन चीजें हर एक बंदे को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब मैं रिस्क प्रोफाइल बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स में जो हम पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप शांति से बैठ के वेट करोगे, आप पैनिक करोगे या आप बेच दोगे? ऐसे करके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी करती है, वो क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो, उन जवाब से हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। कि मानो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से 1 साल के लिए पैसा रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए रखना है, 10 साल के लिए रखना है, तो दूसरी चीज आपको जाननी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तीसरी चीज आपका पर्पस क्या है। आज नए युवाओं के लिए शायद पर्पस होगा कि मुझे 2 साल बाद एक यूरोप ट्रिप लेना है, 4 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मिडिल एज वालों के लिए होगा बच्चों की एडुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो तीसरा सवाल होगा पर्पस, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। फिर जाके आता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आज लोग गलती यही कर रहे हैं, वो शुरू ही नीचे से कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में डालें, जबकि पहले समझना होगा ये तीन चीजों का जवाब। जब इन तीन चीजों का आपको जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, आपका एक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाएगा कि उन तीन सवाल के हिसाब से आपको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कितना रखना है और गोल्ड और सिल्वर में कितना रखना है।
1: मतलब अगर हम सीधी बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं क्या। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, उन पैरामीटर्स पे कौन सी चीज फिट बैठती है। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि इस प्रकार का जवाब ढूंढने में आप सक्षम नहीं हैं, वहीं पर काम शुरू होता है किसी वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
0: करेक्ट, एकदम सही।
1: तो साथ ही इस चीज में एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा भारतीय गृहस्थी में महिलाओं का भी पूरा एक रोल रहता है, वो भी एक गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी उनके पास अपनी एक कुछ सेविंग्स होती हैं, उनकी भी भागीदारी काफी हद तक हमारी जो अगर हम वेल्थ की बात करें तो उसमें होती है। तो उनको किस तरह से इस वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए या उनके लिए क्या स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट में?
0: सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात, वुमेन इन्वेस्टर्स ने खूब तरक्की कर ली है इसमें। मैं भी कुछ दिन पहले एक डेटा देख रही थी, तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का AUM है उसका तकरीबन 5-1 लाख करोड़ रुपए वुमेन इन्वेस्टर्स का होता था। दिसंबर 2025 में वो डेटा है 17.5 लाख करोड़ का। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि वुमेन इन्वेस्टर्स और पे और इन्वेस्ट करने लगी है। तो इसमें जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली मैं नोटिस करती हूँ कि वुमेन बहुत क्लियर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना है, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक डिसीजन का पार्ट बनना चाहते हैं। और उससे मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कई जगहों पे आप शायद गलत भी हो जाओ, बट उससे निराश नहीं होना चाहिए।
1: लेकिन एक बात है कि जो उनका दायरा है वो काफी, क्योंकि घरेलू महिला है तो काफी सीमित होता है, तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट या कौन से तरीके उपलब्ध हैं कि वो अपनी जमा की हुई जो सेविंग्स उनके पास रहती है

0: उसको इन्वेस्ट करने के उनके पास कौन से सरलतम उपाय उपलब्ध होते हैं?
1: देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है। आज अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योर्ड, सेफ, थोड़े से बेटर सेफ फंड्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जॉब करने वाले हैं तो वो उस, देखिए फंड्स आप अपेरेंटली सेम ही रहेंगे, आप वुमेन के ले लो, मेन के ले लो, हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हर एक तरीके के प्लान्स हैं आपके पास। अगर आप कहते हो कि मुझे 6 महीने के लिए ही पैसा रखना है, तो उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है, एंड प्लस आपने अभी एक बात बोली कि वुमेन, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली मेजर हाउस मेकर्स ही रही हैं, जो मुझे लगता है वो ये है, वुमेन का ना बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही है, क्या ये सही रहेगा, या अगर उसमें कुछ भी उनको ऊपर नीचे है, तो मुझे लगता है वो शायद कंपैरेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है।
0: बट आज की रेट में ये तरीके बड़े साइंटिफिक हो गए हैं और वेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है यदि हम उन तरीकों को अपनाते हैं। तो अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।
2: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम के आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बचत को निवेश करने के फंडों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, जिसे हम आधुनिक रूप में अगर हम भाषा में नाम बोलें तो वेल्थ मैनेजमेंट का। और हमारे कुछ सवालों का आपको जवाब देने के लिए आई हुई है हमारे पास रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड सोनम पारिक, जो एक कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट पे ही अपनी सलाहों से बहुत से लोगों का पैसा बढ़ाने का या उनको ऐसे नए उपाय सुझाने का, वो साइंटिफिक तरीके से समझाने का काम करती हैं कि जिससे उनका कमाया हुआ पैसा कम समय में ज़्यादा वृद्धि पा सके, यानी ज़्यादा बढ़ सके। तो सोनम, एक बात जो आम तौर पे जब कभी भी हम बात करते हैं फ्यूचर सिक्योर करने की, चाहे कोई युवा है या कोई गृहिणी है या कोई भी है, तो एक थॉट हर किसी के मन में आता है जब वो सेविंग करता है या निवेश करता है, तो दो तरीके दिमाग में चलते हैं। एक तो ये कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आमतौर पर आपने देखा होगा, और एक दूसरा थॉट आता है जब वो अपने लिए बात करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उनका किस तरह से उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं या क्या बेहतर तरीके हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे पाएं या एक आरामदायक जिंदगी वो बिता पाएं रिटायरमेंट के बाद। तो आखिर यदि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो कब रिटायरमेंट का जो थॉट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, या चाहे हम किसी वेतन परस्त व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेसमैन की, तो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो एग्जैक्टली कब शुरू की जानी चाहिए आपकी राय में?
1: ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कहो कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं। आप इनफैक्ट जॉब जब शुरू कर रहे हो, आपकी इनकम शुरू हुई है, आप तब से भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन उन सवालों के जब जवाब देते हो तो तीसरा होता है आपका पर्पस। तो समझिए कि मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे 4 साल बाद घर लेना है, उसके बाद मेरा बट एक रिटायरमेंट प्लान भी मुझे करना है। तो कौन वेल्थ एडवाइजर क्या करते हैं या जनरली लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप एक एसेट एलोकेशन करोगे। उसका क्या मतलब हुआ है कि मेरी इनकम से मैं एक्स अमाउंट बचा सकती हूँ, तो वो एक्स अमाउंट के हिस्से बनेंगे कि एक हिस्सा मैंने रखा है अपने घर खरीदना है उसके लिए, एक हिस्सा मैंने रखा है रिटायरमेंट के लिए। अब क्योंकि मैंने अभी अभी करियर शुरू किया और मेरे रिटायरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, तो मेरे लिए जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। वो शायद एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाऊंगी, थोड़ा स्ट्रांग इक्विटी होगा, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आपका है कि आपको 4-5 साल बाद मुझे घर लेना है, वो पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं उस फंड में लूंगी जो मुझे पता है कि 5 साल में एक एक्स अमाउंट बना के दे सके, ताकि आपके जो भी माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब आप चाहो आप अपना रिटायरमेंट शुरू करो। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है, मेरे जॉब मेरे रिटायर होने में टाइम है, तो अगर मैं समझो 100 रुपये बचा रही हूँ तो उसका मैं शायद सिर्फ 10 रुपये डालूंगी रिटायरमेंट में, 90 कहीं और डालूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं अपना एलोकेशन बढ़ाती रहूंगी।
0: तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो रिटायरमेंट की जो भी योजना है वो किसी भी समय आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो योजना किस प्रकार की होगी, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्थिति के ऊपर कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग क्या है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। किसी के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर प्लान कर रहा होता है, या कोई बहुत आरामदायक जीवन जीना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो आपकी आवश्यकताओं के, आपकी जरूरतों के या आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो एक बात और जो वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के बात आती है दिमाग में जब कभी भी हम सोचते हैं, तो इतनी तरह के लुभावने विज्ञापन आते हैं तरह तरह की, म्यूचुअल फंड में कभी किसी में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं, तो जो बातें हैं उन बातों में एक सबसे ज़्यादा जो आजकल पॉपुलर वर्ड है बहुत आमतौर पर, अभी आपने कई बार हमारी चर्चा में SIP का जिक्र किया म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज के समय में सबसे बड़ा मिथ है क्या, मतलब लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उनमें क्या सबसे बड़ी जो मिथ है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या है?
1: मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों को वो ये है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर एक बंदा कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही दिन के लिए पैसा रखना है, तो म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे 7 से 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं मुझे 2 से 3 महीने रखना है, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स है, लिक्विड प्लस फंड्स है। कोई कहता है मुझे एक साल के लिए रखना है, तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो लोगों का ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मतलब कभी भी गिर सकता है, वो बहुत गलत है। आज आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल फंड का एक्सेस ले सकते हैं। इक्विटी डेट चाहिए, इक्विटी कम डेट ज़्यादा चाहिए, वो हो सकता है। आपको चाहिए इक्विटी कम डेट कम बट उसमें थोड़े कमोडिटीज भी आ जाएँ तो वो भी हो सकता है। प्योर डेट चाहिए वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी ऑप्शंस हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: यानी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बंच है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि वहीं पर कहीं काम शुरू होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट।
0: तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और जानेंगे कि आपके धन की वृद्धि साइंटिफिक तरीके से एक वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अपना करके एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ और फिर हाजिर होते हैं इस चर्चा को जारी रखने के लिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपके पैसे से जुड़ा हुआ, यानी आपकी सेविंग्स को कैसे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। और हमारे बीच आज हमारी खास मेहमान हैं जो रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, सोनम पारिक। आज हमने सोनम से जाना कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेविंग्स है, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मंत्र बताया कि आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि आपको पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स को अलग करना है, बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरतों पर, ना कि ज़रूरतों के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है यदि आप अपने इस नज़रिए को बदलते हैं। और ख़ासकर इस मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है हमारी जेन जी को, हमारे युवाओं को, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो सोनम, आज एक मुद्दा और जो आमतौर पर आप जैसे पूरी चर्चा में हमने बात की, आखिर पैसा हमारा है, हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्यों हमें ज़रूरत है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसा हमारे पास है, हमें पता है कि किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो एक आम आदमी या कोई भी जो व्यक्ति एक बहुत अच्छे पद पर कहीं है या एक बड़ा व्यापार चला रहा है, तो उसे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आखिर चाहिए क्यों?
1: देखिए, सेम वजह है जिसके लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री में। आज करने को, आज तो AI का ज़माना है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूछ के। एंड वैसे भी आज के युवाओं में तो DIY चलता है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले करेगा वो है आपके पास्ट रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पास्ट रिटर्न पे नहीं होता है। आज क्या होता है कि वेल्थ एडवाइजर के पास ना एक्सेस होता है, वो फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो उनकी रिसर्च टीम से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान समझते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर है तब जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप खुद करते हो वो आप पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे करते हो। एक वेल्थ

0: एडवाइजर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बनाता है वो प्रोफाइल। दूसरी चीज आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपका अपना करियर है जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। आज एक वेल्थ एडवाइजर का फुल फ्लेज्ड काम यही है। तो कहीं ना कहीं उनके उनकी हेल्प लेने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि वेल्थ एडवाइजर आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट और बफर बन जाता है। आज हमने देखा है कि कोविड के वक्त, डीमोनेटाइजेशन के वक्त काफ़ी लोगों ने पैनिक में पैसा बेच दिया, अपने फंड्स बेच दिए। यही अगर कोई वेल्थ एडवाइजर होता तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस से या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से आपको हैंडल कर लेता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है ना, वो ऐसे पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज अगर एक वेल्थ एडवाइजर होगा आपके पास तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज पे आप हो, आपने करियर शुरू किया है, आप कॉर्पोरेट हो, आप ग्रो कर चुके हो, आपको एक वेल्थ एडवाइजर बहुत काम आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाने के।
1: यानी अगर हम बात करें तो एक व्यापारी केवल अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी रखता है, या कोई यदि हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजमेंट, जो एक्सपर्ट हम बात करते हैं, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। वो इसी क्षेत्र से संबंधित उत्पाद या आपके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी, तो उनके पास सोर्सेज ज़्यादा तरीके से होते हैं। और एक जैसे हमने शुरू में बात की कार्यक्रम के शुरू में कि पैसे को बढ़ाना अपने आप में एक विज्ञान है, कमाना एक कला हो सकता है लेकिन बढ़ाना विज्ञान है। तो उस विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात, तो आमतौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो एक पहले तरीका होता था कि लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा करके अपने पास घर में रख लेते थे, बैंकों में नहीं जमा कराते थे क्योंकि बैंकों में खाते नहीं होते थे। लेकिन व्यवस्था बदली तो लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि यदि हमें कभी ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम पे तो हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई, कार्ड्स बन गए, डेबिट कार्ड बन गए, एटीएम बन गए कि आप कभी भी पैसा निकाल लो। लेकिन जैसे आज का आधुनिक युग आया, यदि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करके या पैसे को हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करके, क्या ये सुविधा हमारे पास एक आम आदमी के दिमाग में जो थॉट आता है कि यदि पैसे की इमरजेंसी में आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है तो क्या उसमें भी वही सुविधा उनको उपलब्ध होती है कि या इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंस जाते हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए कि उनको पैसा बीच में अगर जरूरत है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा?
0: देखिए क्या होता है ना, हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड बोलते हैं इसको, या लॉक इन पीरियड होता है। हर फंड के जो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे, जो फैक्ट शीट कहते हैं हम, उनमें डेटा हमेशा आता है। तो इक्विटी फंड्स होंगे जिसमें लॉक इन नहीं होगा। लॉक इन मतलब कि आपका पैसा आप निकाल सकते हो, साल भर से पहले अगर आप निकालते हो तो कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो मैं पहले बता रही थी कि जो 1 दिन, 2 महीने, 6 महीने के लिए फंड्स में पैसा रखता है, उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा है ना, ये शायद आपके भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, और म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेल्थ कह लो, इंश्योरेंस कह लो, इनमें ना मिस सेलिंग बहुत होती है। तो क्योंकि आपने अगर किसी से बाय किया है और कोई टारगेट प्रेशर होगा या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको इतने टाइम में चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक 1 पेज में आपको सब साफ दिख जाता है। तो कुछ फंड हैं जिसमें आपको जब चाहिए तब पैसा आएगा। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि ATM कार्ड जैसा नहीं होगा कि आपने आज चाहा और आज पैसा आ जाएगा। मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये है कि आप आज रिडेम्पशन डालते हो तो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और एक आधी स्कीम में ऐसा होगा जहाँ आज रिडेम्पशन डालोगे तो 2 दिन बाद आएगा, बट ये मैक्सिमम है, इतने में आपका पैसा आ जाता है। हाँ, ये नहीं है कि आप चाहो कि तुरंत आए,
1: मतलब लिक्विडिटी जो है वो स्लो नहीं है, बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाता है, क्योंकि यदि आकस्मिक आवश्यकता की बात करें तो उतना फंड तो आप बैंक में भी रख सकते हैं, लेकिन एक सलाह वाली बात है कि यदि आपको पैसे में वृद्धि भी चाहिए और समय पर पैसा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं।
0: देखिए आज ना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का माइंडसेट ही यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीजें आसान बना सके। अब इट्स एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, आप अपने ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आज इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंट बहुत हो गया है। जो पहले होता था कि आपको ब्रांच जाके चीजें करनी पड़ती थी, आज वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे है। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सरल हो गया है, तरीका बहुत सरल हो गया है
1: अगर हम डिजिटल युग की बात करें आज तो बिल्कुल। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी विशेष मेहमान सोनम पारिक के साथ। तो फिर हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के उपायों के ऊपर एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, जो हैं सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड है कंपनी में। और वो आज हमें बता रही हैं कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या और वेल्थ एडवाइजर की या वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। सोनम, एक बात जो मैंने भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कही थी कि पहले एक व्यवस्था थी कि लोग आमतौर पर जो सेविंग होती है, बचत होती है, उसको घर में रखते थे, पैसा संभाल के रख दिया। या बहुत सारे हमने किस्से ऐसे भी सुने हैं कि पैसे को घड़ों के अंदर बढ़ के दबा दिया, सोने के सिक्के दबा दिए, तो एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें तो डिजिटल युग हमारा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है वास्तव में वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, जिस प्रकार की आप जो आपका व्यवसाय जो प्रोफेशन है, वो किस प्रकार से देखता है इस बात को कि हमें ये पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे हमारी देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग तो आपने पैसा बचा करके अपने पास रख लिया तो वो भी सेविंग है, और वो आपने बैंक में अपने अकाउंट में रख लिया वो भी सेविंग है। लेकिन यदि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है हमारे देश की इकोनॉमी में।
1: देखिए, आपने जो कहा कि घर पे पैसा रखते हैं वो भी सेविंग है और जो बैंक में रखते हैं वो भी सेविंग है, एक्चुअली वो नहीं है। देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। सेविंग का मतलब बेसिकली यही है कि आगे चल के जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, मेरा पैसा उसको बीट कर पाए। ठीक है, तो आज अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन अगर 3.5% 4% चल रही है तो मेरा पैसा एटलीस्ट उतना बढ़ना चाहिए, तब वो नॉर्मल पैसा कहलाया जाएगा। तब भी वो रिटर्न नहीं है, राइट? रिटर्न वो होगा जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है,
0: जो उसकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा होगी।
1: एग्जैक्टली। अब आपने घर पे पैसा रखा, आपने साल 5 साल 6 साल रखा, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई, तो आपकी जो वैल्यू थी मनी की वो कम हो गई। और सेम हिसाब चलता है जो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो पैसा वैसे का वैसा ही है, जो ब्याज आता है थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कहीं ज्यादा है। तो हुआ क्या, आपके जो पैसा है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई। इसीलिए आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही इकोनॉमी चलेगी, राइट? ये पूरा एक सर्कल है। आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो चलेंगी, तब हमारा मार्केट चलेगा तो लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा एक विशेष सर्कल है। अगर आपने कंज्यूम ही नहीं किया, आपने स्पेंडिंग नहीं करी, आपने पैसे बचाए नहीं, तो वो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बट थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा अपने अकाउंट में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
0: तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो बचत करना अपने आप में पैसे को अपने पास रखना नहीं है जब तक कि आप उसका इन्वेस्टमेंट ना कर दें। यानी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम बैंक की बात करें या अदर जो कंपनीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में पैसा इन्वाइट करती हैं लोगों का, जब तक उसमें पैसा जा कर के इकोनॉमी में ना जाए तब तक हम उसको एक तरह की सेविंग्स ना माने, ये हमारा थॉट होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और समझने की बात है कि नजरिया हमें बदलना जरूर पड़ेगा कि हम आम तौर पर जो एक मिथ पाल के रखते हैं दिमाग में कि जो पैसे बचेंगे उनको हम इन्वेस्ट करेंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि जो पैसा हमारे पास बचे उसे खर्च करना है। यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो एक बहुत बड़ा थॉट आज के इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में निकल के आया है। तो सोनम, एक बात और मैं जो जानना चाहता हूँ, यदि हम एक समअप करें इस सारी बात को, जिस प्रकार के विचार आपने हमारे सामने रखे, तो निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर या एक वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट होता है वही ऐसे थॉट रख सकता है जिस प्रकार से आपने हमें चीज़ें समझाईं कि क्यों एक वेल्थ एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं तो हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो मानव रचना के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं?
1: देखिए, आज हर कोई, हमारी गवर्नमेंट, हमारे फंड मैनेजर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो कि सही भी है। ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट आप तभी बन पाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आपको ये समझना है, हर एक आपके लिसनर्स को, कि आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी अमाउंट से इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनिए। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, वो कितनी भी छोटी से छोटी अमाउंट हो, लेकिन इस इंडस्ट्री का, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक फ्लेवर लीजिए। जब आप फ्लेवर लेंगे, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेगी, काफ़ी आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, काफ़ी आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे आपके लिसनर्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आइडेंटिफाई करिए आपकी वेल्थ जर्नी क्या है, बट प्लीज़ डू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी किसी भी फॉर्म में। आप एक एडवाइज़र के साथ करना चाहते हो वो भी चलेगा, आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो वो भी चलेगा, बट ट्राई टू रीड मोर, आप सही जगहों से इंफॉर्मेशन लीजिए एंड उस हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए।
0: क्योंकि आमतौर पर हमने देखा जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके बाद फिर एक लाइन आ जाती है कि जोखिम और मार्केट,
1: सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
0: तो उन सब चीजों के बारे में यदि कोई राय कहीं से मिल सकती है तो आपको निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर ही दे सकता है। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमने जाना कि आखिर कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कमाई में से कुछ बचत करके उसको निवेश करना, और साथ ही साथ यदि आप उस निवेश पर एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो निवेश कहीं ना कहीं आपके उन सपनों को पूरा करे, जो सपने मन में लेकर के आपने वो निवेश किया या वो बचत की है, तो आपको एक बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या वेल्थ एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, जो अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसका फ़ायदा आपकी वेल्थ को बढ़ाने में दे सके। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपके पास पैसे का वॉल्यूम कुछ भी है, आपकी बचत का आकार कुछ भी है, लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, आप भी वेल्थ मैनेजमेंट का ही हिस्सा बन सकते हैं। उसमें कोई भी आकार या कोई समय बिल्कुल नहीं होता। हालाँकि जो भी प्रोग्राम आपको चूज करना है, किसी भी चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो आपकी स्थिति के ऊपर, आपके पैसे के आकार के ऊपर कि आप बचत कितनी है, आपकी आयु कितनी है या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज इन सभी सवालों के हमने जवाब जानने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं उनके जवाब आपको आज मिले होंगे। और इस चर्चा ने आज हमें ये भी समझाया कि धन केवल कमाने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की भी आवश्यकता है, यानी केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा और अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सोनम आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में आज इतना ही, अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आती थी और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अवसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता। लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिलाता। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता। पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन

0: तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली और कभी अनजाने में व्यंग करता। अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा।

मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8, मैं हूं दीक्षा आपके साथ और अब मैं लेकर आ गई हूं एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम, एक ऐसी सीरीज जो हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने की एक छोटी सी कोशिश है। इतना खूबसूरत हमारा एनवायरनमेंट, इतना खूबसूरत पर्यावरण, इतनी प्यारी धरती, लेकिन हमने इसकी कद्र नहीं की। इस कार्यक्रम से हम प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण को एक बेहतर स्वरूप दिया जाए। कार्यक्रम का नाम है ग्रीन ग्रह, जिसे सपोर्ट किया है इको क्लब और पीटीसी फाइनेंस ने और साथ ही एसोसिएट किया है डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन ने। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन और पर्यावरण से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर, जिसमें जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट। आज जिन शख्सियत को हम अपने एक्सपर्ट के फॉर्म में लाए हैं, वो इस फरीदाबाद शहर को बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हम आज बात करने वाले हैं पंकज ग्रोवर जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जन कल्याण समिति के, एक अध्यापक भी हैं व साथ ही सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपने पर्यावरण से जुड़े कुछ मुद्दों को हाईलाइट करने की कोशिश हमेशा करते आए हैं। कभी पुस्तकों के माध्यम से, तो कभी आर्टिकल्स के माध्यम से, कभी आरटीआई के माध्यम से, तो कभी वैसे ही लोगों को जागरूक करके सभाओं के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका रेडियो मानव रचना में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, आपने जो खूबसूरत पहल की है ग्रीन ग्रह की, इसके लिए आपका दिल से स्वागत है। और आपने एक ऐसा टॉपिक चुना जिसे अक्सर लोग चुनने से डरते हैं, जिस पे बात नहीं करते।
1: जी पंकज जी, हम सबसे पहले तो, क्योंकि हम ग्रीन ग्रह कार्यक्रम में वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं और एक एपिसोड में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि घर का कूड़ा जो है वो किस तरीके से बायफकेट होना चाहिए, जो कलर कोडिंग होती है वो कलर कोडिंग कैसी होनी चाहिए, ग्रीन ब्लू रेड वाली जो कलर कोडिंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर में ये सेटअप करना बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, इजी प्रोसेस नहीं है। आप हर किसी को बोलें कि इसमें ये डालना है, इसमें ये डालना है, इसमें ये डालना है, तो वो कूड़ा जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं एक दूसरे से। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर या कॉरपोरेट लेवल पर इसको करना ईजी है, जैसे हमने हॉस्पिटल्स में कलर कोडिंग देखी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी पहले तो कि ये वेस्ट सेग्रीगेशन, घरों की बात हम कर चुके हैं, तुरंत आप थोड़ा सा अगर रिपीट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दें, खास तौर पर से जो वेस्ट वाटर होता है उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसे हम अक्सर दूर से देखकर समझते हैं कि कोई बड़ी पहाड़ी आ गई है, बट एक्चुअली में वो कुछ और होता है। वो होता है नजरों का धोखा, जो हमें खूबसूरत पहाड़ लगता है बट होता कुछ और है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले घर के और इंडस्ट्री के वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में बात करते हैं।
2: दीक्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कंफर्टेबल नहीं है घर के लेवल पे कूड़े को सेग्रीगेट करना। पर एक ना सेक्टर 55 के पीछे एक गांव है मुसलमानों का, खंदावली गांव। आज से कुछ साल पहले मैंने वहां जाके खुद शूट किया था। आप यकीन कीजिएगा, वो पूरा गांव मिलके एक पॉली बैग भी वेस्ट जनरेट नहीं करता। उस गांव ने क्या किया हुआ है, उस गांव ने पंचायत ने, सरपंच ने 3 रेड़ियां और 3 लड़के हायर किए हुए हैं, एक में गीला कूड़ा, एक में सूखा कूड़ा और एक में अदर्स वेस्ट। और वहीं गांव के एंड में जहां उनका गांव खत्म होता है, वहां पर उन्होंने एक छोटा सा कमरा बना रखा है काइंड ऑफ, और उसमें छोटे छोटे पार्टीशंस कर रखे हैं। तो लड़के सुबह सुबह जाते हैं, तीनों में अपना कूड़ा भर के लाते हैं, जो गीला वेस्ट होता है उसे वो पशुओं को देने के लिए या खाद बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर सूखे कूड़े को प्लास्टिक को अलग करते हैं, चप्पलों को अलग करते हैं, कपड़े को अलग करते हैं, लोहे को अलग करते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ या 2-3 महीने बाद उस सारे कूड़े को बेच देते हैं। और यकीन मानिएगा, कभी तो 3 महीने में उन्हें सरप्लस होता है और उन लड़कों की सैलरी के बाद भी 2-5 हज़ार रुपए पंचायत को बच जाते हैं। और कभी कभी थोड़ा बहुत डेफिसिट होता है तो 1,000-2,000 रुपए पंचायत को जेब से देने भी पड़ते हैं। पर आप देखिए क्या खूबसूरत पहल है।
1: और ये गांव में किया,
2: एक गांव सेक्टर 55 का पिछड़ा हुआ इलाका, जहां पर अभी बेसिक सुविधाएं भी नहीं है, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, सड़क भी प्रॉपर पक्की नहीं है, वहां पर अगर ये काम हो सकता है तो शहरों में भी हो सकता है। दूसरा, मैं आपको एक जिक्र करूंगा INA सोसाइटी का। दिल्ली में एक सोसाइटी है INA, वहां पर एक सरदार जी हैं, उन्होंने सेम कंसेप्ट यूज किया हुआ है। वो भी इसी तरीके से 3 तरीके से कूड़ों को अलग अलग लेते हैं। मैं नहीं कह रहा आप 4 में 5 में आप उसे बांटिए, ठीक है सरकार की पहले आप वो 5 हिस्से करेंगे तो नथिंग लाइक दैट, पर वो सरदार जी भी यही करते हैं। उन्होंने अपना एक एरिया ले रखा है ऑलमोस्ट 500 गज का, उस 500 गज के एरिया में वो गीले कूड़े को लेके आते हैं, सूखे कूड़े को लेकर आते हैं, देन छोटे छोटे हिस्से में उसको सेग्रीगेट करते हैं। जो गीला कूड़ा होता है, चाय पत्ती होती है, उनसे मुर्गी वाले खरीद के ले जाते हैं, और जो गीला कूड़ा होता है उसको वो खाद बनाने वालों को बेच देते हैं। मतलब वो सरदार जी अपने एक प्लांट से ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक छोटी सी INA सोसाइटी से। एक तीसरी सोसाइटी की मैं आपसे बात करता हूँ, ये तीन जगह मैं आपको वो बता रहा हूँ जब मैं खुद जाके शूट करके आया हूँ, जब मैंने खुद लोगों के इंटरव्यूज किए हैं और चीजों को मैंने देखा है। तीसरा है टाटा परिमंती सोसाइटी गुड़गांव की, जहां पर कई सालों से तीन वेस्ट के डिब्बे आपको दिए जाते हैं, और अगर आपने तीन वेस्ट के डिब्बे में सेग्रीगेशन नहीं किया है तो आपका कूड़ा कोई उठाने ही नहीं आएगा, और अगर आपने मिक्स कर दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी अलग से लगेगी। अच्छा। देखिए, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। लोगों में जो आदत नहीं है, अगर आपको आदत डालनी है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ उन्हें भी देनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो उन्होंने अपने यही एक कूड़ा को खाद में कन्वर्ट करने वाली मशीन बना रखी है, जो खाद में उनके सारे किचन वेस्ट को कन्वर्ट करती है, और वही जो खाद बनती है उसी से वो अपने पूरे एरिया की ग्रीनरी मेंटेन करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो आप सोचिए कितनी खूबसूरत पहल है। और जो बाकी का वेस्ट है जो उन्होंने सूखा दिया, उसको एट द एंड ऑफ द मंथ फिर बेच देते हैं रेवेन्यू जनरेशन। तो जो उनका वो खाद बनाने वाला प्लांट है उसकी कॉस्ट उसी कूड़े को बेच के निकल रही है।
1: बिल्कुल, मतलब आप सिर्फ कूड़ा सेग्रीगेट नहीं करें, आप अर्न भी कर रहे हैं इससे। आपका सिस्टम एकदम सेट हो रहा है। आपको अगर आप कुछ नहीं, अगर मैं कह रही हूँ अगर आप खरीद भी कोई आपसे नहीं रहा है, तो आप वो खाद अपने गार्डन में डाल रहे हैं, इसमें भी आपको ये बचत ये हो रही है कि आपको बाहर से मैन्योर नहीं लेना पड़ रहा है।
2: Exactly.
1: So, एक बेसिक सी चीज है कि आप ये कर सकते हैं और ये इजीली हो सकता है।
2: इनफैक्ट जैसे इलेक्शन के टाइम पे होता है पन्ना प्रमुख होता है, वार्ड प्रमुख होता है, वैसे ही कूड़े के लिए क्यों नहीं हो सकता, क्यों वार्ड लेवल पे सेग्रीगेशन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता मोहल्ले के लेवल पे सेग्रीगेशन, क्यों गली के लेवल पे सेग्रीगेशन नहीं हो सकता। देखिए, जब छोटी से छोटी इकाई सेग्रीगेट करेगी तभी जाके पूरे शहर का कूड़ा अलग अलग बटेगा, तभी जाके उस कूड़े को हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा मिक्स हो गया तो यकीन मानिए वो सूखा कूड़ा भी बेकार है और गीला कूड़ा भी बेकार तो है ही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वो जमीन पर जाता है और फिर धीरे धीरे बन जाता है एक बड़ा पहाड़। और ये कूड़े का पहाड़ क्यों है? क्योंकि हमने अपने लेवल पर इसको सेग्रीगेट नहीं किया। पंकज जी, थोड़ी सी बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की, क्योंकि घरों का कूड़ा तो एक बड़ा मैटर है ही, और बहुत सारे लोग इसको सेग्रीगेट करने के बारे में जानते हैं, कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे आपने सोसाइटीज के बारे में बताया कि ये कोशिश करें। लेकिन अभी बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की। अब इंडस्ट्री को लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है फाइन भी लगाता है, कोशिश करता है। कभी कभी ये कोशिशें कागजी तौर पर होती हैं, कभी कभी ये कोशिशें एक्चुअल जेन्युइन भी होती हैं। लेकिन जैसे ही AQI लेवल जाता है 250 के पार, सबसे पहले इंडस्ट्रीज को कंट्रोल किया जाता है, रोक दिया जाता है, और उनसे कहा जाता है आप सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करें। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री का पोल्यूशन किस किस रूप में पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, ये वेस्ट सिर्फ सॉलिड है, लिक्विड है या गैशियस फॉर्म में है, और ये वेस्ट कंट्रोल करने के नियम क्या होते हैं?
2: मैम, नियम क्या होते हैं ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और नियम जो है सरकारें वक्त और हालात के हिसाब से डिसाइड करती हैं। घरों से बाहर निकलना इल्लीगल हो जाएगा, ये हमने लॉकडाउन से पहले तक सोचा भी नहीं था, तो वो हालात डिसाइड करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके लिए एक मॉडल मैंने सुझाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो आप दूसरे देशों से कॉपी कर सकते हैं, दूसरे देश इस मॉडल को अपना रहे हैं, प्रपोजल फॉर कॉर्पोरेट लेट डिपॉजिट रिटर्न स्कीम। तो इसे लोग पेंट मॉडल बोलते हैं, PANT। इससे एनवायरमेंट में क्या शिफ्ट आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली
1: जी,
2: वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल 10 रुपए की भी बेचती है और 20 रुपए की भी बेचती है। अब 10 रुपए की बॉटल पे आप 1 रुपए का ग्रीन टैक्स लगा दीजिए और 20 रुपए की बॉटल पे आप 2 रुपए का ग्रीन टैक्स लगा दीजिए। द मोमेंट आपका कस्टमर आपको आपकी बॉटल रिटर्न करेगा, आप उस बॉटल को 11 में बेचिए, द मोमेंट आपको कस्टमर ने रिटर्न किया आप कस्टमर को 1 रुपया दे दीजिए। तो पहली बात तो ये हुई कि आपके पास प्लास्टिक वापस आ रहा है। नाउ मेक इट कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी जो जितना वेस्ट जनरेट कर रही है उसको मिनिमम उसका 95% रिसाइकल करना पड़ेगा। अगर वो अपने जनरेट किए वेस्ट का 95% लेके मार्केट से उसको रिसाइकल कर देते हैं तो आप उनका सारा ग्रीन टैक्स माफ कर दीजिए, और अगर वो 85% से कम करते हैं तो आप उनपे 100% पेनल्टी लगाइए। जितना टैक्स है उतनी ही पेनल्टी अलग से, क्योंकि भारत सरकार की अकेले पहल से नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसमें कॉर्पोरेट की इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट जरूरी है। जो लोग 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वो क्या सिर्फ प्लास्टिक से हमारी नदियों को भरने के लिए आए हैं? क्या हमारे जहन में सिर्फ उन्होंने माइक्रो प्लास्टिक भरना है? नहीं, इसका ऑल्टरनेट उन्हें सोचना होगा। या तो वो कोई ऐसी चीज लेके आए जो डिजोल्व हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, एटमॉस्फेयर में हमें कुछ हार्म ना करे,
1: बायोडिग्रेडेबल हो, जो
2: बायोडिग्रेडेबल हो, और एल्स वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर ग्रीन टैक्स लगाया जाए, और ग्रीन टैक्स लगाए बिना कोई ऑप्शन है नहीं। आपको ये पेंट मॉडल सीखना पड़ेगा। बहुत सारे विकसित देशों ने इस मॉडल को अपने यहाँ लगाया हुआ है और उनके यहाँ आप कभी जाएं, आप तो जरूर घूमे होंगे विदेशों में, तो आपने देखा होगा वहाँ की नदियाँ जिन्हें माँ नहीं मानते वो हमारे यहाँ की माओं से बहुत खूबसूरत।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नदियों सिविक सेंस मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक इंसान के लिए कि आप अपना घर तो साफ रख लेते हैं बट आप बाहर जो साफ सफाई है उसके बारे में सोचते ही नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ी होंगी, गाड़ियाँ आजकल बहुत महंगी आती हैं तो गाड़ियाँ तादाद भी बढ़ती जा रही है, यानी लोगों की अफोर्डेबिलिटी है उसको खरीदने की। बट मैं आज भी देखती हूँ कि इन चौड़ी चौड़ी सड़कों से बड़ी गाड़ियाँ लेकर गुजरते हुए जो लोग हैं वो अपने चिप्स का पैकेट, अपनी प्लास्टिक की बॉटल, सब कुछ खिड़की से बाहर फेंकते हुए एक बार भी नहीं सोचते। हालांकि कम हुआ है ये चीज़, पहले तो बस यूं ही सब फेंक देते थे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी गाड़ियों में ऐसे लोगों को कचरा फैलाते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है और जाहिर सी बात है बहुत लोगों ने भी देखा होगा। बट ये सिविक सेंस भी मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है लोगों के दिमाग में आना, इस चीज़ को समझना कि हमको अपने पर्यावरण के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा ना।
2: आप सही कह रहे हैं दीक्षा जी।
1: पंकज जी, जब हम विदेशों में जाते हैं ना तो वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन अपने देश में आके हम भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई आपको बहुत स्ट्रिक्टली लाठी लेकर फाइन करे तब आप सुधरेंगे।
2: नहीं, आपने सही कहा, मैंने इसलिए आपको बोला। देखिए, दो तरीके हैं, प्यार से, डंडे से, लालच से, किसी तरीके से तो आपको सामने वाले को समझाना होगा या डर से समझाना होगा। तो पेंट पॉलिसी हम चिप्स के पैकेट पे क्यों नहीं लगा सकते कि आपको चिप्स का पैकेट अगर वापस करना हो और आपको एक या दो रुपए मिलेंगे तो चिप्स का पैकेट आप किसी गरीब को दान दे देंगे कि बेटा जा दुकान वाले को देके दो रुपए ले आ, आप भी नहीं फेंकेंगे उसे और आप भी बचा लेंगे। और दूसरी बात जो आपने मुझे बोली कि विदेशिया छोड़िए, मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। पता नहीं आपने कभी ईएमयू से ट्रेवल किया है या नहीं।
1: मैंने पंकज जी अपनी कॉलेज लाइफ में ईएमयू से ही ट्रेवल किया है।
2: मैंने भी कॉलेज तक जाने का एक ही मीडियम होता था अपने पास, ईएमयू, तो उस समय कुछ दूसरा था नहीं। तो ईएमयू में जब लोग चढ़ते थे, लोग दूध के डब्बे लेके भी चढ़ते थे, उसमें कीर्तन भी करते थे, छेड़ा छाड़ी भी करते थे, चोरी भी होती थी, पान की पीक भी फेंकते थे, बीड़ी भी पीते थे। वही इंसान जब मेट्रो में चढ़ता है तो अचानक से सुधर जाता है,
1: क्योंकि रूल्स हैं,
2: क्योंकि रूल्स हैं, क्योंकि सिस्टम है। जब कोई सरकार अचानक से आके बोल सकती है आज से भाई से वो बहनों ये 500,000 के नोट नहीं चलेंगे, तो ये भी बोल सकती है कि आज से नहीं चलेगा, आज से पेंट लागू होगा, आज से आपको कूड़ा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होंगे तो जाके चीजें बनेंगी।
1: ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए। शुरुआती दौर में स्ट्रिक्टनेस चाहिए, फिर ये आदत बन जाती है।
2: और शुरुआत में आप उन्हें साथ ही साथ ये रेवेन्यू दीजिए ना, बेनिफिट दीजिए। एक रुपया चिप्स के पैकेट पे अगर आपको मिल रहा है तो आप सोचिए आप चाहे कितने बढ़िया क्यों ना हो, रईस क्यों ना हो, आपके घर में अगर 100 पैकेट आ रहे हैं, 100 पैकेट वापस करने पे अगर आपको 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप उसे कूड़े में क्यों फेंकेंगे। आप उसे दुकानदार को जाके रिटर्न करेंगे और दुकानदार अगर उसको रिटर्न करेगा तो कहीं ना कहीं वो रीसाइकल होगा। तो चीजों को ग्रीन टैक्स लगाना शुरू कीजिए। और ग्रीन टैक्स लगाने का हमारा पर्पस एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट करना नहीं है, कंपनीज को अकाउंटेबल बनाना है कि भैया आपने 1,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, 95% रीसाइकल करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो मर्जी इंडस्ट्री से वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसका बेयर मिनिमम अगर आपने 95% रीसाइकल नहीं किया है तो आपके ऊपर ना सिर्फ 100% ग्रीन टैक्स बल्कि 100% पेनल्टी भी लगेगी।
1: बिल्कुल, ये कोशिश तभी पॉसिबल है जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़े से हार्श कदम तो उठाने पड़ते हैं। पंकज जी, ये तो बात हो गई वेस्ट की जो प्लास्टिक है या वाटर वेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में से केमिकल इतना ज़्यादा निकलता है कि लोग आसपास के एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर ये न्यूज़ भी देखी है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। बिहार के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर पीने लायक पानी तो छोड़िए, वहां रहने लायक हवा भी नहीं बची आज की तारीख में। बहुत सारी जगहों पर ऐसे आपको मिल जाएगा खबरें, बहुत सारी देखेंगे हम गूगल पे चेक करेंगे तो आपको ऐसी अनलिमिटेड खबरें मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको 4-5 खबरों में ख़त्म कर देंगे, अनलिमिटेड आपको न्यूज़ के पेजेस खुलते हुए नजर आएंगे। सो ये वाटर वेस्ट को लेकर क्यों नहीं कदम उठाया जाता, क्यों नहरों में, अब ये जो नहर हमारे यहाँ से आती है ये इतनी पोल्यूटेड क्यों है, क्यों वाटर वेस्ट को लेकर?
2: दो तीन अगर आप मुझे मिनट देंगे तो मैं इस पर थोड़ा गहराई से बात को आपकी डालूंगा। नहर में जो पानी जा रहा है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होते हुए जा रहा है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, फरीदाबाद में जो भी कोई इस रेडियो को सुन रहा है सभी को चुनौती है, आप खुद से आरटीआई लगाएं और आप सरकार से पूछें किसी एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड वो आपको दे दें। बिना सीवेज ट्रीट किए पानी सीधा अगर आप नहर में छोड़ेंगे वो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ तो नहर में जहर ही जाएगा और वो जहर जब खेतों में जाएगा तो आप वही जहरीली सब्जी ही खाएंगे, आप कोई उसमें अमृत नहीं पियेंगे। और आप बात कर रही थी बिहार के पानी की, आप छोड़िए, सेक्टर 58 फरीदाबाद में वहां का इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी क्योंकि कंटेमिनेट कर चुका है ग्राउंड वाटर को, वहां पे ग्राउंड वाटर का पानी पीने से 20 बकरियां मरी हुई मिली थी, अभी तो लास्ट मंथ की न्यूज है। और आप छोड़िए बंदवाड़ी की, अभी हम बात कर रहे थे बंदवाड़ी चंपटियाट के बिल्कुल बैक साइड में अगर आप जाएंगे तो एक्चुअली बंदवाड़ी की ना थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझते हैं। बंदवाड़ी डंपयार्ड बना कैसे, इसे बनाया गया था ग्रीन टू वेस्ट एनर्जी प्लांट के नाम से कि यहाँ पे कूड़ा लाया जाएगा, उससे जलाया जाएगा और उससे बिजली जनरेट होगी। पर कमाल की बात यह है कि इतने सालों में, शायद 12-15 साल हो गए, आज तक एक यूनिट बिजली जनरेट नहीं हुई। अब वो बने कहाँ थे, वो बने थे उन जगह पर जहाँ पर माइनिंग हुई थी, और माइनिंग करने का जो लाइसेंस मिला था इन कंपनीज को मिला था कि आप 30 फुट का पहाड़ तोड़ लीजिए। इन्होंने 30 फुट का ऊपर का तो पहाड़ तोड़ा ही तोड़ा, नीचे 150-200 फुट की तो कोई लिमिट नहीं थी, इन्होंने उसे भी तोड़ दिया। अब वो नीचे 150-200 फुट जब आप जमीन के नीचे जाएंगे तो एक्वीफर पंचर हो जाएंगे, तो एक्वीफर हो गए पंचर। अब कूड़ा ले जाके जब आपने उस पर डंप किया तो एक्वीफर में तो पानी ऊपर आ चुका है, आसपास आपके ऑलरेडी बहुत सारे एनकैचमेंट एरियाज हैं जिसकी वजह से वहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है। तो आपने यहाँ पर कूड़े का पहाड़ 200 फीट तो इसको भरा ही भरा, आपने 50-60 फुट और ऊपर ले गए, आप 100 फुट तो अब ऊपर जा चुका है, शायद उससे भी कहीं
3: ज्यादा होगा मुझे लगता है।
2: और उस पे जब बारिश आती है और लेचेट का पानी निकलता है तो वही वो एक्वीफर में जाके मिलता है, और वही वो एक्वीफर का पानी आसपास के गांव वाले पीते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। आज से 3 साल पहले सूरज कुंड के अंदर मैं एंकरिंग कर रहा था गुजर महोत्सव में, लाखों गुजर आए थे दुनिया के कोने कोने से, पाकिस्तान से भी आए थे, हिंदुस्तान से भी आए थे, जहां कहीं अरावली के साथ साथ गुजर पनपे बड़े हुए समुदाय पूरा जो रहता है सब जगह से गुजर आए। तो वहां पर ना एंकरिंग कर रहा था मैं, और अचानक से अधेड़ उम्र की एक बहन जी आई और आके ना अचानक से रोने लगी। तो मैंने माइक ऑफ किया और मेरे पास अपनी पानी की बॉटल थी, मैंने उन्हें दी, मैंने कहा बहन जी बैठी और पानी पीजिए। तो मेरे को समझ नहीं आई कि मैं एंकरिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास आके क्यों रोने लगी। मैंने उन्हें कुर्सी ऑफर की, बिठाया, पानी पिलाया, मैंने कहा बहन जी क्या हुआ, बोली मेरे ना 4 बच्चे हैं, उनकी ना शादी नहीं हो रही। तो मैं थोड़ा सा ना माइक पीछे करके मुस्कुराने लगा, मुझे लगा अब ये मुझे एंकर समझ के ये बोलने वाली है कि मुझे अनाउंसमेंट करनी है इनके 4 बच्चों और उनके लिए लड़की ढूंढनी है। तो बड़ी अजीब सी बात लगी, पर उनका कहना कुछ और था। उन्होंने कहा मैं बंदवाड़ी गाँव में रहती हूँ और हमारे यहाँ पिंक कलर का पानी आता है, और उन्होंने बोला आज हमारे गाँव में आप हमें एक घर दिखा दीजिए जिसमें 5 मेंबर रहते हो और कम से कम 2 को या तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ना हो या वो कैंसर के पेशेंट ना हो।
3: अच्छा, यानी इतनी गंभीर समस्या हो चुकी है।
2: ये समस्या उस समय इतनी गंभीर थी, अब कितनी गंभीर हो चुकी है आपको ये बताता हूँ। इस रिपोर्ट को मैंने कुछ एक यूनिवर्सिटीज के साथ और इधर उधर जहाँ कहीं हम जा सकते थे फैलाया। तो इस पर जेसी बोस यूनिवर्सिटी ने अपनी एक स्टडी की और उसी बंदवाड़ी के 5 किलोमीटर के रेडियस के 5 गाँव की सिर्फ स्टडी की। स्टडी 5 गांव की इसलिए डेटा सिर्फ 5 गांव का अवेलेबल है, अगर स्टडी 25 गांव की होती तो डेटा 25 गांव का भी अवेलेबल हो जाता। और वो 5 गांव की स्टडी ये बोलती है कि उन 5 गांव का पानी पीने लायक छोड़िए जानवरों के नहाने लायक भी नहीं है। यही पानी की अगर हम बात करें, NIT की बात करें, कहीं की भी बात कर लें, तो आप समझिए जो पानी हम पी रहे हैं, जो हम गंजे हो रहे हैं, जो हम इंटरस्टाइनल प्रॉब्लम हो रही है, जो मल्टीपल इश्यूज हमारे साथ आ रहे हैं,
3: इंटरनल ऑर्गन्स कभी भी फेल हो जाते हैं लोगों की,
2: कभी भी फेल हो जाते हैं, तो ये जो है ये सब पॉल्यूशन की वजह से है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, दीक्षा जी आपकी, मेरी, चलिए हम मान लेते हैं हमारी, कलेक्टिवली ले लेते हैं, पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो सामने आना पड़ेगा।
3: बिल्कुल, मुझे लगता है स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एक रूल सेट करते हैं तो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: जब तक हम सिस्टम पे काम नहीं करेंगे काम नहीं होगा। तो इसका मेरे पास एक सुझाव है और सरकार को सुझाव है कि आप कंपल्सरी कर दीजिए हर सरकारी डिपार्टमेंट में, हर सरकारी ऑफिस में, हर सरकारी एम्प्लॉय के घर पे वहां ना तो RO का प्लांट लगेगा, ना वाटर सॉफ्टनर लगेगा, ना वहां बिस्लेरी या कोई और पानी की बॉटल आएगी। और मैं आपको चुनौती देके कहता हूं अगले 1 साल में फरीदाबाद के हर घर के अंदर सॉफ्टनर का RO वाला पानी आपको मिलेगा। और कभी अगर सीवेज और पानी मिक्स हो जाए तो आप चुनौती देके मुझे बताइएगा। पर कहीं ना कहीं आपको इस पे काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ये रूल लाना पड़ेगा। अब ये चीफ मिनिस्टर ला सकते हैं, मोदी जी ला सकते हैं, और मोदी है तो मुमकिन है।
3: पंकज जी, अब बात करते हैं इस कूड़े के पहाड़ के बारे में जिसके बारे में हम बात करें इतनी देर से, कि ये जो बंदवाड़ी का है, हम बंदवाड़ी वाले की बात करें या ऐसी और
2: बात एक ही है।
3: दिल्ली में थोड़े टाइम पहले ही कैसे ही आप दिल्ली बॉर्डर अगर क्रॉस करके चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी आपको लेफ्ट राइट में ऐसा पहाड़ दिखता था, और हम ये सोचते थे कि ये पहाड़ भी वही सेम है बंदवाड़ी वाला या कुछ और है। तभी जाकर पता चला कि ये अरावली की पहाड़ियाँ नहीं है, ये कूड़े का पहाड़ है। ये बात मैं आज से 10-12 साल पहले की बता रही हूँ। फिर ये पहाड़ इतना बड़ा होता गया कि लोगों को डर लगने लग गया कि आखिर ये कितना खतरा पहुंचा सकता है, और साथ ही इनमें आग भी लग जाती थी। गर्मियां होती हैं, एक्सट्रीम गर्मी दिल्ली एनसीआर में होती है, तो यहाँ पर जो कूड़ा होता है उसमें आग लग जाती है,
2: मीथेन रिलीज होती है,
3: तो आग लगना लाजमी है। अब ऐसी परिस्थिति में कुछ सॉल्यूशन निकाले अधिकारियों ने और मंत्रियों ने, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक गार्डन बना दिया, मतलब ग्रास लगा दी, उसको हरा भरा कर दिया, तो वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, और टू सम एक्सटेंट वो एक कोशिश भी थी कि हाँ इस एटलीस्ट कुछ तो बेहतर हो, क्योंकि जब आप प्लांट लगा देते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक, एक पेड़ या पौधा ही है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो विष का प्याला शंकर जी ने पिया था वो पौधे भी पी लेते हैं, वो प्लांट्स भी पी लेते हैं, वो पेड़ भी पी लेते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो ये कोशिश जो है ये की गई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये कोशिश कारगर है, क्या ये जो आइडिया था ये ठीक है कि इस तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली जो मिट्टी है वो तो दूषित है ना इस पर भी।
2: आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा, मुझे लग रहा था पता नहीं सवाल निकल के आएगा या नहीं आएगा, पर थैंक यू दीक्षा जी आपने सवाल पूछा। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंदौर। इंदौर में ऐसे कूड़े के पहाड़ों के ऊपर ग्रीन बेल्ट बना दी गई। अभी इंदौर की ही स्टडी शो करती है कि वहां 93% पानी कंटेमिनेट हो चुका है, उसकी वजह क्या है,
3: और ये देश का सबसे साफ शहर,
2: देश का सबसे साफ शहर जिसको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं, वहां का 93% पानी प्रदूषित है। प्रदूषित ही नहीं है, कंटेमिनेटेड है, मतलब संक्रमित है, आपको बीमारियां हो सकती हैं वहां का पानी पीने से। अब है क्या जी, आप फरीदाबाद का भी जो हमारा पहाड़ है जिसके भी आप बात कर रहे थे, तो देखिए जिसको आइडिया नहीं मिल रहा इसको क्या करना है, उसको अपनी जान बचाने के लिए कूड़े को कहीं ना कहीं सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, किसानों को कूड़ा दे रहे हैं, उन लोगों को कूड़ा दे रहे हैं जिन्होंने अपने घर को ऊंचा करना है, कि चलो आप इसे घर में मलबे के तौर पर दबा लो और अपना घर ऊंचा कर लो, पर आप सोचिए जब बारिश होगी तो क्या होगा, यहीं से पानी रिसके वापस
3: नीचे
2: कंटेमिनेट करेगा। अभी जो हाल बंदवाड़ी के 5 स्क्वायर किलोमीटर में हुआ, यही कूड़ा जब पाली में आएगा तो पाली के 3-5 स्क्वायर किलोमीटर में होगा, यही कूड़ा जब आपकी यूनिवर्सिटी के पड़ोस में आएगा तो यहाँ का पानी प्रदूषित करेगा, तो
3: जहां भी जाएगा अपने साथ वो प्रदूषण
2: बीमारियां लेके जाएगा, संक्रमण लेके जाएगा। तो बीमारियां और संक्रमण जब साथ साथ चलेंगे तो पानी कैसे साफ होगा। तो वही दिल्ली में हालात हुए। देखिए कूड़े को निपटाने का एक ही तरीका है कि आप उसे सेग्रीगेट करें तो रिसाइकल होगा, अगर आपने सेग्रीगेट ही नहीं किया तो रिसाइकल नहीं हो सकता। इसके लिए पेंट लाना जरूरी है, इसके लिए कॉर्पोरेट को बाउंड करना जरूरी है, भैया अपना कूड़ा खुद निपटाओ,
3: अपना कूड़ा जिसने जनरेट किया वो इसका सॉल्यूशन निकाले,
2: खुद निकाले, आप नहीं निकालोगे। आपने फ्लेक्स लगाई, फ्लेक्स किसने बेची आपको, जिसने बेची वो डिसाइड करेगा 95% फ्लेक्स कैसे डिस्पोज ऑफ होगी, और अगर उसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो उसको फ्लेक्स बेचने का लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए। जिसके पास प्लास्टिक की बॉटल को रिसाइकल करने का प्लांट नहीं है उसको प्लास्टिक की बॉटल बेचने का, आप दूसरे देश में जाइए, किसी भी देश में जाइए, यूरोप में जाइए, जर्मनी में जाइए। मैं तो जर्मनी में अक्सर, मेरा एक फ्रेंड है वो मर्सिडीज में R&D हेड है, वो मुझे बताता है कि भाई हमारे यहाँ कोई चीज बनती है ना, अगर ये मोबाइल बन रहा है, पानी की बोतल बन रही है, माइक बन रहा है, पेन बन रहा है, तो इसकी बनाने की परमिशन तब हमें मिलती है जब वो पहले पूछते हैं बताओ आज से 100 साल बाद इस पेन का क्या होगा, 100 साल बाद क्या ये संक्रमण फैला रहा होगा या ये कहीं अर्थ में जाके किसी बीज में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो अगर हम उसका सही से जवाब दे पाते हैं तो हमें परमिशन मिलती है उस चीज को बनाने की। यही फिलॉसफी, यही आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं हमें हिंदुस्तान में लाने की जरूरत है, ये बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। और मैं CSICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने सिलेबस में फॉर द फर्स्ट टाइम एनवायरमेंट के ऊपर एक फुल फ्लेज्ड चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है। वाद संवाद तो शुरू हुआ, आज अगर रेडियो मानव रचना इस बारे में डिस्कशन कर रहा है, आज अगर ICSI को अपना एक पूरा फुल फ्लेज्ड 25 पेज का चैप्टर देना पड़ा है इसके ऊपर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट पे बात करने वालों की जीत है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, और आप एनवायरमेंट पे काफ़ी काम कर रहे हैं ये हमने देखा है, और हमारा प्रयास भी यही रहता है कि हम थोड़ी सी अपनी बातों के जरिए ही बदलाव ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं हमारे प्रोग्राम से, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कमर्शियल बहुत एक्टिविटीज़ अब होने लग गए हैं, विच आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इलीगल। आप उनको ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर लाइसेंस से चल रही हैं या ये कमर्शियल बिल्डिंग है, लोगों ने अपने घर में दुकानें रेंट पे दे दी हैं, अब वो जो छोटे छोटे कैफेज खुल गए हैं वो कूड़ा करते हैं और कूड़ा उन्हीं के घर के बाहर छोड़ जाते हैं, रात को गाड़ी आती है ले जाती है, बट वो सेग्रीगेटेड नहीं होता। तो पंकज जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अब ये जो सेग्रीगेशन का सोल्यूशन है वो घर कैसे निकालें, मतलब 4 डस्टबिन हर घर में नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिकली हमें समझ लेना चाहिए, पर गीला सूखा में कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए, ताकि हम अपने लेवल पर कोशिश करें और ये बंदवाड़ी जैसे और नए पहाड़ ना आ पाए।
2: देखिए सिंपल है, गीला कूड़ा आपका जितना भी है आप कोशिश कीजिए, इंटरनेट पे जाइए, वीडियोस निकालिए, नहीं तो मानव रचना अपने एंड पे बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर वो सिखाता है कि गीले कूड़े से आप खाद को कैसे बना सकते हैं। आप मानव रचना के उन प्रोग्राम्स को, आरडब्ल्यूएस की उन मीटिंग्स को अटेंड कीजिए, आप सीख जाएंगे गीले कूड़े से खाद कैसे बनती है, तो आपका कूड़ा आप ही के काम आ जाएगा। और रही बात सूखे कूड़े की, तो मेरी मामी जी, मुझे याद पड़ता है जब वो जिंदा थी 2018 तक, आई गेस 2018 में ही वो एक्सपायर हुए हैं, आज से कुछ 7-8 साल पहले, जब तक वो अलाइव थे हमारे घर का सारा सूखा कूड़ा वो अपने पास इकट्ठा करके रखते थे 1-1.5 साल तक, और 1-1.5 साल बाद जब वो उसे बेचते थे तो 7-8 हज़ार रुपये उन्हें कमाई होती थी। पेंट स्कीम लाने का फायदा क्या होगा, अगर किसी कॉर्पोरेट को लग रहा है भाई ये रैपर तो रिसाइकल नहीं हो सकता, आपको लगता है वो प्रोड्यूस करेगा?
3: बिल्कुल,
2: वो उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन लेके आएगा, वो चीज लाएगा ही नहीं जिसको खुद रिसाइकल नहीं कर सकता। आज उसे परवाह क्यों नहीं है, उसे अपना प्रॉफिट दिख रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी उसकी इंक्रीज होती जा रही है। एनवायरमेंट के ऊपर जितने भी लोग काम करने वाले हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर मैंने एक आरटीआई लगाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी।
3: पंकज जी मैं एक चीज यहाँ पर आपसे जानना चाहती हूँ, सिंगल यूज प्लास्टिक टेक्निकली बैन है इंडिया में?
2: टेक्निकली बैन इंडिया में है सिंगल यूज प्लास्टिक, एक पर्टिकुलर माइक्रोन से अगर आप कम का यूज करते हैं तो वो बैन
3: है। जैसे हाँ। हम बहुत बार देखते हैं कि हमें जो सब्जी मिल रही है या मार्केट से कुछ खरीद रहे हैं वो नीली थैली,
2: जो कलरफुल नीली पीली हरी थैली होती है, वो रिसाइकल प्लास्टिक होता है और वो वर्जिन प्लास्टिक नहीं होता, तो वो थैलियाँ बैन है,
3: वो एब्सोल्युटली
2: बैन है।
3: और जो व्हाइट वाली थैली होती है वो भी बैन है, जो
2: उसमें जिसपे लिखा होता है मैं इतने माइक्रोन की हूँ और मैं प्लास्टिक नहीं हूँ, वो बैन नहीं है।
3: अच्छा, लेकिन जो प्लास्टिक की होती है सिंपल सफेद थैली जो आती है एक प्लास्टिक, हाँ, वो बैन है,
2: वो माइक्रोन्स का हिसाब है, मुझे माइक्रोन याद नहीं आ रहे, शायद 100 माइक्रोन है, 100 माइक्रोन से ऊपर की पॉलिथीन आप रिसाइकिल होती है तो आप बेच सकते हैं 100 माइक्रोन से।
3: बहुत सारे लोगों ने कपड़े की आजकल बना के बेचने शुरू कर दिए, कोई एक मटेरियल होता है जो बाद में फट जाता है और ऐसे ही जमीन में चला जाता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो पंकज जी अब बहुत सी बातें करने के बाद टाइम हमारा इजाजत लेने का हो गया, पर मैं आपसे सिर्फ 5 टिप्स एक आम इंसान के लिए, एक घर के लिए, कि वो किस तरीके से पॉल्यूशन को कम करने में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
2: तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए पॉल्यूशन होता क्या है, कार्बन एमिशन क्या है। कार्बन इज नथिंग बट कंजम्पशन, आप चाहे सांस ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, पानी कंज्यूम कर रहे हैं, एनीथिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग, आपके कपड़े, आपके हेयर कलर, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, जो भी कुछ आप दिन भर में कंज्यूम करते हैं वो कार्बन एमिट करता है। तो सबसे पहले जो टिप है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, घरों से प्लीज सिंगल यूज चीजें निकालिए, रखनी है तो वो चीजें रखिए जो रीयूजेबल हैं। बर्तन क्या आप घर में प्लास्टिक वाले इस्तेमाल करते हैं, क्या प्लास्टिक की चम्मच इस्तेमाल करते हैं, मेहमान आता है तो क्या आप उसे प्लास्टिक की चम्मच सर्व करते हैं? द आंसर इज नो, है ना, वो एटिकेट्स भी नहीं हम लोगों की। तो अगर हम किसी को अपना मान रहे कि हमारा मेहमान है, ये हमारे गुरु के दरबार में आया है या हमारे भगवान के दरबार में आया है, तो भगवान के दरबार में आए हुए का जो लेवल है वो भी तो भगवान के बराबर का हुआ ना, तो कहीं ना कहीं उसे भी हम बर्तन बैंक बना के उन चीजों में खाने को
3: रीयूजेबल
2: चीजों का इस्तेमाल करें। सबसे पहली जो घर वालों को मैं बोलूंगा कि आप घर से सिंगल यूज की चीजें हटा दें, रीयूजेबल चीजें ही इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ जितना कम हो सके टिश्यू पेपर का इस्तेमाल मत कीजिए। जितना पानी टिश्यू पेपर को बनाने में लगता है उससे कम पानी में आपका रुमाल धुल जाएगा, इस्तेमाल कीजिए, आदत डालिए, पानी की बॉटल अपने साथ खुद की अपनी कैरी कर लीजिए इंस्टेड प्लास्टिक की यूज करने के। और प्लीज किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वो अगर आपको आरओ पानी सर्व करने से मना कर दे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप उठ के चले आइए,
3: मतलब बॉटल ना खरीदें, इंस्टेड आप आरओ वाटर का इस्तेमाल।
2: सिंपल सी बात है ना, देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में कोई भी आपके घर पे आता है आप उसे पानी पिलाते हैं, लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट वाला आपको पानी पिलाने से भी मना कर रहा है और बोल रहा है नहीं मेरे पैसे की कमाई करवाओ, तो इसका मतलब वो मेहमान नवाजी तो नहीं कर रहा, आप वहां से शांति से उठ, प्योर बिजनेस है और एनवायरमेंट को तो कहीं ना कहीं नुकसान हो ही रहा है। तीसरा, जो आपके घर का सूखा वेस्ट है आप उसे इकट्ठा कीजिए, आप उसे गीले वेस्ट के साथ डंप मत कीजिए। आपके घर
3: वेस्ट में मैं चाहूंगी आप एक बार बता दें,
2: गत्ते के डिब्बे जैसे अमेजन से आए, फ्लिपकार्ट से आए, आपने जो भी कुछ सामान मंगाया उसको आप अलग करते जाएं, कागज भी आते हैं, रैपिंग आती है, उन सब वो सब चीजें बिकती हैं, आप उन्हें इकट्ठा कर लें, एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप उन्हें बेचेंगे 2-3 महीने बाद थोड़ा सा घर में एक जगह बना लीजिए इनके लिए भी, चाहे गीले ना हो, क्योंकि गीले हो गए तो बिकेंगे नहीं, वेस्ट हो जाएंगे। आप प्लास्टिक इकट्ठा कर लीजिए, जूते भी पुराने बिकते हैं, और नहीं बिकते तो किसी को दान कर दीजिए, आपके लिए जो वेस्ट है वो शायद किसी के लिए गोल्ड हो।
3: बिल्कुल, जरूरत होती है,
2: जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है, मतलब मुझे तो याद पड़ता है कि एक कोट पैंट था जो मेरे पिताजी ने डाला, फिर मेरे चाचा ने डाला, फिर मैंने डाला और मेरे भाई ने भी डाला, तो एक जमाना था वो था कि हम घर में ही चार चार जनरेशन उसी एक चीज को डाल रही हैं, और आज हम वो सब चीजें भूल ही चुके हैं कि यार ऐसा भी कुछ होता है, ये तो मैंने पिछली शादी में डाल लिया था, अब मैं क्यों डालूं। अरे नहीं नहीं नहीं, जरूरतें कम से कम रखो और जमीर में दम रखो, जो मूवी का एक डायलॉग है। तो चीजें एनवायरमेंट को अपने आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और दो मैं आपको एप्लीकेशंस बताता हूं, एक तो है ई समाधान, आप डाउनलोड कीजिए, आपकी मैक्सिमम सिविक प्रॉब्लम्स इस पर सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आपके अकेले के डालने से सिविक प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व नहीं हो रही, आपके यहाँ मलबे का ढेर पड़ा है
3: और ये सारे
2: तो चार पांच दस लोग मिलकर कंप्लेन कर दीजिए, वेरी नेक्स्ट डे इस पे काम होगा। आप महारी
3: ये भारत सरकार की है,
2: ये हरियाणा की है,
3: ओके स्टेट गवर्नमेंट के,
2: ई समाधान
3: ओके।
2: एक है महारी सड़क, MHARI महारी सड़क, आपको जहां सड़क टूटी हुई मिले पूरे हरियाणा में, आप सिर्फ उस लोकेशन पे जाएं, फोटो क्लिक करें और अपलोड कर दें, 15 दिन के अंदर आपको सड़क बनी हुई मिलेगी। पूरी प्राणायाम सोसाइटी में शिफ्ट होने से पहले वहां पर ए और डी ब्लॉक के बीच की सड़क टूटी हुई थी, डेट शायद मुझे याद है सही सही तो 23 तारीख थी जब मैंने कंप्लेंट डाली थी, या 17 तारीख थी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, और मैंने लेटर भी मेल भी कर दिया साथ साथ फॉरवर्ड। यकीन मानिएगा दीक्षा जी, सेकेंड डे आके वहां पर सीमेंटेड सड़क बनना शुरू हो गई, और नहर पार की पहली सीमेंटेड सड़क बनी। तो सरकार भी ऐसा नहीं है काम नहीं कर रही, सरकार ने आपको टूल्स दिए हैं, आपको टूल्स
3: हमें पता नहीं है,
2: यूज करने आने चाहिए,
3: अंदाजा नहीं है कि क्या।
2: ई समाधान आपकी कहां हेल्प करेगा, आपके आसपास जहां मलबा इकट्ठा है, जहां आपके आसपास कूड़े के ढेर लगे हैं, आप इन पे पिक्स क्लिक करके डालिए, और सरकारों को लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि पड़ोसी मेरा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, लिखने में क्यों डर रहे हो, पहले तो आप पड़ोसी से बात करो, पड़ोसी नहीं मान रहा सरकार से बात करो। और इस सरकार में कभी भी लेटर आप किसी एक को मत लिखिए, आप नीचे से लेके ऊपर तक 6-7-8 मेल आईडी निकालिए और सबको एक साथ मार्क कीजिए सीसी करते हुए, ताकि अगर कोई एक बंदा उसे इग्नोर भी कर रहा है तो ऊपर से फाइल फिर से चलती है उनके पास आए, और जब 4-5 बार फाइल मार्क होते हैं उनके पास आती है तो अल्टीमेटली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड होता है, उसके ऊपर काम होता है। 1-2 की चौक से 2-3 की चौक तक जो सड़क पहले 22 फुट की थी अब 45 फुट की जा रही है, जन कल्याण समिति का योगदान है, उनके लेटर से काम हुआ है, अनगिनत काम जो हमारे लेटर से हो सकते हैं हम करते हैं। एक तीसरी ऐप है जी फरीदाबाद 311, MCF 311 या फरीदाबाद 311 की ऐप है, आपको MCF से रिलेटेड जितनी दिक्कत है आप इस पे डालिए।
3: अच्छा,
2: MCF वाले इससे नहीं मान रहे तो MCF के साथ साथ ई समाधान पे भी डाल दीजिए।
3: अच्छा,
2: आपकी प्रॉब्लम
3: मतलब आपकी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करानी जरूरी है।
2: आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप मम्मी को बताएंगे नहीं, मम्मी दवाई कैसे देगी, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ को पता कैसे लेगा उसे भूख लगी है, खाना कैसे खिलाएगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जहां हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की थोड़ी सी जरूरत है। ये सब हम कर लें तो लगता है हम कलेक्टिवली मिलके एक अच्छा हिंदुस्तान
3: कुछ सोल्यूशन तो ढूंढ ही पाएंगे,
2: कुछ तो कर ही लेंगे।
3: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें पंकज जी आपने शेयर करी हमारे श्रोताओं के साथ, और उम्मीद है जो भी लोग सुन रहे हैं वो कुछ तो बदलाव अपने जीवन में लाएंगे और बंदवाड़ी जैसा एक बड़ा पहाड़ और बनने से बच जाएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने।
2: थैंक यू सो मच दीक्षा जी।
3: तो प्रोग्राम ग्रीन ग्रह जिसे सपोर्ट किया है PTC फाइनेंस ने इन एसोसिएशन विद डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन एंड इको क्लब, हमने बहुत सी बातें करी कि वेस्ट सेग्रीगेशन किस तरीके से होना चाहिए और नहीं होता है तो क्या क्या रिपरकशंस होते हैं, इसके क्या क्या नेगेटिव प्रभाव होते हैं जो हमने देखे हैं। कहीं किसी गांव का पानी खराब हो रहा है, पीने लायक नहीं है, जानवर मर रहे हैं, तो कहीं पर पानी ऐसा आ रहा है आपके नलों में कि कोई भी वहां पर रहने को तैयार नहीं है। कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ जिनको आप अरावली के समझ रहे थे वो अरावली नहीं है, वो हमारे और आपके घर से निकलने वाला कूड़ा जो बरसों से निकलता आ रहा है लेकिन सेग्रीगेट नहीं हो रहा है, ये उसका रिजल्ट है। इसलिए कोशिश अपने लेवल पर कीजिए ताकि आप इस तरीके की किसी भी खराब चीज या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज या इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज को जड़ से ही खत्म कर दें। और बहुत सारी बातें आज हमने करी हैं इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट पंकज ग्रोवर जी के साथ, जो कि एक अध्यापक तो हैं ही साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जन कल्याण समिति के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उम्मीद है कुछ बेहतर कोशिश करके हम कुछ बेहतर समाज बना पाएंगे। फिलहाल आज बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम है हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी कि ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उतक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें सही जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये सब बताते हैं। अगर आप में से किसी को भी अंग दान और देह दान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जा सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-120-3648 के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करके हमें बेहद खुशी होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो आप सभी को अंग दान जो है ऑर्गन डोनेशन, देहदान यानी बॉडी डोनेशन और उतक दान टिश्यू डोनेशन के बारे में जानकारी देना तथा समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टरों, अंगदान से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे और अंगदाताओं की कहानियां, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण की जानकारी और आपको इन विषयों को क्यों जानना चाहिए, ये सब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ है सुनैना सिंह, जो है ऑर्गन इंडिया की CEO। Over to you, सुनैना।
1: थैंक यू पायल। आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, डॉक्टर शीतल जोशी। डॉक्टर जोशी दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आज वो हमें देह दान यानी बॉडी डोनेशन के बारे में बताएंगी। डॉक्टर जोशी, हमारे सुनने वालों के लिए वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सुनैना। हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है कि हम ऑर्गन इंडिया के साथ जुड़ के आज के अभियान में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं।
1: सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि देहदान क्या होता है।
2: आपका ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि जब हम किसी भी अभियान में जाते हैं, ज़्यादातर टाइम लोगों के बारे में जब लोग हमें सवाल पूछते हैं कि देहदान क्या है, लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि देहदान यानी किसी अंग का दान है। सबसे पहले ये धारणा आपको क्लियर करनी है कि देहदान मतलब पूरे बॉडी का दान करना। अंगदान इससे अलग है। अंगदान में एक अवयव का दान होता है, वो बिल्कुल इससे परे है। देहदान में जब आप पूरा देह किसी को डोनेट करते हैं, यानी एक मेडिकल कॉलेज को डोनेट करते हैं, उसका उपयोग पूरी तरह से सिर्फ शैक्षणिक कार्यों के लिए और रिसर्च के लिए किया जाता है।
1: नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे देश में देहदान कितना होता है? क्या भारत में पढ़ाई या रिसर्च के लिए बॉडीज की कोई कमी है मेडिकल कॉलेजेस में, और इसके बारे में लोगों को जागरूक करना क्यों जरूरी है?
2: जैसे कि आप जानती हैं कि भारत में पॉपुलेशन किसी बड़े शहरों में ज़्यादा है, गाँव में कम है, और मेडिकल कॉलेजेस की भी संख्या किन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में है ही नहीं। तो जब मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं तो इंडिया को सबसे बड़ा हब माना जाता है, जहाँ पे हम नए नए डॉक्टर्स रोज बना रहे हैं। इन डॉक्टर्स को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो देहदान का होता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग में हर 10 मेडिकल स्टूडेंट्स को जब ग्रेजुएट होते हैं तो उन्हें एक बॉडी पे काम करना पड़ता है। इसके वजह से देहदान की जागरूकता होना बहुत ही अहम है। अगर ये नहीं होती तो इनके ट्रेनिंग में भी उतनी ही रुकावटें आती हैं, चाहे फिर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग हो या उसके बाद जब सर्जन्स की भी ट्रेनिंग की बात आती है तो वो भी देह पे पहले काम करते हैं। इसलिए देहदान की ज़रूरत हमेशा ही भारत में ज़्यादा होने वाली है।
1: क्या भारत में देह की कोई बॉडीज की कोई कमी है मेडिकल कॉलेजेस में?
2: देहदान की कमी कहने से ज़्यादा हमें अभी हम सोचते हैं कि चलो मेडिकल कॉलेज है, उन्हें लावारिस बॉडीज मिलती होंगे, लेकिन ये भी धारणा गलत है, क्योंकि लावारिस बॉडी को अगर हम लेते हैं काम के लिए तो वो उतने हिसाब से नहीं रखी जाती, जब क्योंकि उसका एक अलग प्रोसीजर है कि पुलिस से क्लियरेंस मिलने में टाइम जाता है। लावारिस बॉडी बहुत सारे ऐसे बीमारियों से भी लोग गए होते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, तो जब हम डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं हम नहीं चाहते कि उनकी भी जीवन पे कोई आ जाए जब ऐसे बॉडीज पे वो काम करें। इसलिए देहदान जब एक एजुकेटेड

0: पे ऑर्गन इंडिया पे एक बॉडी डोनेशन ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाई है, जो आप जानते हैं कि 2 साल पहले लॉन्च हुई थी। तो वहाँ पे पूरी मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट है भारत में, जहाँ पे आप देदान कर सकते हैं। तो लेकिन इस फिर भी लोग पूछते हैं कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा बताएंगे कि कौन कौन कर सकता है और यू नो किस सिचुएशन में लोग कर सकते हैं।
1: अभी जब देहदान के लिए आप अगर निश्चय कर चुके हैं, तो सबसे पहली बात हमें जब पूछा जाता है कि हम क्या करें, तो हम यही कहते हैं कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप अपना प्रतिज्ञा पत्र भरिए। लेकिन प्रतिज्ञा पत्र भरना आपको यह आसान भी लगता होगा, लेकिन उसके साथ 2 विटनेसेस की हम ज़रूर पेशकश होती है, क्योंकि आपके फैमिली को उसको सपोर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और प्रतिज्ञा पत्र भर रहे हैं, तो आपके फैमिली ने से 2 नियर रिलेटिव्स उसको साइन करेंगे, क्योंकि देहदान तभी हो पाता है जब आपका परिवार हाँ कहता है। आपके अकेले प्रतिज्ञा पत्र भरने से उससे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि अगर आपकी फैमिली को मालूम नहीं है, तो आप जाने के बाद उनको अगर आपकी इच्छाएं मालूम नहीं है, तो वो इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, प्रतिज्ञा पत्र भरिए और अपने फैमिली को इस आपके डिसीजन में शामिल कीजिए।
0: और ये प्रतिज्ञा पत्र उनको कहाँ मिलेगा?
1: प्रतिज्ञा पत्र भरने के लिए आपके नज़दीकी किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप अप्रोच कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, या फिर इसको शरीर रचना शास्त्र विभाग भी कहा जाता है। यहाँ आपको वो फॉर्म मिलेगा, आप इस फॉर्म को भर के, और अगर आपकी कोई कठिनाई ऐसी भी है कि आपने फॉर्म भर दिया और फिर आपने मन बदल लिया, तो इसके लिए भी आपको सिर्फ एक लेटर लिख के देना होता है उस मेडिकल कॉलेज को कि आपने अपना डिसीजन विड्रॉ कर लिया है। इसलिए प्रतिज्ञा पत्र भरना हम यही कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी फैमिली, आप अपने मुंह से भी कह दे कि मुझे देहदान करना है, ये अगर आपके आखिरी शब्द है और आपकी फैमिली उसमें एग्री करते हैं, तो आपने प्रतिज्ञा पत्र भरना भी नहीं होगा। लेकिन आपकी फैमिली उसको ऑनर करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है, आप देहदानी हो सकते हैं।
0: तो डॉक्टर जोशी, अगर मेरी इच्छा है कि मैं देहदान और अंगदान दोनों के फॉर्म भरूं, प्लेज फॉर्म, तो क्या ये हम कर सकते हैं कि नहीं?
1: ये एक बहुत ही अहम प्रश्न आता है कि जब मैं अंगदान करना चाहती हूँ या मैं देहदान करना चाहती हूँ, दोनों में ही फैमिली की इच्छा शक्ति तो होती ही है, लेकिन उसके साथ अगर आप सिर्फ अंगदान करना चाहते हैं तो उसका फॉर्म भरिए, देहदान अगर सिर्फ करना चाहते हैं तो देहदान, लेकिन अगर आप दोनों की इच्छा रखती है तो आपको दोनों फॉर्म भरने की ज़रूर आज्ञा है। लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देहदान आपकी जिस टाइप की डेथ होती है वही डिसाइड करता है कि आप किस टाइप की दाता बन सकती हैं। अगर आप देहदान, अगर आपका नेचुरल डेथ है तो ही फिर आपका देहदान हो पाएगा, और अगर आपकी ब्रेन स्टेम डेथ से मृत्यु हो जाती है तो आप अंगदान कर सकते हैं। तो मृत्यु ही डिसाइड करती है कि आप किस प्रकार का डोनेशन आगे जाके कर पाएंगे।
0: तो डॉक्टर जोशी, अभी हमने बात की थी कि अगर किसी को अपना शरीर डोनेट करना है अपने जाने के बाद, देहदान करना है, तो उनको एक पत्र भरना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और 2 विटनेसेस जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके सिग्नेचर उस पे होने चाहिए, और उनको पता होना चाहिए फैमिली को कि आप देहदानी बनना चाहते हैं। तो अब मुझे ये पूछना है कि अगर जो भी कोई है जो 18 साल से ऊपर है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी फैमिली को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन या कागजात चाहिए होते हैं देहदान करने के लिए?
1: सबसे पहले, अगर 18 साल की आयु है और उनकी मृत्यु अगर अस्पताल में हुई है, तो उनके मृत्यु के बाद जो ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे या अस्पताल की तरफ से ही उन्हें एक डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। इस डेथ सर्टिफिकेट को लेके उन्हें नज़दीकी शरीर रचना शास्त्र विभाग को अप्रोच करना होगा। जब वो वहाँ पे जाएंगे तो डेथ सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये तो लगेगा ही। इसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ जिनकी डेथ हुई है, और जो नज़दीकी परिजन है जो उनके साथ अकंपनी कर रहे हैं वो बॉडी के साथ, उनका भी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, क्योंकि हर एक विभाग में जाते ही उन्हें एक पर्चा दिया जाएगा जहाँ पे इनकी पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी, और फिर एक सक्सेसफुल डोनेशन हो पाता है। इसके बाद इसका एक प्रमाण पत्र भी परिजनों को दिया जाता है कि उन्होंने उस अस्पताल को देहदान किया है। इस प्रमाण पत्र को लेके वो मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में। लेकिन 18 साल की आयु का अगर ऊपर है आयु और मृत्यु घर पे हुई है, जो कि नेचुरल डेथ है, तो फिर किसी भी नज़दीकी

0: मेडिकल डॉक्टर को आप बुला सकते हैं और उससे डेथ डिक्लेरेशन करा के, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिको लीगल एंगल इस केस में ना रहे। इसमें पुलिस का NOC भी मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद ही आप वो डेथ सर्टिफिकेट को लेके, अगर मेडिको लीगल एंगल नहीं है तो शरीर रचना शास्त्र विभाग को अप्रोच कर सकते हैं और बाकी की कार्रवाई वही रहेगी। लेकिन ध्यान यही रखना है कि मेडिको लीगल अगर केस है तो इसमें देहदान नहीं हो पाता।
1: और अगर किसी मरने वाले के उम्र 18 साल से कम है और फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि इसका देहदान हो जाए, तो फिर क्या कागजात या डॉक्यूमेंटेशन होती है?
0: ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जब हम कहते हैं कि देहदान हो पाता है, ये एक परिवार की इच्छा पहले हम मानते हैं, क्योंकि अगर 18 साल से कम भी है आयु, अगर 18 साल से कम भी है आयु तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिजन, नज़दीकी परिजनों का सबसे महत्वपूर्ण, उनके माता पिता, जिनकी अगर लड़के की डेथ हो रही है तो उनके माता पिता, इनकी सम्मति बहुत ही अहम रहेगी। या कोई भी नज़दीकी रिलेटिव जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव माने जाते हैं, भाई बहन या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, इनका उधर होना बहुत ही ज़रूरी है।
1: अभी हमने 2-4 दिन पहले सुना कि एक नवजात बच्चे का देहदान हो गया है यूनाइटेड किंगडम में, और यहाँ भारत में भी हो चुका है मध्य प्रदेश में, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि
0: 18 साल से कम की आयु के लोगों का तो देहदान मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन उससे भी अगर नवजात बच्चा है, इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है उनका भी देहदान हो, कि अगर उनका मृत्यु का कारण कोई जन्मता ही बीमारी है तो इसकी स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर उसके मृत्यु का कारण अच्छी तरीके से पता लगाना है या फिर उसके बारे में कोई रिसर्च करना है जो आगे जाके ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सके डॉक्टर्स, इसके लिए ऐसे नवजात शिशु का भी डोनेशन होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है।
1: थैंक यू शीतल। यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शीतल जोशी के साथ जो देहदान के बारे में बात कर रही हैं। डॉक्टर जोशी, आप हमें बताएंगे कि देहदान के बाद शरीर को कैसे प्रिजर्व किया जाता है और वो किस काम में आता है?
0: देहदान जब हो जाता है हमारे विभाग में, तो इसके बाद एक प्रक्रिया बॉडी के साथ की जाती है जिसे कहते हैं एम्बामिंग। इसमें ये किया जाता है कि एक इंजेक्शन के तौर पे फॉर्मेलिन करके एक सोल्यूशन आता है जो बॉडी को करीब करीब कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकता है। उसे आपकी आर्टरीज में डाला जाता है। आर्टरी पूरे बॉडी में वो दवाई को फैला देती है और उसके बाद बॉडी को हम किसी भी टैंक में या कोल्ड स्टोरेज में सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्व करने के बाद, जैसे आपको मैंने अहम तरीके से बताया कि इसका यूज़ ज़्यादातर मेडिकल में एजुकेशन यानी डिसेक्शन, जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है, डिसेक्शन का लिटरल मीनिंग यही है कि बॉडी को खोल कर हम उसको पढ़ते हैं, नए डॉक्टर्स को उसके ऊपर सिखाया जाता है, ये इसका अहम यूज़ है। सेकेंड चीज़ ये है कि उसमें से जो ऑर्गन्स निकाले जाते हैं, अगर उसमें कोई यूनिक चीज़ है यानी कुछ अलग बनावट है, तो डॉक्टर को उसकी जानकारी देने के लिए हम उसके स्पेसिमेंस बनाते हैं, यानी उनको डिस्प्ले में रखा जाता है ताकि नए जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको हम ये बता सकें कि इसकी बनावट क्यों अलग है और कैसी अलग है। थर्डली, जब हम बोलते हैं कि बॉडी का यूज़ रिसर्च में किया जाता है, चाहे फिर वो नवजात शिशु की बॉडी हो या 18 साल से ऊपर, कुछ लोगों में बनते वक्त कुछ नसें या बनने वाली जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके से दिखाई देती हैं, तो हम उसका एक डाटा प्रोक्योर करते हैं और उस डाटा से सर्जन्स और बहुत सारे जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको नई नई जानकारी मिल सकती है। तीसरी बहुत और एक अहम चीज़ ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जब हम बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर बनाना है तो उनको एक अच्छी ट्रेनिंग भी मिलना उतनी ही ज़रूरी है, तो इन बॉडीज़ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट जो सुपर स्पेशलिटीज़ है, जैसे कि सर्जरी है या फिर ENT के जो सर्जन्स होते हैं और आँखों के जो डॉक्टर्स होते हैं, इनको अगर सर्जरी का प्रयोग अगर किसी बॉडी पे करना है तो ये डिसेक्शन के तौर पे ये बॉडीज़ को यूटिलाइज किया जाता है। और सबसे अहम बात, आजकल हम ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग भी इन्हीं देहों पे की जाती है। इक्विपमेंट ट्रेनिंग भी हो सकती है, जैसे आपका नी ट्रांसप्लांट होना है, अगर नी ट्रांसप्लांट होना है तो एक आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस बनाया जाता है और फिर वो बॉडी में डाला जाता है, लेकिन ये प्रोस्थेसिस अगर बनाने हैं तो उसकी भी स्टडी पहले डॉट बॉडीज पे की जाती है ताकि उसकी मेजरमेंट्स लेके फिर पढ़ाई हो सके कि प्रोस्थेसिस कौन से साइज के बनने हैं ताकि आपके गुर्दे या फिर हड्डी में अगर कहीं लगने हैं तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से एक देहदान का यूज होता है।
1: ऐसी कौन सी बीमारी है या कारण है जिसके चलते देहदान नहीं हो सकता? कभी कभी हमने सुना है कि लोगों को अपना देहदान करना है, हमारा यहाँ पे भी एक केस था, लेकिन फिर एनाटॉमी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज ने उससे मना कर दिया।
0: इमोशंस लोगों के देहदान को लेके बहुत सी स्ट्रांग होते हैं, तो हम फैमिली को पहले ही बता देते हैं कि अगर बॉडी बहुत डीकम्पोज है, यानी अगर घर पे बेड रिडन रहा है पेशेंट, तो उनको बेड सोर्स आते हैं। बेड सोर्स आते ही उनके जो नसें हैं वो दब जाती है और कुछ जगह पे ऑलरेडी थोड़ा सा डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी का, तो ये दवाई उस एरिया में पहुंच नहीं पाते। इसलिए इन कारणों की वजह से हम ये बॉडीज एक्सेप्ट नहीं किया कर पाते हैं। कैंसर है जो बहुत फैला हुआ है, तो फिर से दवाई उन उन जगहों पे नहीं जा पाती और बॉडी अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाती। थर्डली, जैसे मैंने आपको बोला, नेचुरल डेथ ही मैं सिर्फ सक्सेसफुल डोनेशन है। अगर अटॉप्सी हुई है बॉडी की तो एक बड़ा सा ना है। फिर से अगर अटॉप्सी में बॉडी को खोला जाता है मेडिको लीगल केसेस में, तो हम ये डोनेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कोई भी ऐसी डिजीज़ जैसे बीच में एबोला आया था, जिसके बारे में बहुत नेचुरल ऐसे बहुत सारे डिजीजेस बहुत इन्फेक्शस होते हैं जिनका हम ये नहीं जान पाते कि भाई दवाई छोड़ने के बाद ये डिजीज़ आगे जाके ना फैल पाए, तो हम यंग डॉक्टर्स को वो रिस्क नहीं देना चाहते। इसलिए ऐसी कुछ बीमारियां भी है या पॉइजनिंग भी है किसी बॉडी में जिसको हम स्टडी नहीं कर पाए, तो ऐसे हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते।
1: थैंक यू डॉक्टर जोशी। तो ये बात तो सामने आ गई है कि देहदान एक पूरे परिवार का फैसला होता है। आपके विभाग में ऐसा कोई देहदान हुआ है जो सबके लिए मिसाल बन सकता है?
0: हमारे विभाग में वैसे अलग अलग परिजन, उनकी फैमिलीज आती है और डोनर्स आते हैं। सब में एक अलग बात होती है कि उनमें जो मोटिवेशन होता है या फिर उनमें जो इच्छा शक्ति होती है वो उस लेवल की होती है कि वो बहुत सालों से इस डिसीजन के लिए यस होते हैं, उनकी फैमिली यस होती है। खास तौर से मैं इस फैमिली के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर लेट निरंजन मित्रा जी जो हमारे डोनर रह चुके हैं वो खुद भी एक डॉक्टर थे। इनकी जो इच्छा शक्ति या इनके परिजनों की जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ही सबको प्रेरणा दे सकती है, क्योंकि इनकी वाइफ जो थी शिबानी मित्रा जी वो एक खुद स्कूल टीचर भी रह चुकी थी। इन्होंने हमारे विभाग को पहले अपना देहदान दिया, उसके बाद उनके हस्बैंड दैट इज़ लेट निरंजन मित्रा जी, उनकी स्टोरी भी आर्मी में डॉक्टर होने के बावजूद उनमें जो देने की भावना थी वो बहुत ही तीव्र इच्छा शक्ति थी। और इसको ऑनर करते हुए उनका बेटा जब हमारे प्रियदर्शनी मित्रा जी जब हमारे पास आए तो उनमें भी उसी लेवल का हमने इच्छा शक्ति या फिर मोटिवेशन देखा। इसलिए ये सारे एक ही फैमिली से होने वाले डोनेशंस हमारे लिए एक ट्रेडिशन जैसा हमें उनके फैमिली में लगा कि देहदान करना ये हमारे ट्रेडिशन में है। तो ऐसे लोग जब सोचते हैं तो हमें भी बहुत एक प्रेरणा मिलती है कि ये हमारे बीच है, ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही इच्छा शक्ति है कि कुछ हम दें और चाहे फिर वो देह क्यों ना हो। तो ये ही मैं सबको बताना चाहूँगी कि देहदान एक देने का जो भाव है वो बहुत ही अलग है और इसे हमने सब ने बहुत अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज भी करना है, और मैं उनका उस परिवार का खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगी।
1: थैंक यू डॉक्टर जोशी, आप अपने इतनी सारी जानकारी दी हमें देहदान के बारे में। और अगर कोई देहदान करना चाहता है तो आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट पे जाके बॉडी डोनेशन डायरेक्टरी में देखें कि आपके आसपास के कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जहां पे आप देहदान कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना चाहिए सबको कि ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंग दान और देहदान के फॉर्म अलग अलग हैं, और अगर आप ऑर्गन डोनेशन करेंगे या आपके अंग दान हो जाते हैं तो उसके बाद आप देहदान नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू सुनैना। जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंगदान एक बेहद खूबसूरत विरासत है जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या आप हमें हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 120 3648 पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9650952810, या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो है 0114183-8382। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, जिसे आप सबको दिखाइए और दूसरों को प्रेरित भी करिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होने की आशा करती हूँ। हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। www.organindia.org पर जाकर अपना फॉर्म भरें और अपना ऑर्गन डोनर कार्ड प्राप्त करें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, Feel Good, Feel Life।
2: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम लेकर आते हैं कुछ लोगों की ऐसी कहानियाँ जो आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करती है, बल्कि अपनी कहानियों से आपको इंस्पायर करती है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। ये कहानियाँ उन लोगों की होती है जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से और हौसले के दम पर दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। इनकी जिंदगी के अनुभव और सीख हमें ये बताते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि लगातार मेहनत और सही सोच से मिलती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है तो कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है, और कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। इस रास्ते में आपको मुश्किलें भी मिलेंगी, इस रास्ते में आपको असफलता भी मिलेंगी, और कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम इस लक्ष्य के लिए बने ही नहीं है, हम इस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। ऐसे समय में हमें ज़रूरत होती है उन लोगों की कहानियों की, उनकी प्रेरणा लेने की जिन्होंने हर चुनौतियों का सामना करके अपनी मंजिल को हासिल किया है। और आज के एपिसोड में जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने ना सिर्फ भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, बल्कि ये भी साबित किया कि अगर आपके इरादे मजबूत होना तो सपना पूरा किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं इंदिरा नोई की। जी हाँ, जो दुनिया की सबसे सफल बिजनेस लीडर में से एक मानी जाती है। एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक पेप्सिको की CEO बनना कोई आम बात नहीं होती। इस सफर में संघर्ष था, कठिन फैसले थे, नए देश में खुद को साबित करने की चुनौती थी, और हर कदम पर कुछ नया सीखने का जज्बा था। लेकिन इंदिरा नोई ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बल पर एक मिसाल बन गई। आज के इस पूरे एपिसोड में हम उनकी बारे में जानने वाले हैं, उनके सक्सेस मंत्रा को जानेंगे, उनके लीडरशिप क्वालिटी को जानेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। लेकिन ये स्टोरी से आप क्या सीख लेंगे, ये बहुत जरूरी है। आपको ना, मैं अगर ये स्टोरी लेकर आती हूँ आपके लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप इससे मोटिवेट होने चाहिए, आपके मन में ये जुनून आना चाहिए, ये सपना होना चाहिए कि अगर इस इंसान ने कुछ कर लिया तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो बस इसीलिए हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं ताकि आप भी इससे मोटिवेट होते रहें। और अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं सक्सेस मंत्रा में ऐसी दुनिया की, ऐसी कहानी की जो सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स में से एक है, यानी कि एक ऐसी महिला जिन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में बताया कि सिर्फ मेल्स के लिए ये बिजनेस नहीं होता बल्कि फीमेल्स भी किसी से कम नहीं है। और आज जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है इंदिरा नोई की। जी हाँ, इंदिरा नोई की आज हम जर्नी के साथ चल रहे हैं। दोस्तों, किसी भी सफल इंसान की कहानी को समझने के लिए हमें उसके बचपन और शुरुआती जीवन को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही समय होता है जब हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारे अपने तैयार होते हैं। इंदिरा नोई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इंदिरा नोई का जन्म चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही सादगी और अनुशासन के माहौल में बीता। उनके घर में पढ़ाई को बहुत महत्वता दी गई थी। बचपन से ही उन्हें और उनकी बहन को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित किया जाता था, यानी कि कॉन्फिडेंस घर से ही मिल रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प बात तो ये है कि उनकी माँ अक्सर उन्हें कहती थी कि सोचो, तुम देश की प्रधानमंत्री हो या किसी बड़ी कंपनी की लीडर हो। फिर उनसे पूछा जाता था कि तुम क्या फैसले लोगी, कैसे देश या फिर कंपनी को आगे बढ़ाओगी। शायद उस वक्त ये सिर्फ एक खेल लगता होगा, लेकिन इसी ने इंदिरा नोई के अंदर लीडरशिप और बड़े सपने सोचने की आदत पैदा कर दी। स्कूल के दिनों में भी वो पढ़ाई के साथ साथ कई एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थी। उन्हें म्यूजिक पसंद था और वो क्रिकेट भी खेलती थी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सफलता सिर्फ किताबी ज्ञान से ही नहीं आता है, बल्कि हर तरह के अनुभव से हमारी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाते हैं। और इंदिरा नोई का बचपन हमें ये बताता है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, हम एक आम परिवार से आते हैं, इसलिए बड़े सपने देखना मुश्किल लगता है। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सपने से ही होती है। और आज के इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा है, हमेशा बड़े सपने देखिए। सपने वही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस ब्रेक के बाद करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज जिस जर्नी के साथ हम चल रहे हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने ये बताया कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, जिनके आज हम बात कर रहे हैं उनका नाम है इंदिरा नोई। उनकी प्रेरणादायक कहानी आज हम सुन रहे हैं। पिछले सेगमेंट पे हमने उनके बचपन और उनके सपनों के बारे में बात की, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाला था। अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई और संघर्ष की, जिसने उन्हें सफलता के रास्ते पर मजबूत बनाया है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदिरा नोई ने चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को भी निखारा। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहती थी। उनका मानना था कि सिर्फ डिग्री लेना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाना भी जरूरी है। कॉलेज के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता यानी कि IIM कलकत्ता में एडमिशन लिया। आज भी IIM को देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में से एक गिना जाता है। वहां तक पहुंचना और फिर अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन इंदिरा नोई ने मेहनत और लगन के साथ हर चुनौती का सामना किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उनका सीखने का सफर नहीं रुका। उन्होंने फैसला किया कि वो अमेरिका जाकर हायर स्टडीज करेंगी। ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत से भरा हुआ कदम था। एक नए देश में जाना, नई संस्कृति को समझना और अपनी पहचान बनाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंदिरा नोई ने इस चैलेंज को एक मौके की तरह देखा। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि नया देश, नया भेष, वहाँ की तौर तरीकों को सीखना बहुत अलग होता है। कभी पैसों की दिक्कत तो कभी नए माहौल में खुद को एडजस्ट करने की चुनौती, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई, उनका ध्यान हमेशा अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर रहा। और बस यहीं से हमें एक और बहुत बड़ी सीख मिलती है। कई लोग पढ़ाई खत्म होते ही सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन जो लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दुनिया हर दिन बदल रही है और नए अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो खुद को नए ज्ञान के साथ अपडेट करता रहता है। आज के इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्र है, सीखना कभी मत छोड़िए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपको मौके अपने पास बुलाएंगे। तो वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

0: वेलकम बैक दोस्तों,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम बात कर रहे हैं इंदिरा नोई की इंस्पायरिंग जर्नी की। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे उन्होंने पढ़ाई के हर मौके का पूरा फायदा उठाया और लगातार सीखने की कोशिश को अपनी आदत बना लिया। अब बात करते हैं उनके करियर की शुरुआती दिनों की और उन चुनौतियों की जिन्होंने उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदिरा नोई ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में उन्होंने अलग अलग कंपनीज के साथ काम किया और बिजनेस की दुनिया को करीब से समझा। हर नई जॉब के साथ नए अनुभव मिले और हर अनुभव ने उन्हें कुछ नया सिखाया। जब वो अमेरिका पहुंची और वहां काम करना शुरू किया तब उनके सामने कई चैलेंजेस थे, जैसे कि नया देश, नए लोग, नया वर्क कल्चर और सबसे बड़ी बात खुद को साबित करने की जिम्मेदारी। लेकिन इंदिरा नोई ने कभी भी इन मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हर चैलेंज को एक नए लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखा है। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें इंटरव्यू के लिए तैयारी करते वक्त कई प्रैक्टिकल समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका फोकस हमेशा एक ही गोल पर रहा है। वो जानती थी कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन लगातार मेहनत करने वाले लोग अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। इंदिरा नोई की एक खास बात ये भी थी कि वो सिर्फ अपना काम करने पर ही ध्यान नहीं देती थी, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करती थी कि कंपनी और लोगों की जरूरत क्या है। और बस इसी सोच ने उन्हें एक बेहतर प्रोफेशनल और आगे चलकर एक बेहतरीन लीडर भी बनाया। दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें सबके सामने आती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन मुश्किलों को देखकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। इंदिरा नोई भी उसी दूसरी कैटेगरी में आती है। उन्होंने हर चैलेंज को एक नए मौके में बदल दिया। आज का इस सेगमेंट का सक्सेस मंत्रा है कि हर चैलेंज को अपनी अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। मुश्किलें आपको रोकने नहीं बल्कि आपको और ज्यादा मजबूत बनाने आती हैं। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात कर रहे हैं आज सक्सेस होने की। जी हां, बात तो हम हर हफ्ते ही करते हैं सक्सेस होने की। लेकर आ जाती हूं आपके लिए कुछ खास इंटरेस्टिंग जर्नी, जो आपको सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करती है अपनी जर्नी से, बल्कि आपको मोटिवेट भी करती है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, हर कोई कुछ भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि हमारे पास कुछ होगा तभी हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो लोगों को अगर कुछ करना होता है ना, तो वो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हासिल कर लेते हैं। और आज इस जर्नी में हम चल रहे हैं इंदिरा नोई के साथ, उनकी जर्नी को समझ रहे हैं जिसने उन्हें दुनिया की सबसे सफल बिजनेस लीडर में शामिल कर दिया। पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि कैसे उन्होंने हर चैलेंजेस का सामना किया हिम्मत के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ। अब बात करते हैं उनके करियर के सबसे महत्वपूर्ण पल की, यानी कि पेप्सिको तक का सफर, उसकी बात अब हम करेंगे। इंदिरा नोई ने अपने करियर में कई बड़ी कंपनीज के साथ काम किया और हर जगह अपनी सोच और लीडरशिप से लोगों को प्रभावित किया। साल था 1994 में उन्होंने पेप्सिको को ज्वाइन किया। ये वही कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स दुनिया के लगभग हर कोने में मिलते हैं। इतनी बड़ी कंपनी में अपनी पहचान बनाना आसान तो नहीं था, लेकिन इंदिरा नोई ने अपनी मेहनत और अपने विजन से सबका दिल जीत लिया। पेप्सिको में उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी दूर की सोच। वो सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचती थी, बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचती थी। उन्होंने कंपनी को ऐसे फैसले लेने में मदद की जो लंबे समय तक फायदेमंद साबित हो। उनका मानना था कि एक कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि लोगों और समाज के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। धीरे धीरे उनकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल की चर्चा पूरी कंपनी में होने लगी। उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स और बिजनेस डिसीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि वो साल 2006 में पेप्सिको की CEO बनी। जी हाँ, ये उपलब्धि सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि उन सब लोगों के लिए एक प्रेरणा थी जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। CEO बनना किसी कुर्सी पर बैठ जाना नहीं होता, बल्कि इसके साथ आती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़े फैसले और लाखों लोगों की उम्मीदें। इंदिरा नोई ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने कंपनी को नए विचारों, नए लक्ष्यों और बेहतर दिशा की तरफ ले जाने का काम किया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, बल्कि ये छोटे छोटे से कदमों, लगातार मेहनत करने से और फैसलों से परिणाम मिलता है इसका। और आज के इस खास सेगमेंट में हमने बात करी जब उनके पेप्सिको के सफर की, तो वो हमें ये सक्सेस मंत्रा देता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं सक्सेस मंत्रा में इंदिरा नोई की प्रेरणादायक जर्नी की। अब तक हमने उनके बचपन की बात करी, उनकी पढ़ाई की बात करी, उनके पेप्सिको के सफर तक की बात करी कि वो कैसे पेप्सिको की CEO बनने तक का उन्होंने सफर कैसे तय किया। लेकिन किसी भी सफल व्यक्ति की असली पहचान सिर्फ उसकी पोजीशन से ही नहीं होती है बल्कि उसकी सोच और लीडरशिप से भी होती है। इस सेगमेंट में हम बात करें

का जिक्र करती थी जिन्होंने इस सफर में उनका साथ दिया था। ये हमें सिखाता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों तक क्यों ना पहुंच जाएं, अपनी वैल्यूज और अपने लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही थे जिन्होंने हमारे कुछ ना होने पर भी हमारा साथ दिया था। इंदिरा नोई वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी खुलकर बात करती थी। उनका कहना था कि प्रोफेशनल सक्सेस जरूरी है, लेकिन परिवार और रिश्तों की अहमियत भी उतनी ही जरूरी है। जिंदगी तभी सुंदर बनती है जब हम करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में एक अच्छा संतुलन बना पाएंगे। एक और बात जो उन्हें खास बनाती है वो है उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। मुश्किल समय में भी वो समस्या पर नहीं बल्कि उसके सॉल्यूशन पर ध्यान देती हैं। उनका मानना था कि सिचुएशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और बस इसी सोच ने उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखा। दोस्तों, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर सफलता के पीछे इतना भागते हैं कि अपनी वैल्यूज और रिश्तों को ही नजरअंदाज कर देते हैं। इंदिरा नोई की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सफलता वही है जहां पर उपलब्धि के साथ इंसानियत भी हो। सफलता तभी मायने रखती है जब उसके साथ विनम्रता, ईमानदारी और अपनों का साथ भी हो। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हमने सक्सेस मंत्रा में जाना एक ऐसी दुनिया को, एक ऐसी लीडर को जिन्होंने बताया कि अपनी सॉफ्टनेस के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ लोगों को साथ लेकर कैसे चलते हैं। एक ऐसी जर्नी जिसके पास सिर्फ सपने थे पर उसको पूरा करने में जो मेहनत लगी वो इस जर्नी में हमने जाना। आज हमने बात की बिजनेस लीडर में से एक जानी पहचानी, दुनिया की सबसे प्रेरणादायक बिजनेस लीडर में से एक इंदिरा नोई की कहानी, बचपन के सपनों से लेकर उनके पेप्सिको के सीईओ बनने तक के सफर को। हमें ये सिखाता है कि मेहनत, लगन और सही सोच के साथ कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आज के इस आखिरी सेगमेंट में आइए एक बार फिर से उनकी कहानी से मिलने वाले कुछ सबसे बड़े सक्सेस मंत्रा को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सक्सेस मंत्रा, सपने बड़े देखिए। जी हाँ, इंदिरा नोई एक साधारण परिवार से ही थी लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। अगर हम सपने ही छोटे रखेंगे तो हमारी मंजिल भी छोटी ही रह जाएगी, इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। और दूसरा सक्सेस मंत्रा है, सीखना कभी मत छोड़िए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में लगातार कुछ न कुछ नया सीखा है। दुनिया बदल रही है और जो लोग सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। नॉलेज आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा सक्सेस मंत्रा है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे सालों की मेहनत और समर्पण छुपा होता है। इंदिरा नोई की जर्नी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चौथा सक्सेस मंत्रा है, चैलेंजेस से मत डरिए। नए देश, नया माहौल और बड़ी जिम्मेदारियां, उनके सामने कई मुश्किलें आई लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर चैलेंजेस को उन्होंने एक नए मौके में बदल दिया। पांचवा सक्सेस मंत्रा है, अपनी वैल्यूज को कभी मत छोड़िए। चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, विनम्रता, ईमानदारी और अपने रिश्तों की कदर हमेशा बनाए रखिए। यही चीजें आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा लीडर बनाती है। दोस्तों, इंदिरा नोई की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की दुनिया की कहानी नहीं है, ये हौसले, मेहनत और सपनों को सच करके दिखाने की एक कहानी है। उनका जीवन हमें बताता है कि सफलता किसी खास बैकग्राउंड या फिर परिस्थिति का मोहताज नहीं होता, बल्कि इरादे अगर आपके मजबूत हों और मेहनत अगर आपकी सच्ची हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। फिर से मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी के साथ एक और नए सक्सेस मंत्रा के एपिसोड में। तब तक के लिए याद रखिएगा, सपने देखिए, मेहनत कीजिए और कभी रुकना मत सीखिए। और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों, हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही। यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में ये गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों, देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों, कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है, तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम, सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को। दोस्तों अब मैं आपको एक बात खास बता दूं कि मजरूह सुल्तानपुरी ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। जी हाँ, इनका नाम था असरार उल हसन खान। तो मजरू इन्होंने अपना नाम रखा और सुल्तानपुरी क्योंकि ये सुल्तानपुर के जन्मे थे इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे अपना प्रदेश का नाम लगाया और नाम बन गया मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों हिंदी भारतीय जगत के ये उर्दू कवि और हिंदी भाषा फिल्म उद्योग के ये गीतकार रहे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रमुख संगीत शक्तियों में से इनका नाम आता है और बहुत सारे गाने इन्होंने जो हैं लिखे, जिसमें जो दोस्ती फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें गाना आया चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी पुरस्कार मिला। 1980 और 1990 के दशक में इन्होंने अधिकांश काम आनंद मिलन के साथ किया और उल्लेखनीय जिसमें सहयोग है कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी ही थे कयामत से कयामत तक के गानों के पीछे। और जतिन ललित के लिए जो जीता वही सिकंदर के गाने और पहली फिल्म यारा दिलदारा, इन मूवीज़ के गाने भी मजरूह सुल्तानपुरी जी ने लिखे। तो बहुत ही इनका सुंदर लिखाई इन द सेंस जो ये लिखते थे बहुत ही सुंदर गीत थे। हम सभी जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर के जो गाने हैं वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। हालाँकि मूवी का प्लॉट खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था, लेकिन एक मूवी में जान डालने का जो काम होता है ना वो गाने करते हैं। और गाने के अगर लिरिक्स अच्छे हों फिर तो सोने पे सुहागा। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी जी को। तो दोस्तों बात हो गई बहुत सारे इनकी बॉलीवुड के काम की, आइए अब चलेंगे इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में इनके चाइल्डहुड और एजुकेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बात। आई एम हेयर ओनली, आप भी ट्यून रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?
1: तुहे प्यार दूं गोरी भैया।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1919 और 1920 के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी किया और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों में जो एक गीतकार के रूप में आए हम उससे इनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो दोस्तों बातें हो गई हैं ढेर सारी और मुझे पता है कि हम सब इनके लिखे हुए गाने सुनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी। तो आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और थोड़ा सा इनके राजनीतिक झुकाव और इनकी फिल्मों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो इनका राइटिंग सुनी की है तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम करना या फिल्म से जुड़ना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि ये एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होगा और इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी, तो ये सोचकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और कारदार साहब इनको संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए और एक युवा लेखक के रूप में इनका वहाँ परिचय कराया और उन्होंने उनको एक धुन दी, यानी कि धुन पहले बन चुकी है, लिखा गाना नहीं गया, पहले धुन बनी और धुन इनको दे दी गई कि इस धुन पर आप जो है अपना एक गाना लिखो। और फिर उस धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा और उसके बाद 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने

0: 8.8 FM पर फील गुड फील लाइव।
1: क्या कहा?

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स। और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारी देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। और

ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तान पुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Aja tujhe bhi main kara dun ta man che pe disco.
2: हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरजे सागर, आया हूँ लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत। दिस शो इज रियली स्पेशल बिकॉज यहाँ पर हम लोग लीगल फ्रेमवर्क को कवर करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको यहाँ पर हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बात करने वाले हैं एआई की, लेकिन हम जेनरिक एआई की बात नहीं करेंगे, हम जेमिनी चैट जीपीटी काम कैसे करता है वो नहीं समझेंगे यहाँ पर। लीगली क्या है, कानून क्या बोलता है, कि कानून के पास कुछ है अगर आपकी फोटो कोई उठा करके बिना आपके कंसेंट के ऑल्टर करके अपलोड करता है तो कानून उसको लेकर के क्या बोलेगा, या सच में क्या कोई एआई मॉडल कुछ भी बना सकता है, कोई रेगुलेशन है उसके ऊपर। इस तरह के कुछ सवाल होंगे जो आज के शो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं। आई एम डैम श्योर आप लोग जरूर आगे होंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इस एक प्रॉब्लम को फेस किया है, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से, स्कैम्स के माध्यम से, एंड सो ऑन। सो आज हमारे साथ है मिस तन्वी, तन्वी से हम लोग बात करने वाले हैं। तन्वी इज द असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव रचना यूनिवर्सिटी, और तन्वी सेकेंड टाइम हमारे साथ सेशन कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर डूइंग दिस तन्वी।
3: Thank you
2: and welcome to our show. We're going to start with this very basic question. Artificial intelligence har jagah par aa chuka hai, koi science fiction nahi, hamare beech mein aa chuka hai, hamare workplace pe hai, hospitals mein hai, courts mein hai, but kanoon ki definition kya hai AI ki, what is AI?
3: So ideally no law has defined AI, lekin what our understanding of AI is that any task that the computer system is performing which would traditionally require human intelligence, but now it is being done by that computer system, that is what we call as artificial intelligence. So let me give you a very small example. Aap kabhi bhi kuch shopping karne jate hain to aap dekhte hain FAQs, frequently asked questions, they are fixed questions, you can just look at them. But let's say you want to ask a more tailor-made question, that you would require a person replying to your question, right? But now you don't have it. You have chatbots in every website that you go to. Let's say you're shopping on Nykaa, you have the chatbot who can answer your basic question. So that is the smallest example of artificial intelligence. So something ideally a human would have done is now being taken up by computer systems. So that is artificial intelligence.
2: All right. And there are global conversations about regulating the artificial intelligence. I want to know why.
3: So basically, artificial intelligence reach has really magnified over the last couple of years. So now it's not a vague concept that might be coming in the future. It's something that's already here. Now, what happens is that AI is increasingly making decisions that are also having its impact on the people's rights and interests. So for example, let's say someone wants to get a loan. So now they have AI applications that would filter out. They have AI based applications that would filter out what person should be given the loan, what amount, what interest rate. We also have AI systems in recruitment now. So let's say something like Amazon, they get what, roughly 1 lakh applications a year, and it's not possible for them to sort through everything. So they have their own AI system, which is very interesting. Maybe we can talk about it later in the session. So they have their own AI system to sift through those applications. So since AI is being increasingly used in the day-to-day life and it's increasingly impacting people, it is very important that we regulate that particular application. We regulate the, or we define the boundaries to which it would be allowed to function. Because if let's say today we are getting benefits out of its use, but let's say tomorrow there's some harm. If that harm occurs, who is going to be held responsible is the main question that comes in, which is very difficult to answer in terms of AI.
2: All right. बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको बताया है. Next question would be, कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ब्राजील का आर्टिकल था. There was a lady of 32 years old. ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम थी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, उन्होंने AI के ऊपर अपलोड करी, चैटबॉट के ऊपर, और वहाँ से कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछे कि व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी. डॉक्टर ने बोला था आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ेगा, बट एआई सेड आपके पास 5-6 दिन का टाइम है. सो शी लिसन टू एआई एंड नॉट टू डॉक्टर एंड शी डाइड, क्योंकि उनको लगा कि अर्जेंसी नहीं है, अभी एआई बोल रहा है टाइम है. इट वॉज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, मैं जानना चाहूंगा अगर इस तरह के केसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को वहां पे अपलोड करते हैं एंड समटाइम्स एआई उसको गलत प्रिडिक्ट करता है, हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट पार्ट? क्या हमारे पास कुछ लीगली ऐसा है या हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसको?
3: सो दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल इन द पार्ट वेयर एआई गवर्नेंस रियली एंड्स अप बीइंग स्टक. Firstly, let's start with your news article. So, in that case, it was the lady's decision alone to not go to the hospital. So, in that case, it is still possible to attribute the particular harm that she has suffered or like she has passed away to her own consent. So, if, for example, if a doctor is asking you to do something and if you don't end up doing it and you it ends up costing you your life, you can't really hold the doctor accountable. Similarly, chatbots cannot be held accountable for that. But a situation where AI liability would come into question is, so there was this case recently, like a few years back in the US. So Tesla has autonomous driving vehicles. So it works on artificial intelligence, right? So what happened was this car was going and the car system read it as the horizon. Like the horizon is there, but it was actually a white truck that was going, but the system, the artificial intelligence, because they are autonomous self-driving vehicles, it thought it's the horizon and it's just the sky that's appearing, and it crashed into that white truck, and now because of which a lady died. So then what? Let's say artificial intelligence is also being used in healthcare now. Let's say a robotic surgery is being performed. Robotic is not AI actually. Let's say with the help of AI a surgery is being performed and something goes wrong. Then who is responsible? So these are, especially in case of autonomous driving vehicles, that is where AI liability really comes into picture. So because the main issue in AI liability is, who will you attribute the harm to? Who will you hold responsible? Will you hold the person who has developed that software responsible? Or will you hold someone who has deployed or who has deployed that software? So for example, OpenAI or ChatGPT, it is invented by XYZ person. That person has written the code. But it is deployed by OpenAI. ChatGPT is deployed by that particular company. So will you hold that company responsible? Or will you hold their local distributors responsible for it? So that's the main problem in AI liability, that it's very hard to pinpoint who will be responsible. So if someone is murdered, तो आपको पता होता है कि एक इंसान रिस्पॉन्सिबल होगा, दो यू कैन आइडेंटिफाई, बट विद एआई बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व्ड इन इट, इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन दीज केसेस. सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम. सो फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुड पोटेंशियली फॉल ईदर ऑन द डेवलपर हु हैज डिजाइन द एआई और ऑन द कंपनी दैट हैज डिप्लॉयड इट और द पर्सन हु मिसयूज्ड इट ऑल्सो. That is also one possibility. Or it could also fall on multiple parties together. It's not important that it has to be only one of these parties. It could fall on multiple parties together.
2: So amazing. All right, दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत यहाँ पर चल रही है. फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा हॉल्ट यहाँ पर, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक की हमें जरूरत है, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे. तन्वी हमारे साथ हैं और एआई के लीगल फ्रेमवर्क को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू डीकोड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स एंड किसको आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हो. मेरे पास इसका एक और फर्दर केस स्टडी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ. फील गुड, फील लाइफ.

0: Welcome back. I'm hoping you are loving the show, you are loving the vibe, you are loving the musical break. And अगर आपको अपना कोई feedback हमारे साथ share करना है मेरे लिए तन्वी के लिए या इस topic के regarding कुछ add on आपको करना है, just do make sure 8010781078 इस number तक अपनी बात आप पहुंचा चुके हो. फिलहाल show को आगे लेकर के चलते हैं और अगले point की तरफ आते हैं. तन्वी, यहाँ पर हमने बात करी अभी ब्राजील का एक केस बताया जहाँ पर आपने बताया कि इट्स हार्ड टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट पार्ट. मे बी दैट लेडी जो उसने अपना कंसेंट के साथ काम किया. सेकंड केस यूएस में हुआ, रियल केस है जो वहां भी कोर्ट में चल रहा है. देयर वाज अ गाय, ही वाज अ टीनेजर, ही वाज फीलिंग समथिंग एब्सर्ड. ओके, तो उसने चैट जीपीटी से बात करना शुरू किया कि आई एम फीलिंग दिस वे, आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग अप माई लाइफ. चैट जीपीटी motivated that guy in that way ki, do you want me to write a suicide note for you? And that guy just end up giving up his life. Okay, that is the whole case. Ab jab ye sara mamla wahan par court mein jata hai, uske parents wahan par appeal karte hain, is case mein kya hoga agar similar koi case India mein aata hai. Ye chalo US ki main baat kar leta hu, kyunki yahan par ek ladka hai jo already ek aise peak moment mein aa chuka hai jiske thoughts usko wahan le ja chuke hain ki usko lag raha hai life yahan, this is the end of the world. ओके, उस मोमेंट में एक एआई मॉडल के पास ये ऑप्शन भी है कि वो उसको वहां से वापस लेके आ सके. ह्यूमन इमोशंस आर सो कॉम्प्लेक्स, बट दैट एआई मॉडल चोज द अदर वे. व्हाट इज द फ्रेमवर्क फॉर दैट पार्ट?
1: सो आइडियली लेट्स से इफ इट हैपेंड इन रियल लाइफ एंड इफ इंस्टेड ऑफ चैट जीपीटी देयर वाज अ पर्सन, सो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगता. अबेटमेंट मींस इनसाइटिंग समवन टू डू समथिंग, सो उस पे अबेटमेंट का केस लगता. बट बिकॉज इट्स चैट जीपीटी, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर, बिकॉज इट्स अ जनरेटिव एआई एंड इट आंसर्स यू ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू हैव बीन टॉकिंग टू इट, राइट? सो इट्स वेरी हार्ड टू एट्रीब्यूट हार्म. अब आप देखिए, अगर हम मान लो कि डेवलपर को रिस्पॉन्सिबल कर लें इसमें एआई के, नाउ देन देयर विल बी नो इन्वेंशंस, एवरीवन विल स्टॉप बिकॉज द चांसेस ऑफ समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इज वे टू लाइकली. 80% 85% फिर आप लायबल हो जाओगे किसी चीज के लिए, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी विल फॉल अपॉन यू. सो इन जेनरेटिव एआई द मेन इशू इज नाउ इट, इफ यू वुड talk something like this with chat GPT or any generative AI, you'd find it will give you the national suicide helpline number. So they have fine-tuned it, but in initial stages when this case happened, I've actually cited it in a paper of mine also. So in initial cases when generative AI had just started coming in, they did not know the filters, because AI is learning from you, AI is learning from the internet. So it doesn't know that, okay, maybe a child might be using this, so we are not allowed to say this, or it might not know the boundaries, right? So initially this was happening, now they have limited it. Now if at all you are going to put anything like this on any AI, it will hit you back with the suicide help number or things like this. But in this case, if we talk about liability, it is very hard to assign liability, because it was the child's decision to end his life. We cannot say there might be not, it was just, it is very hard to legally prove that it was just chat GPT which put him there, or which pushed him to the abetment. Cases are very hard to prove that way, because you have to, without a reasonable doubt, prove that this was done because of this particular app. So anyway, in those cases there's a victim, but it's a offenderless crime essentially. There is no offender in this case. You cannot hold ChatGPT accountable. So this is where the exact issue is, that what would we do in such cases? These cases can now be eliminated with the kind of knowledge that we have, ki ye bhi ho sakta hai, aisa bhi ho sakta hai, this needs to be prevented. But earlier when it has already happened, it's very hard legally to say how responsibility or to whom the responsibility can be put on.
0: क्या मैं ओपन एआई को यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकता हूँ? That is a parent company of ChatGPT.
1: If at all we go end up challenging OpenAI, they can plead that it was not them directly involved. So you are using a chatbot. That chatbot is artificial intelligence. That means they are using their own mind. They are not using the mind of OpenAI. It's not the creator of the code or the deployer company that is writing those messages to you. It's artificial intelligence. It is understanding your thoughts and then replying on its own. And criminal law mein hum bolte mens rea hona chahiye. That means a guilty intention hona chahiye. How will you prove guilty intention for OpenAI?
0: All right. So okay, there is another case. इंडिया केस है ये और रियल केस है. बीते दिनों एक ट्रेंड चला था 90s या 80s का, साड़ी का ट्रेंड चला था कि फीमेल्स जो हैं अपनी फोटोज अपलोड कर रही थी और अपनी फोटोज को वो एक फिल्टर के थ्रू 80s में कन्वर्ट कर रहा था. देयर वाज दिस गर्ल, शी अपलोडेड हर फोटो इन फुल स्लीव्स और साड़ी में उसको उस स्टाइल में कन्वर्ट कराना था 80s वाले में. जब उसका आउटपुट आया तो साड़ी पहना दी, 80s का स्टाइल दे दिया, सब दे दिया, हाथ पर यहां पर एक मोल आया लेकिन ओके. एंड वो मोल एग्जिस्ट करता था, आई गेस जिया था उस लड़की का नाम, ठीक है, उसके हाथ पे वो मोल एग्जिस्ट करता था. इट रेजेस सो मेनी क्वेश्चंस, लाइक द बिग क्वेश्चन इज कि एआई को कैसे पता है उसके हाथ में मोल है. ऑब्वियसली प्रीवियस फोटोज उसके पास स्टोर्ड होंगी, प्रीवियस डेटा होगा, बट राइट नाउ आई एम मेकिंग अ फ्रेश चैट. दैट मीन्स कि मैं नहीं चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरी प्रीवियस हिस्ट्री में जाके वो करो, क्योंकि मैं नया चैटबॉट स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं नई फोटो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉम्प्ट है, मेरे को इसको बना के दो. इट हैज टू बी दैट फेयर ट्रांजेक्शन, बट देर इज सम सॉर्ट ऑफ शेडी थिंग दैट इज बींग इन्वॉल्व हेयर, क्योंकि प्रीवियस लॉग से उसने उठा करके उसको वैसा बना दिया. इस केस में क्या मैं चैलेंज कर सकता हूँ उस AI कंपनी को?
1: नाउ द बिगेस्ट इशू इज, सो द मोमेंट यू इंस्टॉल ChatGPT इन योर फोन, वी नेवर लुक एट द काइंड ऑफ परमिशंस वी गिव इट. सो वी क्लिक अलाउ ऑल, यस कंसेंट, यस, दे हैव टेकन कंसेंट ऑफ एवरीथिंग. सो नाउ ChatGPT हैज अ वॉइस फीचर, यू कैन टॉक, यू कैन प्रेस द माइक्रोफोन. And if you notice, if you have to press the microphone, your phone will not ask allow microphone because you've already given that permission. So everything, why do you think ChatGPT asks you to sign in when you're using it? Because that history is being created. If an app is functioning without any fee, that means they are collecting your data. Your data is a big commodity for every app. For every app, not just AI, but for every app. So data privacy is a very big concern when it comes to AI. Coming to the mole, I think I saw Flying Beast's video also where he said, oh, I think I have something on my hand, and the AI was responding. So Flying Beast asked the AI that, do you have access to my camera? And then the AI application sort of backstepped ki no, something like that, I don't remember it properly. So if you would look at the consent, you have already given consent to access your camera and microphone to AI apps. So how can you challenge it in court when you have yourself given consent for that?
0: But right now, at this point, I am not giving you my old photos. मैंने आपको कंसेंट दिया है, दैट इज़ फेयर, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी हर सिचुएशन में. मैं ईजी अपनी एक्सेसिबिलिटी के लिए मैंने वो कंसेंट आपको दे दिया. बट अगर कंपनी की कोई क्लेम करती है कि हम फेयर तरीके से डील करते हैं यहाँ पर, और क्योंकि इंडिया में वो उसको लेकर के एक लॉ भी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, ओके, या डेफिशिएंसी इन सर्विस यहाँ पर नहीं हो सकता है. एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा है कि मेरा ऐसा मानना है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, कि कुछ शेडी है, बिकॉज राइट नाउ द फोटो आई हैव अपलोडेड इज नॉट समथिंग दैट आई एम गेटिंग द आउटपुट ऑफ. वो मोल यहाँ पर नहीं होना चाहिए था आइडियली एज पर दिस फोटो. इफ यू आर गिविंग मी दैट मोल, दैट मीन्स यू आर यूजिंग माई ओल्ड फोटोज, दैट मीन्स एवरीथिंग हैज बीन स्टोर्ड ऑन द क्लाउड स्टोरेज एंड इट इज वेरी स्केरी.
1: नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली इट कैन इवन, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, सो I will put that disclaimer right here, but I feel it can access your camera also in real time. That's a big concern with AI. But then if at all we are looking at data privacy, you must have noticed now we also can allow the kind of photos our apps have access to. So let's say you're using Instagram, it asks you, do you want to allow access to all the pictures that you have in your gallery?
0: Unlimited.
1: Now it has come into place. That means previously everything was accessible to them, right? So data privacy is a very big concern, especially when everything is going online. So let's say I have a notes app in my phone, and let's say I write my passwords there just to remember something. And if an app has access to my notes, they can essentially use my bank if, let's say, I've entered my PIN or my net banking passwords. So it's a big concern. But for that, we do have the DPDP Act, which we can probably discuss in some other section. But data privacy is a very big ongoing concern. So not just this, we have AI in education now, which means children are increasingly having more face time with AI, and their data is also being fed into AI. So how do we know children like bright colors? If, let's say, we have different applications, AI applications now, which put a headset on a child's head, and you can see when their attention span is dipping, when their

0: attention span is going up. And then maybe, let's say you're showing them a video and let's say the bright colors come in. So you see, okay, the attention span has gone up. So you can advertise your baby products, anything that's directed towards children in those colors. So even a very minute information can have so much effect. So AI in terms of data privacy is a big concern. That's there. Not just the AI, not just our pictures, but with our children, with everything else it's being deployed in. It's a big concern, yes.
1: In fact, I was again reading an article and it shows ki bahut sari countries, I'm not sure about India, dating apps ne ek naya phenomena nikala hai. So what they're gonna do, the moment you upload your photos, they have this AI mode. So what this AI mode gonna do, आपकी सारी गैलरी का एक्सेस आपसे लेगा, आपकी पूरी गैलरी को स्कैन करके आपकी जो बेस्ट फोटो होगी उसको उठाएगा, उसको आपकी डिस्प्ले पिक्चर वहाँ पर बनाएगा. एंड इट इज़ अगेन वेरी वेरी वेरी स्केरी, क्योंकि आप एक डेटिंग ऐप के चक्कर में पूरी पूरी गैलरी का, अपने सारे मूवमेंट्स का एक्सेस अपने फ़ोन को दे रहे हो. एंड आई ऑलवेज से दिस, योर फोन इज एक्चुअली योर एक्सरे, योर ब्लड रिपोर्ट, योर एवरीथिंग. मतलब आपके एक फ़ोन से आपकी पूरी कुंडली निकाली जा सकती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितना स्टैंड करते हो, क्या सोचते हो, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, एवरी सिंगल थिंग. सो सेव योर डाटा. राइट नाउ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे. एंड वी गॉट टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट कंट्रीज अप्रोचिंग AI रेगुलेशंस. क्या ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है या बाकी जगहों पर भी सिमिलर कुछ ऐसा हो रहा है? विल टॉक अबाउट इट. बट फिलहाल जस्ट स्टे ट्यून्ड.

0: ये क्या?
1: तोहफा।
0: तोहफा? तोहफा तो मुझे देना चाहिए था।
1: तुमसे तोहफा मैंने ले लिया है।
0: जी मुझसे?
1: तुमसे, तुम्हारी टीचर।
0: जोकर, इसका क्या करूं?
1: इसे अपने पास रखो। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्हीं को लौटा रहा हूं।
0: जी मेरे लिए?
1: देखो एक दिन राजू बड़ा होगा, लेकिन जोकर राजू ऐसा ही रहेगा, भोला मासूम। इसे जिसके हवाले करना सोच समझ कर करना। दुनिया में जोकर के साथ जो करता है

0: Once again, welcome back. मैं आरजी सागर शो सत्यमेव जयते जय हिंद जय भारत रेडियो मैन वर्ष 107.8 एफएम का बहुत स्पेशल शो है जहां पर हम लोग लीगल फ्रेमवर्क को टच करते हैं। हमारे साथ है मिस तन्वी। तन्वी सी आइए आगे, एआई की हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं तो एआई अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, शायद इसके ऊपर मल्टीपल एपिसोड हम लोग कर सकते हैं, बट आज यहां पर हम बेसिक चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव। तन्वी, बाकी जो कंट्रीज है, हाउ डिफरेंट कंट्रीज आर अप्रोचिंग एआई रेगुलेशंस?
1: एक्चुअली वन ऑफ द first regulations on AI was given by the European Union. So they have their European Union AI Act, which was implemented somewhere around in 2024. So now the

0: not on the basis of our facial features. So that is something that is unacceptable risk because there's a bias. बायस क्यों है? क्योंकि एआई हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है. अब हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है तो बायस तो होना बहुत नेचुरल है. क्योंकि मान लो कि अगर आई से इन हिंदी कि ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, आई हैव नॉट यूज्ड एनी जेंडर टर्म्स, मैंने ना तो मेल सजेस्ट किया है ना फीमेल, बट लेट्स से आई आस्क एआई टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश. नाउ इंग्लिश इज अ जेंडर्ड लैंग्वेज, इट इज़ नॉट एक्चुअली, दे भी यूज कर सकते हैं, बट लेट्स से आई आस्क इट टू कन्वर्ट इट, the natural translation might be she teaches English, because English as a teaching profession in English is generally associated to females. Historical data वो ही देती है, तो AI आपको वही बताएगा. इसलिए जो भी ऐसे systems होते हैं, social scoring systems, उनका बहुत ज़्यादा risk है कि they might be biased against certain set of people. इसलिए ये unacceptable risk है, ये allowed ही नहीं है ऐसे AI systems. फिर वो बोलता है कि एक और type के AI systems होते हैं which are high risk. So these systems are basically used in very critical areas and they must be very minutely monitored and regulated. So one example is healthcare, one example is law enforcement. So these are very high risk and they must be very strictly monitored. Then AI says some are limited risk AI. So limited risk matlab ki they don't carry as much risk, but whenever someone is using that, then they must be informed that you are interacting with an artificial intelligence software. So that's only, and last is minimal risk. So minimal risk is basically, so for example, Netflix suggests you content on the basis of what you have watched, that they are doing with AI. YouTube suggests you the algorithm, that is minimal risk. So it doesn't carry a lot of, and for them the there's not a lot of rules that they have to follow. So for high risk, they have a system that they have to go through in order to ensure that it is not harmful for people. But for minimal risk, they let it go. So this is EU. Then United States also. United States does not have a specific centralized law for AI. So what they do is they govern AI in terms of the sector in which it is involved. So for example, agar autonomous vehicles hai, to wo व्हीकल सेक्टोरल में जो भी एआई होगा उसके लिए लॉ बना देंगे. फिर मान लो कोई एआई हेल्थ केयर में यूज हो रहा है तो वो उस सेक्टर के लिए बना देंगे लॉ. सो दे हैव सेक्टोरल रेगुलेशंस, दे डोंट हैव अ नेशन वाइड और समथिंग लाइक एन ईयू एआई एक्ट जो हर एआई के बारे में बात कर रहा है. वो सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं. सो दैट्स मेनली इट. दीज आर द टू मेजर कंट्रीज दैट हैव लॉज. देन कमिंग टू इंडिया, वी डोंट हैव अ डेडिकेटेड एआई लॉ एज ऑफ नाउ. And essentially, जो हमारा technology act है, technology law है, उसके through we are governing. So your deep fakes या फिर ऐसे कुछ करना, these are governed under your IT act. How? कि मान लो अगर आपने कोई deep fake बना के किसी को defame किया है, तो आप defamation के लिए sue कर सकते हो. All of those things. Other than and our DPDP act. So that is how we are governing these. But then we don't have a particular law on AI in India as of now.
1: तो बेसिकली हम लोग अभी ट्रेडिशनल तरीके से ही डील कर रहे हैं जो हमारे पास ट्रेडिशनली लॉज बने हुए हैं.
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट.
1: ओके, इज इट पॉसिबल कि किसी भी पॉइंट पे एआई आपकी मेरी जॉब्स खा सकता है, लॉयर की या सच प्रोफेशंस, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, क्या इनको रिप्लेस कर पाएगा एआई या जस्ट एक असिस्टेंट टूल के तौर पर हमसे देखना चाहिए?
0: आई थिंक एनी जॉब दैट इज स्ट्रिक्टली डेटा एनालिसिस बेस्ड कुड बी टेकन ओवर बाय एआई, बट एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स मोर ह्यूमन इंटरेक्शन, विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन. So for example, I can talk about law more confidently. So I am a teacher, but I promise you that I can defeat ChatGPT when it comes to law, because it will tell me one decision, okay, so and so has been said in this case, but I can tell ChatGPT, oh no, this case was overruled here because of this judgment. So it does not have power to interpret so many things together, which is why it's very hard for someone, let's say like a teacher, to be replaced by AI, or all of us being replaced by AI. But yes, anything that is, any job that's more data analysis based is likely to be taken over by such systems, because the kind of pace that they have it at doing work is, I mean, it outpaces human ability. So those jobs are in danger, I think. Yes.
1: Yeah, sure. And the last question would be, there are so many people out there, especially I want to talk about the teenagers. So what they डू दे टॉक टू एआई लाइक देयर बेस्ट फ्रेंड्स, दे

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी, यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। सशक्त महिलाओं से आपकी मुलाकात करवाती हूँ और उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी से हम बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी सीख डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ये जो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, आप सभी को पता है कि ऐसा कार्यक्रम है, ना सिर्फ ये मेरे दिल के करीब है लेकिन साथ के साथ ये हमारे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम का सबसे लंबा चलता हुआ कार्यक्रम है। सो एक लंबे समय से मैं के लिए कार्यक्रम लेकर आती हूँ और इस कार्यक्रम में मैं आपको अलग अलग महिलाओं से मिलवाने की कोशिश करती हूँ। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो जिंदगी में ढेर सारी शिक्षा दे चुकी हैं, यानी एक एजुकेशनिस्ट हैं। आज हम आशा गाबा जी के साथ हैं और ये एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर रही हैं और आजकल ये मध्यस्थ दर्शन के साथ जुड़ी हुई हैं एज अ मेंबर। सो करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
3: आशा जी, कार्यक्रम का नाम है विमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण। सबसे पहला सवाल हर महिला से इस कार्यक्रम में इस लंबे समय से मैं ये पूछती आ रही हूँ कि उनके नजरिए में महिला सशक्तिकरण क्या है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण की परिभाषा हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप किसे सशक्तिकरण मानती हैं तो क्या कहेंगे आप?
4: जी, वास्तव में महिला सशक्तिकरण का जो अर्थ है वो है महिलाओं को शिक्षा, अधिकार, अवसर, संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना
3: जी,
4: ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में पुरुषों के समान सम्मान और अवसर प्राप्त कर सकें और विशेषकर स्वयं को एक मानव के रूप में पहचान सकें, क्योंकि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जिस दिन वे स्वयं को मानव होने के रूप में, अपने अस्तित्व को एक मानव के रूप में पहचान जाएंगी, वे जागरूक हो पाएंगी और सशक्तिकरण के लिए वो स्वयं को परिवार में ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र स्तर पर योगदान कर पाएंगी, मेरा ऐसा मानना है।
3: भाई देखिए, मैं ना हमेशा से कहती आई हूँ कि महिलाओं को अगर सशक्तिकरण चाहिए तो वो पहला कदम आपके अपने परिवार से होता है, वो पहला कदम आप ही के अपने आप का होना चाहिए। सशक्तिकरण कोई और दे नहीं सकता है आपको, सशक्तिकरण आपको खुद महसूस करना है। और आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि वो महिला सशक्त है जो ना सिर्फ अपने डिसीजंस ले पा रही है, अपने जिंदगी को उस तरीके से जी पा रही है, लेकिन इसमें गुड बैड अगली कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपने जो निर्णय लिया वो सही है या नहीं, लेकिन सबसे पहले क्या आपने कोई निर्णय लिया, क्या आपने अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन खुद लिया, और अगर लिया तो क्या आप उस पर अडिग रह सकी, क्या आपने वो डिसीजन एड्रेस किया, या आप सिर्फ दूसरों की दी हुई एक बनाई हुई लकीर पर चलती आ रही हैं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो मैं उस महिला को सशक्त मानती हूँ जो अपनी ज़िंदगी की लकीरें खुद खींचती हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये बहुत ही प्यारा सा एपिसोड। और इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलाती हूँ। आज तो एक एजुकेशनिस्ट से मिलवा रही हूँ भाई, ज्ञान का भंडार होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला अगर एजुकेशनिस्ट है ना, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ना सिर्फ वो अपने परिवार को शिक्षित करती हैं, लेकिन समाज को शिक्षित करने में एक बड़ा अहम हिस्सा निभाती हैं। आशा जी आज हमारे साथ हैं, जो कि एक सीनियर एजुकेशनिस्ट रही हैं, लेक्चरर ये रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ आजकल मध्यस्थ दर्शन से ये स्पिरिचुअलिटी को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हैं, और साथ के साथ उसे लोगों को महसूस कराने की भी कोशिश कर रही हैं। अब बात करते हैं इनकी सशक्तिकरण की जर्नी से। सो आशा जी, आप जब एक टीचर लेक्चरर थी, सो आप बहुत सारे ऐसे बच्चियों से मिली होंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिली होंगी जिनकी जिंदगी में बहुत सारी उलझने होंगी, बहुत सारी बार वो आपके पास भी आए होंगे। मैं अगर आप ही की अपनी जर्नी के बारे में पूछूं, सो क्या कभी जिंदगी में कोई एक ऐसा कदम उठाया, कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसको लेने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि हाँ, आप सशक्त हैं और आपने अपने लिए कोई अपने जीवन का डिसीजन लिया है?
1: मैंने 36 इयर्स की जॉब की है एज ए प्राइमरी टीचर। मैंने जॉब को स्टार्ट किया और जॉब के साथ साथ मैंने मास्टर्स किया हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री में, और बीएड एमएड भी किया। तो क्वालिफिकेशन से मुझे प्रमोशन तो मिला, लेकिन मैं उस स्कूल में जब बच्चियां छोटे छोटे बच्चे आते थे उनके साथ भी काम किया, फिर मिडिल क्लास के 10th क्लास तक के बच्चों के लिए काम किया, फिर एज ए लेक्चरर मैंने 11th और 12th क्लास के बच्चों के साथ भी काम किया। तो जहाँ तक आपने समस्या की बात कही है, तो बच्चियों की बहुत समस्याएं होती हैं। आप ये देखिए कि छोटे बच्चे जब उनको पीरियड्स होते हैं, तब उनकी जो हालत होती है बहुत ख़राब होती है, वो घर में कई बार बता भी नहीं पाती
0: जी।
1: और स्कूल में उनको दिक्कत होती है, फिर छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह कर देना, 8th 9th में पढ़ती हैं और उनके पेरेंट्स उन पर दबाव बनाते हैं कि तुम मैरिज कर लो, आगे उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिन जो बच्चे जो है मेरे फ्री पीरियड में आकर मुझसे डिस्कस करते थे
0: जी।
1: तो मैं उन बच्चों को जिनकी भी समस्याएं होती थी, तो मैं उनको अलग से एड्रेस करती थी। जैसा कि एक बच्ची ने एक बार कहा मुझे कि वो 8th क्लास में पढ़ती थी कि मैडम मेरा पढ़ने का बड़ा मन है, पर मेरे फादर मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं
0: जी।
1: तो इस तरह की समस्याओं को जब मैंने देखा, तो मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, समझाया कि उनकी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है, गेम्स में बहुत अच्छी है, स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करती है, तो आप इस बच्ची को मेरे कहने पर, मेरे रिक्वेस्ट करने पर आप उसे पढ़ने दें। तो ये बात उनको पेरेंट्स को समझ आई और मैंने कहा देखना भविष्य में ये एक बहुत अच्छी शिक्षिका बनेगी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि वो 15-20 साल पहले कही गई मेरी बात मुझे आज भी याद आती है, और मैं गदगद हो जाती हूँ कि उन पेरेंट्स ने मेरी बात मानी और वो आज एक टीचर के रूप में मेरे सामने और आज तक भी जुड़ी हुई है।
0: वाओ
1: जी।
0: सो देखिए, एज एन एजुकेशनिस्ट अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास एक मौका होता है कि आप स्टूडेंट्स को, उनके जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और मजेदार चीज ये है कि आप उनके जीवन को एक बड़ी अच्छी राह दे सकते हैं अपनी छोटी सी सलाह से, एक छोटी सी सीख से। और ये इख्तियार अदरवाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ परिवार के सदस्यों के पास होता है, और आप आज के जमाने में किसी से सलाह लेते नहीं है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद एजुकेशनिस्ट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में। और सशक्तिकरण की मैं अगर बात करूं बच्चियों की, तो आई थिंक इससे अच्छा खूबसूरत सा कोई एग्जांपल हो नहीं सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुना रही आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना, और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। हम बात कर रहे हैं आशा गाबा जी से। आशा जी, हमने ब्रेक पर जाने से पहले सशक्तिकरण की बात की थी, सो आप अगर अपनी पर्सनल जर्नी से कुछ बताना चाहती हैं तो क्या कहना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में जब जब मैंने कोशिश किया तो मैंने कुछ नए मुकाम हासिल किए। जैसे मैंने हैप्पीनेस करिकुलम में अपना कंट्रीब्यूशन किया, मैं हैप्पीनेस टीम की कोर मेंबर भी थी, एज ए मेंटरशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर मेरी मुझे समझ बढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि हैप्पीनेस करिकुलम मध्यस्थ दर्शन पर आधारित है। वहाँ पर हमने कुछ एक्टिविटीज़ बनाई, स्टोरीज बनाई, माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई, और इसके साथ साथ टीचर्स को भी कराई, प्रिंसिपल्स के साथ भी हमारा जो है एज ए फैसिलिटेटर मैंने काम किया है, प्रिंसिपल्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, सबके साथ। तो मेरा एक लंबी जर्नी जो रही है सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रही है, टीचर्स के साथ एज ए फैसिलिटेटर, प्रिंसिपल और एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ भी हमें डिस्कशन करने का मौका मिला है। तो उसमें हमने इस जर्नी में जो मैंने गहराई से मुझे समझने का मौका मिला, तो मैं जो है मैं ये सोचती हूँ कि वो जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो हमें जो है थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की भी ज़रूरत है, और एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव करने हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा को अगर लाया जाए तो बच्चे और जो बड़े नागरिक हैं वो एक देश के लिए बहुत बड़ा यूथ जो है वो बहुत कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है, तो मेरा इसमें विश्वास है। और एज ए डिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर जब मैंने काम किया तो बहुत ही अच्छे अनुभव हुए मुझे टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और वो मेरे साथ, मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैंने वीआरएस ले लिया है, और उसके बाद भी मेरे साथ बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल, ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं और इस मेरी यात्रा में मेरे मतलब साथ हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है।
0: आशा जी, अब एक अहम सवाल। हाँ, आपने खुशियों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लोगों की ज़िंदगी में हैप्पीनेस फैलाने की आपने कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा से मानती हूँ कि महिलाओं का जो सरनेम है वो है चैलेंज। सो बच्ची से लेकर और एक बुजुर्ग महिला तक हमें बड़े सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रोज जिंदगी पुरुषों के लिए कम चैलेंजिंग होती है, महिलाओं के लिए ज्यादा होती है, लेकिन हर एरा में ना हमारे चैलेंजेस बदलते रहते हैं। सो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस प्रकार के चैलेंजेस आजकल की महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी एक्चुअली क्या है कि जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए जो चैलेंजेस हैं हमारे ज़िंदगी में हमें जो है अवसर लेके आते हैं, तो वो अवसर के रूप में अगर चुनौतियों को स्वीकार किया जाए तो महिलाएं उनसे अपनी यात्रा को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं, बौद्धिकता के लेवल पे आगे बढ़ सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम काजी महिलाएं हैं, जैसे उनका सुरक्षा और उत्पीड़न की समस्या रहती है ऑफिसेज में और सार्वजनिक स्थानों पर, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसके अलावा उन्हें सामाजिक रूढ़ियों का, तो जो समाज परिवार उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, तो उनको लेके महिलाएं कई बार सही डिसीजन नहीं ले पाती हैं, वो उनके अपेक्षाओं के नीचे दबकर रह जाती हैं, और वास्तव में जो एक स्वतंत्रता जो है उनकी प्रभावित होती है। तो एक नेतृत्व और अवसर उनको अगर मिल जाए तो उच्च पद पर भी वो जा सकती हैं, जो कि कुछ महिलाएं जा भी रही हैं। तो घर का एनवायरनमेंट बहुत जो है मैटर करता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ पाए। तो ऐसा है कि इस तरह की समस्याओं से क्या करते हैं कि गिव अप भी कर देती हैं लेडीज। तो गिव अप करने से क्या होता है, तो प्रॉब्लम और क्रिटिकल हो जाती है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है ही, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगी तो जरूर ही वो जो है विजय हासिल करेंगी, मेरा ये मानना है।
0: बिल्कुल भाई, तो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के साथ साथ आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं। सो फोकस करिए कि आपका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो समाज का माइंडसेट, और अगर हम उसे बदल पाएं, क्योंकि हम उसका आधा हिस्सा तो हैं ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ एक और गाना, और आप अपने प्यारे रेडियो स्टेशन के साथ जुड़े रहना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं, आज की हमारी गेस्ट हैं आशा गाबा जी, जो एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर रही हैं और मध्यस्थ दर्शन के साथ ये लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। अब मैं बात करती हूँ आजकल के जमाने की फास्ट पेस्ड लाइफ की, रिश्तों की। आप भी मानती हैं आशा जी कि जिंदगी भागदौड़ भरी है और ऐसे में कुछ पीछे छूट रहा है, और सबसे ज्यादा जो पीछे छूट रहा है वो है हमारे रिश्ते। इन्हें कैसे बैलेंस किया जा सकता है?
1: अगर आप कहें तो मैं एक लाइन में यही कहूंगी कि सुविधा संग्रह की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उस सुविधा संग्रह को अगर थोड़ा सा माइन्यूटली देखा जाए तो नीड और डिजायर्स, इनके डिफरेंस को समझ लेना बहुत जरूरी है। बेसिकली देखा जाए तो नीड्स हमारी 6 ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड हैं। तो हम अनलिमिटेड डिजायर्स की तरफ जब भागते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें वक्त नहीं मिलता है। बेसिकली हम मुड़ के देख ही नहीं पाते हैं कि हमारे जिंदगी में हो क्या रहा है, क्योंकि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, फिर होता तो कुछ और ही है।
0: वाकई
1: है ना? तो ये है कि तो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स भी उठा सकते हैं, जैसा कि पर्पस क्या है। हमें पर्पसफुल लाइफ अगर हम जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारी गाड़ी कहीं नहीं डगमगाती है, तो ये देखने की जरूरत है। और संवाद की स्थिति बेहतर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायलॉग जो है वो कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ मीडिया, बिकॉज ऑफ फोन, जो गैजेट्स हैं इसमें हम इतने डूबे भीगे घिरे हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं। हमारा टाइम रील देखने में ही कितना निकल जाता है। तो ये जो आजकल के मुद्दे हैं उसमें हमें जांचने की जरूरत है कि 24 घंटे बहुत होते हैं, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और उस वक्त हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा फोकस कहाँ जा रहा है, क्या हमने जो सुबह प्लान बनाया वो सक्सेसफुल करने के लिए हम वही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो ये बहुत बारीकी वाले मुद्दे हैं और इन पर जो है देखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि परिवार में मतभेद तो होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। तो उन मतभेदों को आपसी डिस्कशन से सुलझाया जा सकता है, उसकी तरफ भी बात की जा सकती है। और दूसरा ये है कि सेल्फ केयर, तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने पर ही रिश्ते निभाए जा सकते हैं। तो हमारा अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के प्रति जो जो हमारे ड्यूटीज हैं, हमारे कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, तो हमें ये देखने की जरूरत है क्या हम वो पूरा कर पा रहे हैं। तो हमारे व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जहां तक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है, खुद को जांचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच समझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
0: सो दोस्तों, ये जानने की बहुत जरूरत है कि सबसे पहले तो आजकल के जमाने में हम रिश्तों को बैलेंस कर कैसे रहे हैं। मानते तो हैं कि बैलेंस बिगड़ रहा है, पर उस बैलेंस को क्या हम बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छी टिप्स दी हैं आशा जी ने, एंड डेफिनेटली अगर इन्हें फॉलो किया जाए और इन्हें असेस किया जाए तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, feel like.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। आज हम आशा जी से ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आशा गाबा जी आज की हमारी गेस्ट हैं, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक लेक्चरर हैं। और अब आशा जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे जेंडर इक्वालिटी के बारे में। देखिए भाई, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, सो जेंडर इक्वालिटी की बात तो करनी बहुत जरूरी है। हम ये बात करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया भी जाता है कि दोनों जेंडर बिल्कुल समान होते हैं और उन्हें समानता मिलनी चाहिए, लेकिन समाज में, घर में और सोच में अगर हम देखें तो तीनों जगह ये इक्वालिटी कहीं नहीं मिल रही है। सो ये इक्वालिटी पाई कैसे जा सकती है?
1: खुद पर काम करके।
0: जी,
1: तो मैं तो यही बात कहूंगी कि खुद को जांचने की जरूरत है। एज ए ह्यूमन, एज ए मानव, हमें ये समझने की जरूरत है, खुद की खोज में अगर हम जाएंगे
0: जी,
1: तो हम खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और दूसरों को समझने में भी हम समर्थ हो पाएंगे
0: जी।
1: तो जहां तक इन इक्वलिटी की बात है, वो समाज में है। हमारे भीतर जो एक वातावरण बना हुआ है उसको तो हम समझ ही नहीं पाते। हम बाहरी घटनाओं, बाहरी वातावरण को ठीक करने में लग जाते हैं। चुनौतियां हैं, नो डाउट, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर खुद को जांचने की जो बात कह रही हूँ वो आमतौर पर हम नहीं कर पाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम उस उत्पीड़न से, उन घटनाओं से खुद पीड़ित हो रहे हैं, या फिर हम उस उत्पीड़न समस्या से दूर होकर अपने जो पर्पसफुल लाइफ है उस पर फोकस कर रहे हैं। घटनाएं तो आती जाती रहेंगी, घटनाओं के बारे में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो बाहर हैं। जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे हमें सभी समझदार तो मिलेंगे नहीं।
0: वाकई,
1: तो जहां पर हमें अगर ऐसा ऐसे व्यक्तित्व से टकराव होता है जहां पर कि मन खराब हो, है ना, लैंगिक असमानता तो है ही, जेंडर इक्वालिटी तो है ही, अब लेबर का ही काम कर रहे हैं अगर मेल और फीमेल तो सैलरी भी डिफरेंट
0: जी,
1: है ना। तो यहाँ पर देखने की जरूरत है कि हम समाज सुधार के लिए बाद में देखें, पहले खुद को देखें, अपने परिवार को देखें, क्योंकि परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। परिवार से ही हम मन से जब खुश होते हैं, अपने परिवार में हम खुद खुश रहते हैं, खुश होके हम काम करते हैं, तो वो खुशी हमारे परिवार तक जाती है और कई घटनाएं जिनको हम एड्रेस ना भी करना चाहें वो अपने आप सुलझ जाती हैं। तो बजाय इसके कि हम समस्या पर फोकस करें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होके हम अगर उन घटनाओं को ठीक करने के लिए कोशिश ना करें पहले, तो सबसे पहले अपने घर परिवार में खुद खुश रहें, परिवार में सब खुशियां बटोरें और खुशियां दें, क्योंकि जितनी हम खुशियां बांटेंगे उतने ही हमारे परिवार वाले खुश रहेंगे।
0: वाकई,
1: है ना।
0: सो भाई, ये तो बड़ा अच्छा तरीका है एंड आई थिंक आई टोटली अग्री कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम पूरे समाज को बदलें, अगर शुरुआत हम अपने घरों से करते हैं तो डेफिनेटली ये चेंज हम महसूस कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। आशा गाबा जी आज हमारे साथ हैं। आशा जी एक बहुत ही जानी मानी एजुकेशनिस्ट रही हैं, बहुत सारे जीवन को इन्होंने बदलने की कोशिश की है और अब जीवन के इस पड़ाव पर ये मध्यस्थ दर्शन का ना सिर्फ अध्ययन कर रही हैं लेकिन इस पर बेस्ड लोगों की जिंदगियों को बदलने की भी कोशिश कर रही हैं। आशा जी, आज के जमाने में जहाँ पर हमारे पास इतनी सारी एडवाइस है, ऐसे जीवन में आप मुझे बताइए, आप मध्यस्थ दर्शन के बेसिस पर सभी को क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी?
1: जी, तो सबसे पहला मैं यही कहना चाहूंगी, स्वयं को एक मानव के रूप में पहचाने
0: जी।
1: मन स्वस्थता पर ध्यान दें, शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान दें। 99.9% हमारी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है उसी से हमारी बॉडी और दूसरी चीजें गवर्न होती हैं।
0: yes.
1: तो मेरा ये मानना है कि भ्रम और अंधविश्वास में ना जिएं, फैक्ट्स और फिक्शन में अंतर को समझें, बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। 24/7 हम कैसे खुश रह सकते हैं इस पर ध्यान दें। भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता अगर होगी तो वर्तमान से विरोध बना ही रहेगा, इसलिए खुद में उस विरोध को पनपने ना दें और खुद की योग्यता बढ़ाएं, पात्रता बढ़ाएं। सोचना, बोलना और करना तीनों में हार्मनी होनी जरूरी है। इसी हार्मनी से ही हम जिंदगी को अच्छे से जी

0: पाएंगे। मन में आवेश, काम क्रोध लोभ, मद मोह मात्सर्य अगर होंगे, विचारों में हट धर्मिता होगी, अभिमान और अहंकार होगा बुद्धि में, तो हम इन पूर्व स्मृतियों, पूर्व मान्यताओं को देखकर हम जी नहीं पाएंगे। तो समझना क्या है हमें, हमें जागृति पथ पर अग्रसर होना है, भ्रमित मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा और समझदार होने पर ही, समझदार मानव होने पर ही महिलाएं परिवार और समाज में अपनी भागीदारी अच्छे से निभा पाएंगी। कंपटीशन और कंपैरिजन की बजाय कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ें, अपनेपन का विस्तार पर ध्यान दें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों वाकई मतलब देखिए ना कि हम जब कभी भी बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं लाइफ अनहैप्पी होती तब है ना जब हम कम्पीट करने लग जाते हैं, जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन ही खत्म कर दें सो ऑटोमेटिकली आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल है और ज्यादा खुश है। तहे दिल से धन्यवाद आशा जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
0: बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, आपका तहे दिल से, और सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार, थैंक यू।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पे बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूँ भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
1: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपकी जिंदगी से, और उसी मुद्दे पर हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए तलाशें नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM का हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को जितना बेहतर बना सकें, उसको और ज़्यादा खुशनुमा बना सकें। जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम रेडियो मानव रचना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा उन प्रयासों पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आज हम अपने कार्यक्रम में एक चर्चा करेंगे एक विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारी धन संपत्ति को लेकर के। दोस्तों, आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं पैसे की, तो वो अपने आप में एक कला है, यानी एक आर्ट है पैसा कमाना। लेकिन उसी पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है या उसमें वृद्धि करने के तरीके कौन से होते हैं, वो अपने आप में एक साइंस है, एक टेक्निक है। और उसी टेक्निक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे बेहतर आय तो चाहते हैं, लेकिन उस धन को कैसी समझदारी से, कितनी समझदारी से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज एक खास मेहमान सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग हेड हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सोनम जी के साथ। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं में, वेलकम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।
1: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपने अभी बताया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं, तो वो क्या है कंपनी?
2: तो हमारी कंपनी है मेवेंस कैपिटल, वो बेसिकली नोएडा में बेस्ड आउट है। ये एक बुटीक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, तो हम यहाँ पे HNIs, अल्ट्रा HNIs, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के वेल्थ मैनेज करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरीके से उनको उनका पूरा एक एसेट एलोकेशन होता है, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इस हिसाब से ये हमारा जॉब प्रोफाइल होता है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। मेरा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, क्या मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, तो वो मेरा जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे।
1: तो हम अगर हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएं, यदि हम आज के विषय की बात करें, तो एक आम चर्चा में रहता है कि जब कभी भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं या व्यापार को लेकर के या पैसे को लेकर के बात करते हैं, तो हम केवल बात करते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो आपका वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके बारे में एक चर्चा दिमाग में आती है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। मतलब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए या कोई नया स्टार्टअप कीजिए, तो हर किसी में एक बात आती है कि हमने पैसा कमाया। लेकिन जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? और दूसरी बात यह कि जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम आम तौर पर समझते हैं कि वेल्थ का सीधा सीधा संबंध होता है उन लोगों से जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, या हम जिनको आमतौर पर कहते हैं कि बहुत ज्यादा अकूत संपत्ति के जो मालिक हैं, उन्हीं को केवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
2: नहीं, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के जमाने में वेल्थ प्लानिंग हर एक बंदे के लिए उतनी ही जरूरी है। लोगों को ये लगता होगा, बट आई थिंक वो प्योरली गलत फहमी है। अगर वेल्थ प्लानिंग की बात करें तो सरल भाषा में ये है, आपका आज सुरक्षित करना और आपका आने वाले कल का लक्ष्य को प्राप्त करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप वेल्थ प्लानिंग में आपका, जैसे आज अगर कोई नया बंदा अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे SIPs करें, अपने इंश्योरेंस करें। कंपनीज होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सक्सेशन प्लानिंग करें, एस्टेट प्लानिंग करें। तो ये सब काम जो करना होता है, इसको टोटली वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। एक टाइम पे शायद वेल्थ मैनेजमेंट चॉइस होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरे नज़रे में तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
1: अच्छा, एक बात आप बताइए सोनम, आमतौर पर देखा है हमने बहुत सारा, लोग कमाई भी करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस रहता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, अगर आर्थिक तनाव की बात करें, तो उसके पीछे का क्या कारण है?
2: ये देखो, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँगी संदीप जी, तो वो है डिसिप्लिन। आज आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पे भी करिए, एक कॉमन चीज जो हर प्लेटफॉर्म पे रहेगी वो है डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स, जबकि सबसे गलत है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर ये लोग सॉर्ट कर ले कि हम पहले बचाएं और उस बचत में डिसिप्लिन फॉलो करते रहे, तो मुझे लगता है ओवर द टाइम ना ये जो इनको भी तनाव हो रहा है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके या अपने अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके, वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्विक मनी वाला अगर आप आपका बिहेवियर होगा तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। आप पैसे शायद बचा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, लेकिन जब हम वेल्थ प्लानिंग की बात कर रहे हैं उस चीज में सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा।
1: तो कुल मिलाकर के बात यदि हम करें तो आर्थिक तनाव का जो मुख्य कारण है वो है केवल आपका नजरिया। जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आमतौर पर हम जब सेविंग्स की बात करते हैं तो होती है कि हमारी इनकम और उसमें से जो खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वो हमारी सेविंग है। लेकिन जो नजरिया है वो हमें बदलने की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी में से पहले सेविंग्स को अलग करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और बाकी बचे हुए पैसे को ही खर्च करें। अपनी जो खर्चों की जो भी फहरिस्त है उसको हम इतना मैनेज करके चलें कि हम उसमें ही उसको पूरा कर पाए। तो बहुत खूबसूरत बात सोनम जी ने अभी हमें बताई है कि एक डिसिप्लिन जो होता है अपनी आय को लेकर के, वो रखना बहुत जरूरी है यदि आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी संपत्ति के मैनेजमेंट के बारे में, यानी वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जो पसीना बहाकर मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं, उसको वृद्धि करने के, उसको बढ़ाने के कौन से उपाय आप अपना सकते हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट सोनम पारिक, जो एक बड़ी कंपनी में रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं। आज हमने सोनम जी से चर्चा की है आपकी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ और सवालों के बारे में उनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे। तो सोनम, आप एक बात बताइए, यदि कोई युवा, यानी हम जैन जी की बात करते हैं, यंगस्टर्स जॉब करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको शायद बचत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रहता है अपनी करंट की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकता है, उनको पूरा करने का। तो क्या नज़रिया उस समय पे युवाओं को अपनाना चाहिए, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई युवा यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करता है अपने करियर की, तो बेसिकली उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए?
1: देखिए, आज पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके कोई जॉब शुरू करता है तो उसका पहला नज़रिया तो यही होता है कि यार थोड़ा अपने पे खर्च कर लें, नई घड़ी ले लें, बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, कहीं घूम आए। और जो मुझे लगता है ऑनेस्टली कहीं गलत नहीं है, आपने अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन जितना जल्दी शुरू हो जाता है ना, उतना ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि थोड़ा सा ही सही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो SIP होती है, बेस्ट तरीका। तो आपने जो भी आप इनकम कमाते हो, हम टेक्निकली कहते हैं कि उसका 33-35% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो नया नया किसी ने अगर जॉब शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फॉर्मेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 20% से वो एक SIP शुरू कर दें, वो डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे वो अपने इस डिसिप्लिन को, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे।
0: तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप कहीं से भी इनकम की शुरुआत करते हैं किसी भी एक नए वेतन के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपको उसी समय से डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रह सके। और साथ ही साथ एक बात जो समझने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास इतनी बिखरी हुई होती हैं कि वो हमेशा आकर्षित करती हैं, और ख़ासकर हमारे युवाओं को, जो कहीं ना कहीं एक जो EMI का एक फंडा चल पड़ा है कि आप सेविंग्स में रेगुलर पेमेंट देने की बजाय आप कोशिश करते हैं कि आप भविष्य की आवश्यकता की चीज़ें भी करंट में खरीद लें और उसके ऊपर खर्चा करें। तो हमें बचने की ज़रूरत है उन सब बातों से। यदि मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, जैसे मैंने पिछले भाग में आपसे बात की कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा पैसा होता है? तो मैं उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि कोई युवा है, उसने अभी जॉब ज्वाइन की और वो अपना, जैसे कि आपने कहा कि 20% मिनिमम एक सेविंग करना चाहिए, तो मैं अगर इसको फिगर आउट करूँ कि यदि कोई व्यक्ति मात्र 5,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और उसको निवेश करना चाहता है, तो क्या उसको निवेश शुरू करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है SEBI और AMFI, उनका ना पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके। आज SEBI ने एक मिनिमम 250 रुपये की भी SIP शुरू करवा दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई, आपको अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट महीने दर महीने करना है तो भी आप कर सकते हो।
0: तो ये तो बात हुई SIP और म्यूचुअल फंड की। साथ ही साथ अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीधा सीधा अगर हम लिंक करें इन्वेस्टमेंट से, हमने सेविंग की बात की कि ठीक है पहले हमें सेविंग करना चाहिए, बचे हुए पैसे को खर्च करें, लेकिन यदि हम उस सेविंग को इन्वेस्ट करने की बात करें, तो आप क्योंकि एक रिसर्च मार्केटिंग हेड हैं आप कंपनी की, तो आप बेहतर जानती होंगी कि क्या क्या हमारे पास उपाय हैं या क्या अवसर हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो लोगों के मन में जो प्रश्न रहता है कि आखिर उनकी जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कहाँ करें से पहले आपको जवाब देना पड़ेगा कैसे करें। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज के डेट में एक बंदे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके किसी फैमिली मेंबर में, उसके किसी फ्रेंड में या जानकार में अगर किसी ने एक कंपनी से या एक स्कीम से पैसा कमाया है तो वो भी उसी में डाल देते हैं। इनफैक्ट इसका मैं संदीप जी आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूँगी। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर से हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत रैली देखी है कि प्राइस बहुत ही शॉर्टअप हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ETF। तो अगर आपको बाय करना है तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF बाय करते हैं। ये कैटेगरी अपने आप में महीने दर महीने 3 से 4 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाती थी। जनवरी में गोल्ड सबसे पीक पे था, ठीक है। उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24 हजार करोड़ की हुई है। आज डेट पे जनवरी से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफी करेक्ट हो गए। गोल्ड तकरीबन 20 से 24% फॉल ले चुका है और सिल्वर भी लगभग उतना ही फॉल ले चुका है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले महीने मई में उसी फंड में से 3 हजार करोड़ निकल गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि किसी ने देखा कि यार गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ था, जनवरी में बहुत रिटर्न मिल गए तो बंदों ने जान में इन्वेस्ट कर दिया।
0: तो यानी लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बजाय लोगों में, जिसको हम आमतौर पर आम भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं, उस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं कि कोई क्या कर रहा है,
1: पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, जबकि वो इकलौता तरीका नहीं होता आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए संदीप जी, 3 चीजें हर एक बंदे को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब मैं रिस्क प्रोफाइल बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स में जो हम पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप शांति से बैठ के वेट करोगे, आप पैनिक करोगे या आप बेच दोगे? ऐसे करके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी करती है, वो क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो, उन जवाब से हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। कि मानो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से 1 साल के लिए पैसा रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए रखना है, 10 साल के लिए रखना है, तो दूसरी चीज आपको जाननी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तीसरी चीज आपका पर्पस क्या है। आज नए युवाओं के लिए शायद पर्पस होगा कि मुझे 2 साल बाद एक यूरोप ट्रिप लेना है, 4 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मिडिल एज वालों के लिए होगा बच्चों की एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो तीसरा सवाल होगा पर्पस, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। फिर जाके आता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आज लोग गलती यही कर रहे हैं, वो शुरू ही नीचे से कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में डालें, जबकि पहले समझना होगा ये 3 चीजों का जवाब। जब इन 3 चीजों का आपको जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, आपका एक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाएगा कि उन 3 सवाल के हिसाब से आपको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कितना रखना है और गोल्ड और सिल्वर में कितना रखना है।
0: मतलब अगर हम सीधी बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं क्या। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, उन पैरामीटर्स पे कौन सी चीज फिट बैठती है। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि इस प्रकार का जवाब ढूंढने में आप सक्षम नहीं हैं, वहीं पर काम शुरू होता है किसी वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट, एकदम सही।
0: तो साथ ही इस चीज में एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा भारतीय गृहस्थी में महिलाओं का भी पूरा एक रोल रहता है, वो भी एक गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी उनके पास अपनी एक कुछ सेविंग्स होती हैं, उनकी भी भागीदारी काफी हद तक हमारी जो अगर हम वेल्थ की बात करें तो उसमें होती है। तो उनको किस तरह से इस वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए या उनके लिए क्या स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट में?
1: सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात, वुमेन इन्वेस्टर्स ने खूब तरक्की कर ली है इसमें। मैं भी कुछ दिन पहले एक डेटा देख रही थी, तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का AUM है उसका तकरीबन 5-1 लाख करोड़ रुपए वुमेन इन्वेस्टर्स का होता था। दिसंबर 2025 में वो डेटा है 17.5 लाख करोड़ का। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि वुमेन इन्वेस्टर्स और पे और इन्वेस्ट करने लगी है। तो इसमें जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली मैं नोटिस करती हूँ कि वुमेन बहुत क्लियर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना है, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक डिसीजन का पार्ट बनना चाहते हैं। और उससे मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कई जगहों पे आप शायद गलत भी हो जाओ, बट उससे निराश नहीं होना चाहिए।
0: लेकिन एक बात है कि जो उनका दायरा है वो काफी, क्योंकि घरेलू महिला है तो काफी सीमित होता है, तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट या कौन से तरीके उपलब्ध हैं कि वो अपनी जमा की हुई जो सेविंग्स उनके पास रहती है उसको इन्वेस्ट करने के उनके पास कौन से सरलतम उपाय उपलब्ध होते हैं?
1: देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है। आज अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए सिक्योर सेफ थोड़े से बेटर सेफ फंड्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जॉब करने वाले हैं तो वो उस देखिए फंड्स आप अपेरेंटली सेम ही रहेंगे, आप वुमेन के ले लो मेन के ले लो, हाँ लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हर एक तरीके के प्लान्स हैं आपके पास। अगर आप कहते हो कि मुझे 6 महीने के लिए ही पैसा रखना है तो उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है एंड प्लस आपने अभी एक बात बोली कि वुमेन क्योंकि यू नो ऑब्वियसली मेजर हाउस मेकर्स ही रही हैं, जो मुझे लगता है वो ये है वुमेन का ना बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही है, क्या ये सही रहेगा, या अगर उसमें कुछ भी उनको ऊपर नीचे है तो मुझे लगता है वो शायद कंपैरेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है।
0: बट आज की डेट में ये तरीके बड़े साइंटिफिक हो गए हैं और वेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है यदि हम उन तरीकों को अपनाते हैं। तो अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
2: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बचत को निवेश करने के फंडों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, जिसे हम आधुनिक रूप में अगर हम भाषा में नाम बोलें तो वेल्थ मैनेजमेंट का। और हमारे कुछ सवालों का आपको जवाब देने के लिए आई हुई है हमारे पास रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड सोनम पारिक, जो एक कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट पे ही अपनी सलाहों से बहुत से लोगों का पैसा बढ़ाने का या उनको ऐसे नए उपाय सुझाने का, वो साइंटिफिक तरीके से समझाने का काम करती हैं कि जिससे उनका कमाया हुआ पैसा कम समय में ज़्यादा वृद्धि पा सके, यानी ज़्यादा बढ़ सके। तो सोनम, एक बात जो आम तौर पे जब कभी भी हम बात करते हैं फ्यूचर सिक्योर करने की, चाहे कोई युवा है या कोई गृहिणी है या कोई भी है, तो एक थॉट हर किसी के मन में आता है जब वो सेविंग करता है या निवेश करता है, तो दो तरीके दिमाग में चलते हैं। एक तो ये कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आमतौर पर आपने देखा होगा, और एक दूसरा थॉट आता है जब वो अपने लिए बात करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उनका किस तरह से उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं, या क्या बेहतर तरीके हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे पाएं या एक आरामदायक जिंदगी वो बिता पाएं रिटायरमेंट के बाद। तो आखिर यदि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो कब रिटायरमेंट का जो थॉट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, या चाहे हम किसी वेतन परस्त व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेसमैन की, तो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो एग्जैक्टली कब शुरू की जानी चाहिए आपकी राय में?
1: ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कहो कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं। आप इनफैक्ट जॉब जब शुरू कर रहे हो, आपकी इनकम शुरू हुई है, आप तब से भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन उन सवालों के जब जवाब देते हो तो तीसरा होता है आपका पर्पस। तो समझिए कि मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे 4 साल बाद घर लेना है, उसके बाद मेरा बट एक रिटायरमेंट प्लान भी मुझे करना है। तो कौन वेल्थ एडवाइजर क्या करते हैं या जनरली लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप एक एसेट एलोकेशन करोगे। उसका क्या मतलब हुआ है कि मेरी इनकम से मैं एक्स अमाउंट बचा सकती हूँ, तो वो एक्स अमाउंट के हिस्से बनेंगे कि एक हिस्सा मैंने रखा है अपने घर खरीदना है उसके लिए, एक हिस्सा मैंने रखा है रिटायरमेंट के लिए। अब क्योंकि मैंने अभी अभी करियर शुरू किया और मेरे रिटायरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, तो मेरे लिए जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। वो शायद एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाऊंगी, थोड़ा स्ट्रांग इक्विटी होगा, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आपका है कि आपको 4-5 साल बाद मुझे घर लेना है, वो पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं उस फंड में लूंगी जो मुझे पता है कि 5 साल में एक एक्स अमाउंट बना के दे सके, ताकि आपके जो भी माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब आप चाहो आप अपना रिटायरमेंट शुरू करो। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है, मेरे जॉब मेरे रिटायर होने में टाइम है, तो अगर मैं समझो 100 रुपये बचा रही हूँ तो उसका मैं शायद सिर्फ 10 रुपये डालूंगी रिटायरमेंट में, 90 कहीं और डालूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं अपना एलोकेशन बढ़ाती रहूंगी।
0: तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो रिटायरमेंट की जो भी योजना है वो किसी भी समय आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो योजना किस प्रकार की होगी, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्थिति के ऊपर कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग क्या है। क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, किसी के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर प्लान कर रहा होता है, या कोई बहुत आरामदायक जीवन जीना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो आपकी आवश्यकताओं के, आपकी ज़रूरतों के या आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो एक बात और जो वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के बात आती है दिमाग में, जब कभी भी हम सोचते हैं तो इतनी तरह के लुभावने विज्ञापन आते हैं तरह तरह की, म्यूचुअल फंड में, कभी किसी में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं, तो जो बातें हैं उन बातों में एक सबसे ज्यादा जो आजकल पॉपुलर वर्ड है बहुत आमतौर पर, अभी आपने कई बार हमारी चर्चा में SIP का जिक्र किया म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज के समय में सबसे बड़ा मिथ है क्या, मतलब लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उनमें क्या सबसे बड़ी जो मिथ है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या है?
1: मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों को वो ये है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर एक बंदा कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही दिन के लिए पैसा रखना है, तो म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे 7 से 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं मुझे 2 से 3 महीने रखना है, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स है, लिक्विड प्लस फंड्स हैं। कोई कहता है मुझे एक साल के लिए रखना है, तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो लोगों का ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मतलब कभी भी गिर सकता है, वो बहुत गलत है। आज आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल फंड का एक्सेस ले सकते हैं। इक्विटी डेट चाहिए, इक्विटी कम डेट ज़्यादा चाहिए, वो हो सकता है। आपको चाहिए इक्विटी कम डेट कम बट उसमें थोड़े कमोडिटीज भी आ जाएँ तो वो भी हो सकता है। प्योर डेट चाहिए वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी ऑप्शंस हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: यानी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बंच है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि वहीं पर कहीं काम शुरू होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट।
0: तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और जानेंगे कि आपके धन की वृद्धि साइंटिफिक तरीके से एक वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अपना करके एक डिसिप्लिन लाइफ के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ और फिर हाजिर होते हैं इस चर्चा को जारी रखेंगे।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपके पैसे से जुड़ा हुआ, यानी आपकी सेविंग्स को कैसे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। और हमारे बीच आज हमारी खास मेहमान हैं जो रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, सोनम पारिक। आज हमने सोनम से जाना कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेविंग्स है, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मंत्र बताया कि आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि आपको पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स को अलग करना है, बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरतों पर, ना कि ज़रूरतों के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है यदि आप अपने इस नज़रिए को बदलते हैं। और ख़ासकर इस मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है हमारी जेन जी को, हमारे युवाओं को, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो सोनम, आज एक मुद्दा और जो आमतौर पर आप जैसे पूरी चर्चा में हमने बात की, आखिर पैसा हमारा है, हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्यों हमें ज़रूरत है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसा हमारे पास है, हमें पता है कि किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो एक आम आदमी या कोई भी जो व्यक्ति एक बहुत अच्छे पद पर कहीं है या एक बड़ा व्यापार चला रहा है, तो उसे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आखिर चाहिए क्यों?
1: देखिए, सेम वजह है जिसके लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री में। आज करने को, आज तो AI का ज़माना है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूछ के। एंड वैसे भी आज के युवाओं में तो DIY चलता है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले करेगा वो है आपके पास्ट रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पास्ट रिटर्न पे नहीं होता है। आज क्या होता है कि वेल्थ एडवाइजर के पास ना एक्सेस होता है, वो फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो उनकी रिसर्च टीम से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान समझते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर है तब जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप खुद करते हो वो आप पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे करते हो। एक वेल्थ एडवाइजर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बनाता है वो प्रोफाइल। दूसरी चीज़, आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपका अपना करियर है जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। आज एक वेल्थ एडवाइजर का फुल फ्लेज्ड काम यही है। तो कहीं ना कहीं उनकी हेल्प लेने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि वेल्थ एडवाइजर आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट और बफर बन जाता है। आज हमने देखा है कि कोविड के वक्त, डीमोनेटाइजेशन के वक्त, काफ़ी लोगों ने पैनिक में पैसा बेच दिया, अपने फंड्स बेच दिए। यही अगर कोई वेल्थ एडवाइजर होता तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस से या फिनेंशियल इंटेलिजेंस से आपको हैंडल कर लेता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता ना, वो ऐसे पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज अगर एक वेल्थ एडवाइजर होगा आपके पास तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज पे आप हो, आपने करियर शुरू किया है, आप कॉर्पोरेट हो, आप ग्रो कर चुके हो, आपको एक वेल्थ एडवाइजर बहुत काम आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाने के।
0: यानी अगर हम बात करें तो एक व्यापारी केवल अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी रखता है, या कोई, यदि हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट हम बात करते हैं, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। वो इसी क्षेत्र से संबंधित उत्पाद या आपके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी, तो उनके पास सोर्सेज ज़्यादा तरीके से होते हैं। और एक, जैसे हमने शुरू में बात की कार्यक्रम के शुरू में, कि पैसे को बढ़ाना अपने आप में एक विज्ञान है, कमाना एक कला हो सकता है लेकिन बढ़ाना विज्ञान है। तो उस विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात, तो आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो एक पहले तरीका होता था कि लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा करके अपने पास घर में रख लेते थे, बैंकों में नहीं जमा कराते थे क्योंकि बैंकों में खाते नहीं होते थे। लेकिन व्यवस्था बदली तो लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि यदि हमें कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम पे तो हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई, कार्ड्स बन गए, डेबिट कार्ड बन गए, एटीएम बन गए कि आप कभी भी पैसा निकाल लो। लेकिन जैसे आज का आधुनिक युग आया, यदि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करके या पैसे को हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करके क्या ये सुविधा हमारे पास, एक आम आदमी के दिमाग में जो थॉट आता है कि यदि पैसे की इमरजेंसी में आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है तो क्या उसमें भी वही सुविधा उनको उपलब्ध होती है कि या इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंस जाते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए कि उनको पैसा बीच में अगर जरूरत है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा?
1: देखिए क्या होता है ना, हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड बोलते हैं इसको या लॉक इन पीरियड होता है। हर फंड के जो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे या जो फैक्ट शीट कहते हैं हम, उनमें डेटा हमेशा आता है। तो इक्विटी फंड्स होंगे जिसमें लॉक इन नहीं होगा। लॉक इन मतलब कि आपका पैसा आप निकाल सकते हो, साल भर से पहले अगर आप निकालते हो तो कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो मैं पहले बता रही थी कि जो 1 दिन 2 महीने 6 महीने के लिए फंड्स में पैसा रखता है उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा है ना, ये शायद आपके भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेल्थ कह लो, इंश्योरेंस कह लो, इनमें ना मिस सेलिंग बहुत होती है। तो क्योंकि आपने अगर किसी से बाय किया है और कोई टारगेट प्रेशर होगा या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको इतने टाइम में चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्कीम में अगर आप

0: को पैसा मिल जाता है, क्योंकि यदि आकस्मिक आवश्यकता की बात करें तो उतना फंड तो आप बैंक में भी रख सकते हैं। लेकिन एक सलाह वाली बात है कि यदि आपको पैसे में वृद्धि भी चाहिए और समय पर पैसा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं।
1: देखिए आज ना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का माइंडसेट ही यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीजें आसान बना सके। अब इट्स एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, आप अपने ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आज इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंट बहुत हो गया है। जो पहले होता था कि आपको ब्रांच जाके चीजें करनी पड़ती थी, आज वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे है। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सरल हो गया है, तरीका बहुत सरल हो गया है
0: अगर हम डिजिटल युग की बात करें आज तो। बिल्कुल, तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी विशेष मेहमान सोनम पारिक के साथ। तो फिर हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के उपायों के ऊपर एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, जो हैं सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड है कंपनी में। और वो आज हमें बता रही हैं कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या और वेल्थ एडवाइजर की या वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। सोनम, एक बात जो मैंने भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कही थी कि पहले एक व्यवस्था थी कि लोग आमतौर पर जो सेविंग होती है, बचत होती है, उसको घर में रखते थे, पैसा संभाल के रख दिया। या बहुत सारे हमने किस्से ऐसे भी सुने हैं कि पैसे को घड़ों के अंदर बढ़ के दबा दिया, सोने के सिक्के दबा दिए, तो एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें तो डिजिटल युग हमारा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है वास्तव में वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, जिस प्रकार की आप जो आपका व्यवसाय जो प्रोफेशन है, वो किस प्रकार से देखता है इस बात को कि हमें ये पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे हमारी देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग तो आपने पैसा बचा करके अपने पास रख लिया तो वो भी सेविंग है, और वो आपने बैंक में अपने अकाउंट में रख लिया वो भी सेविंग है। लेकिन यदि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है हमारे देश की इकोनॉमी में।
1: देखिए, आपने जो कहा कि घर पे पैसा रखते हैं वो भी सेविंग है और जो बैंक में रखते हैं वो भी सेविंग है, एक्चुअली वो नहीं है। देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। सेविंग का मतलब बेसिकली यही है कि आगे चल के जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, मेरा पैसा उसको बीट कर पाए। ठीक है, तो आज अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन अगर 3.5% 4% चल रही है तो मेरा पैसा एटलीस्ट उतना बढ़ना चाहिए, तब वो नॉर्मल पैसा कहलाया जाएगा, तब भी वो रिटर्न नहीं है। राइट, रिटर्न वो होगा जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है।

0: जो उसकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा हो।
1: एग्जैक्टली। अब आपने घर पे पैसा रखा, आपने साल 5 साल 6 साल रखा, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई, तो आपकी जो वैल्यू थी मनी की वो कम हो गई। और सेम हिसाब चलता है जो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो पैसा वैसे का वैसा ही है, जो ब्याज आता है थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कई ज्यादा है। तो हुआ क्या, आपके जो पैसा है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई। इसीलिए आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही इकोनॉमी चलेगी, राइट? ये पूरा एक सर्कल है। आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो चलेंगी, तब हमारा मार्केट चलेगा तो लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा एक विशेष सर्कल है। अगर आपने कंज्यूम ही नहीं किया, आपने स्पेंडिंग नहीं करी, आपने पैसे बचाए नहीं, तो वो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बट थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा अपने अकाउंट में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
0: तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो बचत करना अपने आप में पैसे को अपने पास रखना नहीं है, जब तक कि आप उसका इन्वेस्टमेंट ना कर दें। यानी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम बैंक की बात करें या अदर जो कंपनीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में पैसा इन्वाइट करती हैं लोगों का, जब तक उसमें पैसा जा कर के इकोनॉमी में ना जाए तब तक हम उसको एक तरह की सेविंग्स ना माने, ये हमारा एक थॉट होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और समझने की बात है कि नजरिया हमें बदलना जरूर पड़ेगा कि हम आम तौर पर जो एक मिथ पाल के रखते हैं दिमाग में कि जो पैसे बचेंगे उनको हम इन्वेस्ट करेंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि जो पैसा हमारे पास बचे उसे खर्च करना है, यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो एक बहुत बड़ा थॉट आज के इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में निकल के आया है। तो सोनम, एक बात और मैं जो जानना चाहता हूँ, यदि हम एक समअप करें इस सारी बात को, जिस प्रकार के विचार आपने हमारे सामने रखे, तो निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर या एक वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट होता है वही ऐसे थॉट रख सकता है जिस प्रकार से आपने हमें चीज़ें समझाई कि क्यों एक वेल्थ एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं तो हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो मानव रचना के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं?
1: देखिए, आज हर कोई, हमारी गवर्नमेंट, हमारे फंड मैनेजर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो कि सही भी है। ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट आप तभी बन पाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आपको ये समझना है, हर एक आपके लिसनर्स को, कि आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी अमाउंट से इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनिए। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, को कितनी भी छोटी से छोटी अमाउंट हो, लेकिन इस इंडस्ट्री का, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक फ्लेवर लीजिए। जब आप फ्लेवर लेंगे, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेगी, काफ़ी आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, काफ़ी आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे आपके लिसनर्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आइडेंटिफाई करिए आपकी वेल्थ जर्नी क्या है, बट प्लीज़ डू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी किसी भी फॉर्म में। आप एक एडवाइज़र के साथ करना चाहते हो वो भी चलेगा, आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो वो भी चलेगा, बट ट्राई टू रीड मोर, आप सही जगहों से इन्फॉर्मेशन लीजिए एंड उस हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए।
0: क्योंकि आमतौर पर हमने देखा जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके बाद फिर एक लाइन आ जाती है कि जोखिम और मार्केट,
1: सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
0: तो उन सब चीजों के बारे में यदि कोई राय कहीं से मिल सकती है तो आपको निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर ही दे सकता है। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमने जाना कि आखिर कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कमाई में से कुछ बचत करके उसको निवेश करना, और साथ ही साथ यदि आप उस निवेश पर एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो निवेश कहीं ना कहीं आपके उन सपनों को पूरा करे जो सपने मन में लेकर के आपने वो निवेश किया या वो बचत की है, तो आपको एक बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या वेल्थ एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसका फ़ायदा आपकी वेल्थ को बढ़ाने में दे सके। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपके पास पैसे का वॉल्यूम कुछ भी है, आपकी बचत का आकार कुछ भी है, लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, आप भी वेल्थ मैनेजमेंट का ही हिस्सा बन सकते हैं। उसमें कोई भी आकार या कोई समय बिल्कुल नहीं होता। हालांकि जो भी प्रोग्राम आपको चूज करना है, किसी भी चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो आपकी स्थिति के ऊपर, आपके पैसे के आकार के ऊपर कि आपकी बचत कितनी है, आपकी आयु कितनी है या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज इन सभी सवालों के हमने जवाब जानने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं उनके जवाब आपको आज मिले होंगे। और इस चर्चा ने आज हमें ये भी समझाया कि धन केवल कमाने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की भी आवश्यकता है। यानी केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा और अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सोनम, आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।
0: तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुन रुबिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो, पढ़ लेकर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र

0: की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता। पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था, और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी। क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जैसे मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाए। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा। इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पढ़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पढ़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी यह भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पढ़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्त के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्त के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी। और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे। दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूंगी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद

ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ? फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे। जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है? मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। ये भी कोई दावा है? हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। नहीं, ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे? ये सब तो अपराधी हो गए, ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में चार एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए, वो कोई संत? नकल होगा। संत की नकल ढांचों में बैठ जाती है। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे। तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है। ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में। एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की। कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे, यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पथ, और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी। तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी, ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती। तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम। तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना, परेशान ना हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है, देखो ये आदमी सबूत है।
अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना। तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है। भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्मभूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है। और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान होना हमारा स्वभाव है। ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है। भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है। जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा। फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा। फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए। उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत। ये क्या संत हुए तुम? तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने? तो कथा बड़ी प्यारी है। कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो। तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गया। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं। काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर? जहां पैर करोगे वहीं भगवान है। सब और भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना। उपाधि दी तो बात गलत हो गई। ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है। या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना। ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या? यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ, उसने घोषणा कर दी अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे, मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालूं? और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तो उनको विदा कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी। तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई,
जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच। इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है? उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है यह आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई अड़चन नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होके बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े। जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके? जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंतर्तम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है। इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी। फिरौन को घसीट के लाए, पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिलाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी, अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना? और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है। मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए वो मुसलमान था हिंदू था ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था
न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे।

शुरू कर देते, छोटा बच्चा, कोमल चित्त, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती। फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो। सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो, एक ही बस गगन, एक ही बस लगन। डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं। संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं। संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द कई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुमने। संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें। संत का अर्थ है रंगरेज। संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे, और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती, वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं। तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजरों को लिए ही चलते रहे।

और मान के चलते कि पक्षी है। होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा। होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो, कि ना हो इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते। तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा। ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे। तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं। जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में। उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे। पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है। वो घसीट के लाए गए और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना। क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान होती थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले, तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं,
क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए। आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई। जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया। किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं। मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करे। हालांकि अज्ञान की अवस्था में कर ले तो हर्ष क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब हुआ उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए। ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना। मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफे चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती, और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगें पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। 4 स्त्रियों का साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह
में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर एक इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती। बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या, 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा। तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे, ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से, अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में, एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है, तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है, वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है।
पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं, अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा, लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है, लड़खड़ा तो सकता है। और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है, तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं, तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गया, अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए। तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है, लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद
मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिसपे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है। कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता, लेकिन एक किरण चौंक जाती है। लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती है। चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी। क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो। जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग न खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे। अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे हैं, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो।
झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य स्नान अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणासी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है, और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है, उग्र श्रवाद सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पी कर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। उमा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई है, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया, तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। अचुकिन कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है, हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर

0: देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय कर ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं इस समय जगत में सब बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी डरावने विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं और इस श्राप से शूद्र प्राप्ति जहरीले श्रापों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। लीला पत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित कर लें, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा और उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्वास जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा करता था, पीछे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है, जो केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं, वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था, उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं उसे एक चूहा उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की और मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे, आप लोग को इस अवस्था में देख कर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से चुपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूं, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती, तपस्या का फल तो हमारे पास भी है किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं, हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है, वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी उदार और व्रतशील भी है, तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं, यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरतकारु तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने खस की जड़ देख रहे हैं ये यही हमारे वंश का सहारा है, हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही उसकी जड़ी हुई कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरतकारी है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरतकारी से कहिएगा और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरतकारी ने पुत्रों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पिता माँ हैं, आप लोगों को अपराधी पुत्र जरतकारी हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पुत्रों ने कहा बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरतकारी ने कहा मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरतकारी अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरतकारी सोचने लगे मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जरतकारी की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरतकारी ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूंगा। वासुकी नाग ने कहा मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा, इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरतकारी ऋषि अपनी पत्नी जरतकारी के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है जरतकारी ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, ये अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरतकारी जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा सर्पिनी तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा भगवान मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो मेरी यही दृष्टि थी। जरतकारी ऋषि ने कहा एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करने। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
1: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागले कदासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यार सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागले कदासी जी कहानी आप पूरी कीजिए।
0: जी तो ऋषि पत्नी जो थी उसकी पत्नी जो थी जरतकारी की जो पत्नी थी उसका नाम भी जरतकारी था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा, आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, यह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरतकारी ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरतकारी ने के घर से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमशा बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम अस्थिक हो गया। उग्रश्रवादी ने कहा। राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वितान सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय इनके पुत्र हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देखकर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने सोचा, ब्राह्मण देखता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ परीक्षित को, राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वहीं जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूं। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक संपन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समझे करे। उनके ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी बस्तियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, ऋषिकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई उसे देखकर ये मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
1: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण।
1: जी, तो श्रोताओं इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ, और भी कार्यक्रम तो आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: यार हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है।